ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 12 तारीख, तदनुसार 4 अक्टूबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:58.50 हुए हैं। अब हमारे केंद्र से आज के कार्यक्रमों का प्रसारण आरंभ होता है।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। सुबह के ठीक 6 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच करने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरि उल्लाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ मच्छर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह में पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने श्री स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। नेतन्याहू ने कैप्टन मच्छर के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। इन केंद्रों में इन भाषाओं पर उच्च स्तर का शोध किया जाएगा, साथ ही इनके साहित्य और भाषाई विरासत को सुरक्षित रखने और डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने पर भी कार्य किया जाएगा। ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान, ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नवद्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के अंतर्गत विकसित करने की भी योजना बना रही है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में कॉफी की खेती का विस्तार करने, उत्पादकता और कॉफी बीन्स की गुणवत्ता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के जरिए किसानों की आय बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया और राज्य

0: के कृषि विभाग द्वारा आयोजित हिल्स टू कप कॉफी कार्यशाला में कहा कि राज्य सरकार कार्यशाला में दिए गए सुझावों पर आगे कार्रवाई करेगी और कॉफी उत्पादकों को हर संभव सहायता देगी। एशिया खेल आज भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न होंगे। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिज़ुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये कार्यक्रम शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। लीजिए सुनिए अगला कार्यक्रम वंदन वार।

真等。शास्त्रों में कहा गया है, अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी व्यक्ति को विद्या प्राप्त नहीं होती, विद्या के बिना मनुष्य धन नहीं कमा सकता, धन के बिना व्यक्ति के मित्र नहीं होते, और मित्र के बिना जीवन में सुख नहीं होता। ये था आज का चिंतन। अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। पेश है झरोखा के अंतर्गत हमारे केंद्र से प्रसारित किए जाने वाले आज के कार्यक्रमों का विवरण। अब से थोड़ी देर बाद 6:45 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीत सरिता। 7 बजे होगा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। हम है राही प्यार के ये प्रोग्राम आप सुनेंगे 7:30 पर। 8:15 पर सुनिएगा त्रिवेणी चित्रलोक कार्यक्रम का प्रसारण करेंगे 8:30 पर। आज का अखबार ये प्रोग्राम लेकर हाजिर होंगे सुबह 9:30 पर। लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ होगा 10:05 पर। इसमें आज का विषय रहेगा जीव जंतुओं से करें प्यार, इनका भी है ये संसार। आज 11:30 पर आपको सुनवाएंगे प्रोग्राम आकाशवाणी हेल्पलाइन। इसमें संचार साथी एवं साइबर सुरक्षा के बारे में श्री रविंद्र कुमार DDG सिक्योरिटी एवं श्री चेतन शर्मा डायरेक्टर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट दूर संचार विभाग पंजाब से रमेश कपूर की बातचीत सुनवाई जाएगी। 12:05 पर प्रसारित करेंगे कार्यक्रम यादों की महफिल। आज दोपहर 1:30 पर होगा कार्यक्रम सुरीला सफर। सदाबहार नगमे प्रोग्राम सुनिएगा दोपहर 2:30 पर। 3 बजे होगा कार्यक्रम मन चाहे गीत नाट्य तरंग। ये कार्यक्रम आपको सुनवाएंगे दोपहर 3:30 पर। आज इसमें सुनिएगा नाटक वायलन वादक। इसके लेखक हैं असद जैदी, निर्देशक मदन शर्मा। पिटारा होगा शाम 4 बजे। आज पिटारा में सुनवाया जाएगा कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का 3रा भाग सुनवाया जाएगा। आज शाम 5:30 पर सुनिएगा फिल्म संगीत। कुछ शब्द श्रवण कीजिएगा प्रोग्राम अमृतवाणी के तहत शाम 6:30 पर। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे शाम 7 बजे। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे महावीर चक्र से सम्मानित एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मुलगांवकर की शौर्य गाथा। कुछ पंजाबी गीत सुनवाए जाएंगे रात 7:47 पर। हवा महल ये प्रोग्राम होगा रात 8 बजे। आज इसमें नाटिका परिवर्तन का 1रा भाग सुनवाया जाएगा। आपके लिए ये कार्यक्रम प्रसारित होगा रात 9 बजे। रात 9:30 पर सुनिएगा प्रोग्राम आज के फनकार। आज का ये कार्यक्रम केंद्रित होगा पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह पर। दस बजे प्रसारित करेंगे कार्यक्रम छाया गीत और रात 10:32 पर आपके लिए लेकर हाजिर होंगे पंजाबी गीतों का प्रोग्राम सुर सांझ।

यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए श्री राम चरितमानस।

महाबली मेघनाद जामवान के त्रिशूल प्रहार से मूर्छित हो गया था। जब उसकी मूर्छा टूटी तो अपने पिता को अपने पास चिंतित देख अत्यंत लज्जित हुआ। अविजित होने के लिए यज्ञ करने हेतु उसने एक पर्वत कंदरा की शरण ली। विभीषण को शंका हुई कि यदि मेघनाद ने यज्ञ संपन्न कर लिया तो उसका वध करना असंभव हो जाएगा। जब विभीषण ने अपनी चिंता का कारण श्री राम को सुनाया तो उन्होंने लक्ष्मण के साथ वानरों का एक दल मेघनाद के यज्ञ का विध्वंस करने के लिए भेजा। लक्ष्मण ने मन में ठान लिया कि आज वे अवश्य उसका वध करेंगे, यदि नहीं कर सकेंगे तो वे श्री राम का सेवक होने और कहलाने के अधिकारी नहीं होंगे। वानरों ने यज्ञ विध्वंस के लिए अनेक उत्पात किए किंतु वो सब विफल रहे। तब वानर अनेक प्रकार से मेघनाद की प्रशंसा करने लगे, फिर भी यज्ञ भंग नहीं हुआ। अंत में वानरों ने जब उसे लातों से मारकर केश पकड़ वेदी से उठाने की चेष्टा की तो मेघनाद का क्रोध उमड़ पड़ा। उसने हनुमान और अंगद की छाती में त्रिशूल मार उन्हें धराशायी कर दिया। स्वयं कभी अंतर्ध्यान हो जाता फिर तत्काल प्रकट भी, लेकिन लक्ष्मण के प्रहार से वो अपने को बचा नहीं सका। लक्ष्मण की प्रतिज्ञा पूरी हुई, मेघनाद का वध उन्हीं के हाथों हुआ।

आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। आज आपने सुना भाग 331। आपने सुना आज लंका कांड।

0: श्रोताओ नमस्कार, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सेन। आइए सुनते हैं चौथी कड़ी।
1: श्रोताओ नमस्कार, शताब्दी की भक्ति रचनाएं ये श्रृंखला इन दिनों प्रसारित हो रही है संगीत सरिता कार्यक्रम में, और शेखर दादा अपने ज्ञान के खजाने से देखते हैं आज कौन सी मोती की चमक बिखेरने वाले हैं।
2: सबसे पहले तो संगीत सरिता के सभी श्रोताओं को मेरा हृदय से प्रणाम। आज मैं आपके सामने एक युग का थोड़ा छुपा हुआ पन्ना खोलने जा रहा हूं।
1: जी,
2: आप में से कितने लोगों को पता है कि मन्ना डे जी के काका कौन थे?
1: केसी डे।
2: जी हाँ, कृष्ण चंद्र डे उनका नाम था और वो बहुत ही प्रसिद्ध गायक थे। बांग्ला में उनके बहुत सारे भजन, बहुत सारी रचनाएं, बहुत सारे सुगम संगीत की रचनाएं उनकी प्रसिद्ध हैं। और ये वो कालखंड है ममता जी, जिस समय फिल्म इंडस्ट्री जो थी वो कलकत्ता में मूलतः हुआ करती थी, मुंबई में और लाहौर में भी थी, लेकिन मेन जो प्रोडक्शन होता था, सारे बड़े प्रोडक्शन हाउसेस जो थे वो उस समय कलकत्ता में थे, और कलकत्ता के ही श्रेष्ठ संगीतकार गायक हमको इसी वजह से मिले, और बांग्ला के भी श्रेष्ठ निर्देशकों का हमें योगदान मिलता है हमारी प्रारंभिक फिल्मों में। केसी डे जी नेत्रहीन गायक थे
1: जी।
2: और दरअसल जब वो मुंबई जब उनका आना हुआ बाद में, तो उनके भतीजे थे मन्ना दा, तो मन्ना डे जी को इसलिए भेजा गया था कि भाई काका हैं उनको दिखाई नहीं देता है, तो आप हाथ पकड़ करके अपने काका को हर जगह लेकर जाएंगे ताकि काका सुरक्षित रहें। बम्बई बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती हैं, मतलब लोग कलकत्ता में रहने वाले डरते थे। तो केसी डे साहब यहाँ आए और उन्होंने बहुत सारे गाने गाए, पर आज मैं चाहता हूँ कि आप हमें एक गीत सुनाएं जो फिल्म का गीत है। ये फिल्म है धूप छाँव, उसमें उन्होंने गाया भी था
1: जी,
2: और उसमें उन्होंने एक्टिंग भी की थी
1: जी जी,
2: तो उनके ही ऊपर वो फिल्म आया गया था
1: जी।
2: तो मैं चाहता हूँ 1935 की फिल्म धूप छाँव का ये गीत श्री कृष्ण चंद्र डे, जिनको हम केसी डे जी के नाम से जानते हैं। बाबा मन की आंखें।

0: धूम छाओ फिल्म का ये गाना केसी डे के स्वर में अभी आपने सुना। दादा हमें बताइए कि केसी डे के गीतों की जो लोकप्रियता थी बहुत ज्यादा थी, तो क्या उनके गायन की विशेषता थी, क्या कारण था इतने लोकप्रिय कैसे हुए?
1: भारतीय मानस की विशेषता रही है कि एक तो उनको सधा हुआ गाना अच्छा लगता है,
0: जी
1: कि सधा हुआ गाना है, सीखा हुआ गाना है। तो जैसे भी हमारे यहाँ बहुत सारे सधे हुए गायक थे, रफ़ी साहब थे, लता जी, आशा जी, मन्ना दा स्वयं,
0: जी जी
1: जिन्होंने संगीत सीख करके गाना गाया। पर कुछ गायक थे जो मस्ती वाले गायक थे,
0: जी जी
1: और कुछ गायक थे जिनको ईश्वरीय उनकी आवाज़ में तत्व होता था,
0: वरदान मिला था।
1: वरदान मिला होता था कि वो जब गाते थे तो आपकी लौ लग जाती थी, आपकी अपने आप आंखें बंद हो जाती थी। और ये जो गाना है, इसके अगर आप शब्दों को भी ध्यान से सुने तो इतना सुंदर इसका काव्य है।
0: जी
1: और वो लिखा था वसंत कुमार दुबे जी ने,
0: जी जी
1: बाबा मन की आंखें खोल, दुनिया क्या है खेल तमाशा, 4 दिनों की झूठी आशा, पल में तोला पल में माशा, ज्ञान तराजू ले के हाथ में, तोल सके तो तोल, बाबा
0: बाबा
1: मन की
0: मन की
1: आंखें
0: आंखें
1: खोल।
0: खोल।
1: तो इस तरह का आप ये भी देखिए कि कैसे इतने कम शब्दों में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश इसके अंदर है। तो आप सब श्रोताओं को ये रचना अच्छी लगी होगी, और मैं चाहता हूँ इसी क्रम में आप एक और रचना केसी डे जी की सुनाएं। ये भी बहुत प्रसिद्ध रचना है, मिश्र भैरवी में, फिल्म है पूरन भगत।
0: जी
1: ये मेरा ऐसा अनुमान है कि 1933 या 1934 की फिल्म है, और शब्द हैं जाओ जाओ मेरे साधु, रहो गुरु के संग। आप सब इसका आनंद लें। इसके संगीतकार थे श्री आर सी बोराल।
0: जी।

0: श्रोताओं, आपने अभी ये गीत सुना आदरणीय केसी डे जी की आवाज में। दरअसल कृष्णचंद्र डे, केसी डे साहब जो गाते थे, उसमें न केवल शास्त्रीय संगीत का अंश तो होता ही था, लेकिन उसमें बंगाल की जो लोक गीत की परंपरा है उसका भी बहुत सारा अंश वो समाहित करते थे, जैसे कीर्तन
1: जी जी,
0: जैसे भटियाली। तो इस तरह की रचनाओं का असर, आप जब एक लोक गायक होते हैं, लोकप्रिय गायक होते हैं, तो आपके गाने में कहीं ना कहीं वो असर जो है वो आ जाता है
1: जी।
0: तो ये एक रचना मैं आपको बांग्ला में सुना रहा हूँ ताकि आपको उसकी खुशबू बंगाल की मिलेगी, तो आपको पता चलेगा कि इस खुशबू का प्रयोग कैसे केसी डे जी के गानों में, एस डी बर्मन साहब के गानों में या और दूसरे बंगाली संगीतकारों के गानों में आपको दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा।
1: जी, आप सुनाएं प्लीज।

0: क्या बात है दादा, ऐसे लग रहा है कि अब तो
1: ये
0: आपसे यही अनुरोध
1: भटियाली का रंग
0: करें।
1: है, मैं चाहता था कि श्रोताओं को थोड़ा सा इसका भी आनंद मिले, इसलिए
0: अब हम श्रोताओं से आपकी ओर से वादा कर रहे हैं कि अगली कड़ी में एक रंग भटियाली का जरूर सुनाएंगे। आप जो भी जानकारी देना चाहें, जो भी आप चाहें सुनवाएं, लेकिन एक भटियाली का रंग अगली कड़ी में जरूर सुनवाएं।
1: जरूर।
0: इस बात के साथ हम श्रोताओं से अनुमति ले रहे हैं। नमस्कार जी।
1: नमस्कार।
2: शताब्दी की भक्ति रचनाएं, ये श्रृंखला आप सुन रहे थे। आमंत्रित कलाकार गायक संगीतकार पद्मश्री पंडित शेखर सेन, आपसे बातचीत कर रही थी ममता सेन। आज हमने सुनी इस श्रृंखला की चौथी कड़ी, तबला संगत आशीष बिस्वास, तकनीकी सहायक HR पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब दीजिए अनुमति, नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स।
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।

0: नो, लोन लिए गए काम में लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
1: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
0: आप कौन?
2: आरबीआई कहता है,
3: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
4: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
5: अगला कार्यक्रम भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।
6: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

बरस की भई, सोलह बरस की, सोलह बरस की भई उमरिया, सोलह बरस की भई उमरिया। गोरे गोरे पाँव में झांझन, गोरे गोरे पाँव में झांझन, चाल करे बदनाम, होए होए चाल करे बदनाम, हाय हाय चाल।

ऐसा मुखड़ा सब बोले हाय राम होए होए सब बोले हाय राम हाय हाय सब बोले हाय राम हाय हाय सब बोले हाय राम सबकी लागी उस पे नजरिया सोलह बरस की भई उमरिया सोलह बरस की भई उमरिया सोलह बरस की।

0: सोलह बरस की भाई उमरिया,
1: सोलह बरस की भाई उमरिया।
2: शमशाद बेगम और मोहम्मद रफी की और साथियों की आवाजों में आप सुन रहे थे आग फिल्म का गीत। बहसात लखनवी ने गीत को लिखा था और राम गांगुली ने धुन बनाई थी। लीजिए अब सुनिए हमराही फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की, शब्दकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह।

0: दिल तो पागल है,
1: दिल तो पागल है,
0: दुश्मन
2: चिट्ठी न कोई संदेह,
0: गदर एक प्रेम कथा,
3: मैं निकला ओ गट लेके,
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
4: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा,
0: एक उत्तम जीवन की कहानी, उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: की आवाज थी, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद अली की धुन थी। आप भूले बिसरे गीत कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद फिर से हाजिर होंगे।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लाना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनु HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

नदिया के पार फिल्म का गीत आपने अभी सुना। आवाजें थी लता मंगेशकर और चितलकर की, संगीतकार थे सी रामचंद्र। लीजिए अब सुनिए प्यार की जीत फिल्म का गीत, आवाज सुरैया की है।

0: ओ दूर जाने वाले वादा न भूल जाना। सुरैया की आवाज में प्यार की जीत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। कमर जलालाबादी ने बोल लिखे थे और हुस्नलाल भगत राम ने धुन बनाई थी।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो खेची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: एक विलक्षण गायक।
1: अरे ओरे हे।
0: संगीत के साधक।
1: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की।
0: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
1: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
0: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
2: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
0: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत।

0: से।
1: अनोखी अदा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे, शमशाद बेगम की आवाज थी, शकील बदायूनी के बोल थे, नौशाद अली की तर्ज। लीजिए आप सुनिए एक्ट्रेस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। बोल हैं नक्षब के, संगीतकार हैं श्याम सुंदर।

0: हम अपने दिल का फसाना उन्हें सुना ना सके। एक्ट्रेस फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। अभी आप सुन रहे थे नक्षब के बोलते श्याम सुंदर का संगीत। इसी गीत के साथ ही आज का भूले बिसरे गीत यहीं समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। सविता सिंह को नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए।

0: वीगो टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: एड्स, एचआईवी, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है

0: तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: हे राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी को सविता सिंह का नमस्कार।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है,
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
3: पहले तुम,
4: पहले तुम,
3: पहले तुम,
4: पहले तुम,
3: पहले तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
3: अच्छा मैं कहती हूँ।

0: लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाज़ों में बॉबी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। गीतकार आनंद बख्शी थे और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो वो खींची धाम के गेट के नीचे खुलता है। वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
3: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
4: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम। तो इसको लीला बोलते हैं।
3: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: तराना फिल्म का गीत आपने अभी सुना शैलेंद्र सिंह और उषा खन्ना की आवाज़ों में। तिलक राज ने इस गीत को लिखा था, राम लक्ष्मण ने धुन बनाई थी।
1: उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक, उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू,
2: पेंटर बाबू
1: वारिस, और फिर संगीतकार उत्तम सिंह। दिल तो पागल है,
3: दिल तो पागल है,
1: दुश्मन
4: चिट्ठी न कोई संदेह,
1: गदर एक प्रेम कथा,
5: मैं निकला ओ गट लेके,
1: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की,
6: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पाव,
1: एक उत्तम जीवन की कहानी। उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: हम हैं राही प्यार के, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। इस कार्यक्रम में अब समय है कि बहुत छोटा सा एक अंतराल लिया जाए, उसके बाद फिर से उपस्थित होंगे।

0: पसंद भी आ जाएगी।
1: अरे यस सर, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है और ये डिजाइन भी नया है।
0: डिजाइन नया है वो तो ठीक है, लेकिन सोने की प्योरिटी का प्रूफ कहाँ मिलेगा?
2: बनिए एक जागरूक ग्राहक, आज ही डाउनलोड कीजिए BIS केयर ऐप। सोना खरीदने से पहले BIS केयर ऐप पर HUID कोड अवश्य वेरीफाई करें।

0: आशा भोसले और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में आप सुन रहे थे रफू चक्कर फिल्म का गीत। गीत गुलशन बाबरा का था, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये

0: जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: सुषमा श्रेष्ठ से पूर्णिमा बनने तक का एक सफर। संगीत की दुनिया के दिलचस्प अनुभव और जिंदगी के अनकहे किस्से।
1: यादों की बारात निकली है आज के द्वार।
0: मिलिए जानी मानी गायिका पूर्णिमा से एक खास बातचीत में।
2: उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
0: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: मेरे सनम फिल्म का गीत लीजिए, सुनिए मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

0: मेरा अरमा भी रह जाए, हाय हमदम मेरे।
1: मेरे सनम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी, संगीतकार थे ओपी नैयर। लीजिए अब सुनिए सांच को आज नहीं, इस फिल्म का गीत। आवाजें हैं उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह के। कुलवंत जानी ने गीत लिखे हैं, राम लक्ष्मण ने धुन बनाई।

0: सांच को आँच ने इस फिल्म का गीत आपने अभी सुना। आवाजें थी उषा मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की, कुलवंत जानी की बोल थे राम लक्ष्मण का संगीत। और इसी गीत के साथ ही आज का हमें राही प्यार की ये कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: गांधी जी के सपनों का भारत बनाएंगे, चारों ओर स्वच्छता फैलाएंगे।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। सुबह के ठीक 8 बजने को हैं। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष किए नियुक्त। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं असमिया, बंगाली, मराठी, पाली

0: और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का कड़ा विरोध किया। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया आमंत्रित। और जापान के नागोया में आज एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह। भारतीय निशानेबाज नीरू ढांडा होंगी ध्वजवाहक। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को स्वीकृति दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। इन 5 केंद्रों की स्थापना भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, अनुसंधान और संरक्षण के लिए संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया।
3: भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाढ़ की ओर बढ़ते रहे। इसके बाद BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान से इन घटनाओं और नशीले पदार्थों की तस्करी की जांच कराने और अपनी सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। साथ ही पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सम्मान करने और अपनी तरफ से अवैध आवाजाही रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी।
4: प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में युवा प्रवासी भारतीय दिवस का भी आयोजन होगा। इसमें दुनिया भर से भारतीय मूल के युवा, कारोबारी, पेशेवर, शिक्षाविद और नवाचार से जुड़े लोग शामिल होंगे। प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के सम्मान में मनाया जाता है। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस का यह 19वां संस्करण दुनिया भर में रह रहे भारतीय समुदाय के भारत के साथ संबंधों को और मजबूत करने पर केंद्रित होगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट कैप्टन स्मिथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसराइल के आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पारंपरिक औपचारिक ज्योति प्रज्वलित

0: करने के लिए आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ से फोन पर बात की और उनके साहस की तारीफ की। उन्होंने कैप्टन स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। श्री नेतन्याहू ने कैप्टन स्मिथ के जल्द और पूरी तरह स्वस्थ होने की कामना की और उनके परिवार को भी शुभकामनाएं दी। ये सम्मान इसीलिए खास है क्योंकि इसराइल में स्वतंत्रता दिवस पर ज्योति जलाने का सम्मान आमतौर पर केवल इसराइल नागरिकों को दिया जाता है। कैप्टन स्मिथ का इस समय अबू धाबी में उपचार चल रहा है। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लेंडो ने भी भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटना को होने से बचा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इस भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आज की हमारी विशेष श्रृंखला में हम आपको देश में विकसित हो रहे आधुनिक नागरिक उड्डयन ढांचे और हवाई अड्डों पर उपलब्ध विश्व स्तरीय सुविधाओं से परिचित कराएंगे।
1: बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज यात्रियों और कार्गो के लिए एक बड़ा हब बन गया है जो टेक सिटी बेंगलुरु को भारत और दुनिया भर की जगहों से जोड़ता है। 2025-26 के दौरान यहां 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने यात्रा की, जिसमें अकेले इंटरनेशनल यात्रियों की संख्या में लगभग 24% की बढ़ोतरी हुई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस एयरपोर्ट में लगभग 2.8 लाख विमानों का आना जाना भी दर्ज किया गया। पिछले साल यहां 5 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो को संभाला, जिससे कारोबार भारत और विदेशों के बड़े बाजारों से जुड़े। मॉडर्न चेक इन, डिजी यात्रा और बैगेज सुविधाएं, फ्लाइट की जानकारी देने वाले डिस्प्ले, लॉन्च और शानदार इंटीरियर की वजह से सोशल मीडिया पर इसकी काफी तारीफ हुई है। T2 का टर्मिनल इन द गार्डन कॉन्सेप्ट, जिसमें हरी दीवारें, छत से लगे बागान, सुंदर लैंडस्केप और सूरज की स्वाभाविक रोशनी को फिल्टर करने वाले इंजीनियर बांस का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको याद दिलाता है कि बेंगलुरु को गार्डन सिटी भी कहा जाता है। यह एयरपोर्ट यात्रियों की सुविधाओं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, अनोखे आर्किटेक्चर और कड़ी सुरक्षा का बेहतरीन मेल है। साथ ही यह उस शहर की पहचान को भी दिखाता है जिसकी ये सेवा करता है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। शहरी विकास मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हाल ही में मंदिर का दौरा किया और अधिकारियों तथा इस्कॉन के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सरकार नव द्वीप को स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकसित करने की भी योजना बना रही है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रिजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। मतदान मंगलवार 6 अक्टूबर को होगा। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नंदीग्राम में भाजपा उम्मीदवार हसी रानी रथ के समर्थन में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। स्पष्ट और सुरक्षित मतदान सुनिश्चित कराने के लिए दोनों विधानसभा क्षेत्रों में केंद्रीय बलों की टुकड़ियों को तैनात किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजिशकियान ने कहा है कि अमेरिका के बढ़ते आर्थिक दबाव और प्रतिबंधों के बीच ईरान ने नई व्यवस्था अपनाई है। सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति पजिशकियान ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी ईरान की अर्थव्यवस्था पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका लगातार ईरान की अर्थव्यवस्था और वित्तीय नेटवर्क पर प्रतिबंध लगा रहा है। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिवेहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि रूस की तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेन के हमले जारी रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस ने कीव और अन्य यूक्रेनी शहरों से आम लोगों को विस्थापित करने के उद्देश्य से हवाई हमले तेज करने की नई नीति अपनाई है। श्री जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों को ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिससे पता चला है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सर्दियों से पहले नागरिक ठिकानों पर हमलों का दायरा बढ़ाने वाली नई सैन्य नीति को मंजूरी दी है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर

0: घोषणा किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों की याद में आयोजित की जा रही है। श्री सेखों ने वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन किया था। और अब जापान में आज होने वाले एशियाई खेलों के समापन समारोह की जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: जी फरहत, खेल खबरों में शुरुआत करते हैं आज जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होने वाले भव्य एशियाई खेलों के समापन समारोह के साथ। समापन समारोह भारतीय समय के अनुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल हैं। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की ध्वजवाहक महिला निशानेबाज नीरू होंगी। वो तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगी। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए क्रिकेट की, तो भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से अपने नाम कर ली है। पहले 2 मैच जीतने के बाद भारत को कल रात न्यू चंडीगढ़ में खेले गए अंतिम मैच में 5 विकेट से हार का सामना करना पड़ा। तो फरहत, ये थे अब तक के कुछ खेल समाचार।
0: मौसम विभाग ने आज केरला, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी अगले 2 दिन में बिजली कड़कने, तेज हवाएं चलने और गरज के साथ बारिश की संभावना है। वहीं कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रह सकता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए expert@airnewshindi.com को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: धन्यवाद फरहत। 20वें एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन की खबर आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, गोल्डन 5 के साथ चौथे स्थान पर पहुंचा भारत। पुरुष क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 19 रन से हराकर जीता स्वर्ण। पुरुष हॉकी टीम ने मलेशिया को 5-1 से हराकर कटाया ओलंपिक टिकट। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, स्वर्णिम उछाल, क्रिकेट से लेकर हॉकी में गोल्ड मेडल। हिंदुस्तान ने उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन के आर्थिक सम्मेलन में संबोधन का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचना जरूरी। उपराष्ट्रपति ने कहा, समावेशी विकास से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अमर उजाला ने युद्ध अभ्यास तरंग शक्ति शीर्षक से लड़ाकू विमानों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, तेजस, राफेल और F-35 ने एक साथ भरी उड़ान। बच्चों की देखभाल के लिए पिता को भी मिल सकती है छुट्टी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने निजी क्षेत्र के पुरुष कर्मियों को भी चाइल्ड केयर लीव देने समेत 37 सिफारिशें दी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, स्क्रीन का घातक नशा, भारतीय रोजाना गवा रहे 141 करोड़ घंटे। भारत में 66 करोड़ से ज्यादा लोग ऑनलाइन वीडियो देख रहे, राजस्थान पत्रिका में है। कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडालों में दिखेगी राम राज्य की झलक। पंडाल में भगवान राम और हनुमान की होगी मूर्तियां, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने राजस्थान में हड़ौती के प्रसिद्ध डोल मेले की तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, झिलमिल रोशनी, झूलों की रफ्तार, डोल मेले में उमड़ रहा हड़ौती।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया, नए अध्यक्ष की नियुक्ति। शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषा, असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत के अध्ययन के लिए 5 नए उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दी। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ का विरोध किया, पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक कोलकाता में। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भारतीय पायलट स्मिथ को भारत, इसराइल और पूरी दुनिया का नायक बताया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
5: आइए सुने त्रिवेणी।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें पशुओं की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वर्षों से मनुष्य का पशुओं के साथ कुछ अलग ही नाता रहा है। जहां कुछ पशु वनों और गहन जंगलों में ही वास करते रहे हैं, वहीं कई जानवरों ने मनुष्य का साथी बनकर उनका हाथ बटाया है, जैसे कि गाय, बैल, घोड़े जैसे जानवर हमें अलग अलग तरह से सहायता करते रहे हैं। पुराने समय में हमारे आवागमन और कृषि के लिए हमने इनकी मदद ली है। मनुष्य केवल इनसे सहायता ही नहीं लेता रहा है, बल्कि इन पशुओं को अपने साथियों के रूप में पाता है। वैसे एक समय था जब गाय, बैल, घोड़े के अलावा बंदर, भालू और हाथियों को भी पाला जाता था और वो साथी होने के साथ साथ जीविका का साधन भी बनते थे।

एक लंबे समय तक मनुष्यों ने पशुओं को अपनी आजीविका का साधन बनाकर उनका दोहन भी किया। वहीं सर्कस और सड़कों पर तमाशों के जरिए भी कई ऐसे जीवों को उनके आवास से दूर किया जिनके लिए मनुष्यों की बस्तियों में रहना उचित नहीं था। जल्द ही हम पशुओं के अधिकारों को लेकर जागे और हमने पशुओं के लिए उनके अनुकूल वातावरण और आवास बनाए। इससे पशुओं और मानवों के बीच एक संतुलन कायम हुआ। इस तरह हम पशुओं के मित्र बन गए और पशुओं ने तो अपनी मित्रता सालों साल निभाई है, खासतौर से पालतू पशुओं ने, जैसे कि बिल्ली।

जब भी पालतू पशुओं की बात करते हैं तो बिल्ली के साथ साथ श्वान यानी कुत्तों का उल्लेख भी आता है। कुत्ते को एक वफादार जानवर कहा जाता है। जब भी वो किसी व्यक्ति के परिवार या जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उसका साथ अंतिम समय तक निभाता है। कुत्तों की वफादारी और उनके सूंघने की शक्ति का ही परिणाम है कि वो ना सिर्फ आम घरों में हमारे साथ होते हैं

बल्कि पुलिस और सेना में भी भर्ती होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। केवल इन्हें पालना ही हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनकी सही देखभाल, खान पान का ख्याल रखना और समय समय पर जरूरी चिकित्सा और टीकाकरण करवाना भी आवश्यक है। तभी तो हमारे ये साथी हमारे साथ मजे से खेलता नजर आएगा।

तो आज विश्व पशु दिवस के मौके पर पशुओं के संरक्षण और उनकी प्रजातियों की सुरक्षा तो सुनिश्चित कीजिए ही, साथ ही उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने का प्रण भी लेते हुए एक बेहतरीन मनुष्य बनने का संकल्प लें। इसी संदेश के साथ आज के त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: स्वच्छ भारत है एक बड़ा अभियान, सब मिलके करें अपना योगदान।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
3: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको

0: आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ो पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

0: सर्टिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 जी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ा पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: लीजिए सुनिए कार्यक्रम चित्रलोक।

0: अपडेट जारी।
1: हम सब का यही सपना स्वच्छ भारत हो अपना।
2: में उसका अंतरा हमेशा पंचमदा मेरे लिए पता नहीं क्यों गाते थे। कभी शोज के लिए गए, बस में साथ में बैठे तो मेरा हाथ पकड़ के, वो अंतरा था ना कि रखना भरोसा उस पे सदा।
3: बॉम्बे टॉकीज में 3 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
1: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
0: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
1: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा वी खतरा हो सकदा है।
2: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा वी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित।

0: देखो सवेरा पूछे जाना है कहाँ ऊंचाई फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आवाजें थी जावेद अली, दीपाली साठे और मधुवंती बागची के इरशाद का मिलके ये बोलते और अमित त्रिवेदी का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना

0: जानते हैं संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम।

0: सुनील लोधी की आवाज में हनुमान अंश फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। ये रचना एक पारंपरिक रचना आपने अभी सुनी। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं इस समय। आइए इस कार्यक्रम में लेते हैं एक बहुत छोटा सा ब्रेक।
1: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
2: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
1: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
2: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से

0: उठा लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
1: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV/AIDS फ्री बनाएं। HIV/AIDS की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: गंदगी को दूर भगाओ, भारत को स्वच्छ बनाओ।

तेजस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रश्मित कौर और शाश्वत सचदेव की आवाज़ थी, कुमार के बोल थे, संगीत शाश्वत सचदेव का था। यह है बार बार देखो फिल्म का गीत। आवाजें हैं अरमान मलिक और नीति मोहन की, कुमार के बोल हैं और अमाल मलिक का संगीत।

विश्व अंतरिक्ष सप्ताह साथियों मनाया जा रहा है, वर्ल्ड स्पेस वीक। हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाने वाला दुनिया का एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय उत्सव है। ये मानवता के सपनों की उड़ान का उत्सव है। अंतरिक्ष हमेशा से ही हमारे लिए रहस्यों का महासागर रहा है। ये 7 दिन पूरी दुनिया को एक धागे में पिरोता है। जब एक बच्चा किसी कोने में बैठकर चांद को निहार रहा होता है, ठीक उसी समय दुनिया के दूसरे कोने में कोई वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाओं को तलाश रहा होता है। ये सप्ताह हमें याद दिलाता है कि भले ही हम सीमाओं में बटे हों, हमारा आसमान एक ही है, हमारी धरती एक ही है। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाए जाने का उद्देश्य लोगों को अंतरिक्ष विज्ञान और तकनीक के महत्व के प्रति जागरूक करना है। बच्चों और युवाओं में विज्ञान और अंतरिक्ष के प्रति जिज्ञासा पैदा करना, ताकि वे इसके बारे में और सीख सकें। इसलिए भी मनाया जाता है, जिससे हमारी धरती और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए अंतरिक्ष के ज्ञान का सही इस्तेमाल करना हो। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह के मनाए जाने का ये भी महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूती प्रदान करना है। आंतरिक शिक्षा, अनुसंधान और जन जागरूकता के कार्यक्रमों में दुनिया भर के देशों और अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच आपसी तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हमें ये संदेश देता है कि आकाश की कोई सीमा नहीं। जिज्ञासा और वैज्ञानिक सोच के साथ हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने और नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करते रहें।

0: चौहान और अलीशा मेंडोंसा की आवाजों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत अभी आप सुने थे। संगीतकार थे शंकर एहसान लॉय। फिल्म का नाम था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर। तो चलिए एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
1: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
2: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
1: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
2: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
3: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
4: मैं टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
5: नहीं।

0: सचिन जिगर और विशाल मिश्रा अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में ये गीत आपने परम सुंदरी फिल्म से सुना।
1: एक विलक्षण गायक।
2: अरे ओरे हे।
1: संगीत के साधक।
2: ओरे पथिकवा मत जइयो तू वृंदावन की हो।
1: उनके सुरों में भक्ति की निर्मलता है, संगीत की गहराई है, भावों में मिठास है।
2: राम नाम घन श्याम नाम शिव नाम सुमिर दिन रात।
1: वो हैं संगीतकार, गायक और अभिनेता शेखर सेन।
3: बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जो मीरा के भजन इस समय हम लोग सुनते हैं, अभी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ये जो भाषा है ये सधुक खड़ी भाषा है। मीराबाई ने जो भी लिखा वो सारे भजन जो थे वो मेवाड़ की भाषा में।
1: इन दिनों आप सुन रहे हैं श्रृंखला शताब्दी की भक्ति रचनाएं, संगीत सरिता सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार

0: एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गड्डी लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ 20 सितंबर से हर रविवार शाम 4 बजे

0: देवकी पंडित की आवाज में ये गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे संदीप नाथ और संगीतकार थे संदीप चौटा। फिल्म का नाम था साहिब बीवी और गैंगस्टर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन चित्रलोक कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम में अब वक्त है कि एक बहुत छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं।
1: जहां रहती है साफ सफाई, वहीं होती है अच्छे मन से पढ़ाई।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
0: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
1: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें।

0: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
1: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
0: आकाशवाणी चंडीगढ़।

दिल्ली सिक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे, आवाजें थी रेखा भारद्वाज और साथियों की। आज है दोस्तों वर्ल्ड एनिमल डे। विश्व पशु दिवस हर वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार की 2026 की ये थीम है, उनकी आंखों से दुनिया देखें। इस साल की ये थीम हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बदलते पर्यावरण और इंसानी दखल के बीच पशु पक्षी इस दुनिया को कैसे महसूस करते हैं। इनकी मदद करने के लिए विश्व पशु दिवस मनाने का ये उद्देश्य दुनिया भर के पशुओं के जीवन को बेहतर बनाना और उनकी देखभाल करना आदि, इनकी मदद करने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास नहीं करना, बस छोटे छोटे कार्यों से उनकी सहायता की जा सकती है। जैसे पक्षियों के लिए अपने छत या बालकनी में दाना पानी रखें, गाड़ियों को संभाल कर चलाया जाए ताकि उसकी चपेट में ये ना आ जाए। यदि कोई पशु पक्षी घायल दिखे अपने आसपास तो किसी पशु संस्था या चिकित्सक से संपर्क करें। पशु पक्षियों के साथ दया करुणा और प्रेम का व्यवहार करें और उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति लें। पशु पक्षी हमारी भाषा नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं हमसे अपेक्षा रखते हैं और हमें करना भी चाहिए। आइए संकल्प लें इस विश्व पशु दिवस पर इन बेजुबान जीवों के प्रति हम संवेदनशील रहेंगे, ये न केन प्रकारेण इनकी रक्षा करेंगे ताकि ये पशु पक्षी भी सुरक्षित जीवन जी सकें और हम भी। ये गाना आइए अब सुनते हैं। ये गाना एक था टाइगर फिल्म से है।

0: एक था टाइगर फिल्म का गीत आपने अभी सुना, आवाजें थी तरन्नुम मलिक और मोहित चौहान की, कौसर मुनीर के बोल थे, सुहेल सेन का संगीत था।
1: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता, घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: लुटेरा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोनाली ठाकुर की आवाज से। अमिताभ भट्टाचार्य के बोल दिया अमित त्रिवेदी का संगीत था। आपका दिन शुभ रहे, आप सुखी हो, समृद्ध हो, इसी कामना के साथ ही आज सविता सिंह को चित्रलोक कार्यक्रम समाप्त करने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रलोक, ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
2: मैं ता टीका ला लिया, हुण तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लाउणा।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन लई मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।
1: लीजिए पेश है कार्यक्रम आज का अखबार।
5: आज का अखबार। आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
6: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
7: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
6: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
7: BIS केयर ऐप से, जहां आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
8: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।

मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रोग्राम आज का अखबार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मोहम्मद असलम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बेहतर, स्वस्थ, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, एक बात तो आपके भी दिमाग में आती होगी और दुनिया इस वक्त यही सोच रही है कि तकनीक आती है, आसानी तो लाती है, पर साथ ही साथ वो लाती है एक टेंशन। जी हां, टेंशन इस तकनीक के गलत इस्तेमाल से पैदा होने वाले खतरे की। चलिए पहेलियां ना बुझाते हुए एक रिपोर्ट का दावा आपसे साझा करते हैं जिसने दुनिया के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। AI, ये नाम तो अब हर किसी की जुबान पर लगभग है ही। इसने सबका काम जो बहुत आसान कर दिया है, मिनटों में मेल लिखी और अपने बॉस को भेज दी। कोई डिजाइन या असाइनमेंट तैयार करना हो तो इसकी हेल्प ले लेते हैं, कोई सलाह लेनी हो, अंधाधुंध बिना देखे अपनी डिटेल्स भर के इसका इस्तेमाल हमने शुरू कर लिया है। लेकिन ये खतरा भी बन रहा है। जी हां, एक बहुत बड़ी कंप्यूटर एप्लीकेशन

एक टेंशन। जी हां, टेंशन इस तकनीक के गलत इस्तेमाल से पैदा होने वाले खतरे की। चलिए पहेलियां ना बुझाते हुए एक रिपोर्ट का दावा आपसे साझा करते हैं जिसने दुनिया के लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। AI, ये नाम तो अब हर किसी की जुबान पर लगभग है ही। इसने सबका काम जो बहुत आसान कर दिया है, मिनटों में मेल लिखी और अपने बॉस को भेज दी। कोई डिजाइन या असाइनमेंट तैयार करना हो तो इसकी हेल्प ले लेते हैं, कोई सलाह लेनी हो अंधाधुंध बिना देखे अपनी डिटेल्स भर के इसका इस्तेमाल हमने शुरू कर लिया है। लेकिन ये खतरा भी बन रहा है। जी हाँ, एक बहुत बड़ी कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर कंपनी, इसने अपनी डिजिटल डिफेंस रिपोर्ट 2026 में ये दावा किया है, जिसे देश के अखबारों ने प्रमुखता से छापा भी है। क्या कहती है ये रिपोर्ट? ये बताती है AI से अब साइबर अटैक भी घंटों की जगह मिनटों में संभव है, और बताया जा रहा है कि इस अटैक के लिए सरकारें टॉप टारगेट हैं। जी हां, दुनिया भर की सरकारें। पर इसका मतलब ये नहीं कि आम लोगों पर यह खतरा नहीं है। पर डिफेंस सेक्टर में रैंसमवेयर 5 गुना बढ़ा है इस रिपोर्ट के मुताबिक, और ये रिपोर्ट दुनिया की लगभग सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन ने साझा किया है, इसलिए लोग इस पर ध्यान भी दे रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वॉइस फिशिंग 502% बढ़ी है, QR फिशिंग यानी कि जो स्कैनर का जो कोड होता है उसकी फिशिंग 14.5 करोड़ मामले उसकी फिशिंग के सामने आए। ऑनलाइन शॉपिंग एंड वेब ब्राउजिंग में फेक कैप्चा दिखाकर यूजर के सिस्टम को हैक किया जा रहा है। यही नहीं, वर्चुअल मीट प्लेटफॉर्म्स पर फोन करके या IT सपोर्ट बनकर कर्मियों से ठगी हो रही है। तो अब ऑनलाइन खरीदारी में डिटेल्स अंधाधुंध तरीके से डालना या AI का इस्तेमाल थोड़ा सजग और समझदार तरीके से होकर हम सबको करना है।

0: दवाई से नाता तोड़ो, सफाई से नाता जोड़ो। सब रोगों की एक ही दवाई, हर तरफ रखो साफ सफाई।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज का अखबार। कार्यक्रम में अब बारी है हेडलाइंस की, यानी वो खबरें जो बनी देश और विदेश की सुर्खियां। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्ष 2026-27 के लिए कई संसदीय समितियों का गठन किया, नए अध्यक्ष नियुक्त किए। 3 दिन की लगातार छुट्टियां, हिमाचल से उत्तराखंड तक सड़कों पर महाजाम रहा, पार्किंग में नहीं मिली जगह। असम सरकार ने बनाया नियम, सीएम के काफिले के लिए नहीं रोकी जाएगी एम्बुलेंस। राष्ट्रीय महिला आयोग ने मातृत्व और बाल देखभाल व्यवस्था मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को 37 सिफारिशें दी हैं। इनमें शामिल हैं माता पिता दोनों को CCL, 2030 तक 5 लाख क्रेच सीटें।

दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC द्वारा एक उम्मीदवार पर लगाए गए 3 साल के प्रतिबंध को लगभग सिविल डेथ के समान बताते हुए आयोग को लगाई कड़ी फटकार।

0: खूबसूरत होगा देश हर छोर, करेंगे हम सफाई चारों ओर।
1: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
2: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
1: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
2: नशा करन ले मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू एचआईवी दा भी खतरा हो सकदा है।
3: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर एचआईवी होण दा शक है ते सरकारी हॉस्पिटल विच एचआईवी दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जन हित विच जारी।
4: एड्स एचआईवी ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: एचआईवी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं एचआईवी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
4: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है एचआईवी संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
5: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। एचआईवी एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं एचआईवी टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
4: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को एचआईवी एड्स फ्री बनाएं। एचआईवी एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: कार्यक्रम में अब बारी है रीजनल हेडलाइंस की। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिल्लौर अकादमी पहुंचकर पुलिस अधिकारियों को किया सम्मानित, बढ़ाया हौसला। पंजाब सरकार ने 2026 के लिए पराली जलाने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिए की व्यापक योजना तैयार। 125 ड्रोन और 12,000 अफसर रखेंगे नजर। चंडीगढ़ में आज थम सकती है वाहनों की रफ्तार। कई रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन। सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन चंडीगढ़ 2026 के चलते सुबह 4:30 बजे से लेकर 11 बजे तक मैराथन रूट पर वाहनों की आवाजाही प्रतिबंधित या डायवर्ट की जाएगी। मौसम विभाग के अनुसार चंडीगढ़ वासियों को ठंड का करना होगा और इंतजार। 2 से 8 अक्टूबर तक न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान। हरियाणा में नमी से धान खरीद की रफ्तार धीमी, भुगतान का इंतजार। हरियाणा में 91,000 सरकारी शिक्षकों को तबादले का इंतजार। नई

0: थी बदलती तारीख और कानूनी अड़चन के कारण अटकती रही प्रक्रिया। और अब खबरें खेल जगत से। एशियन गेम्स में भारत के 5 और गोल्ड मेडल, अब तक टोटल 21। एशियाड में भारत का दूसरा सबसे अच्छा प्रदर्शन, कुल 85 मेडल। भारत ने 2020 क्रिकेट फाइनल में पाकिस्तान को 19 रन से हराया। तीरंदाजी में 17 साल की कुमकुम मोहदे ने महिलाओं के व्यक्तिगत रिकर्व इवेंट में जीता गोल्ड, ऐसा करने वाली पहली भारतीय महिला। ये थी रीजनल हेडलाइंस।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: मैं ता टीका ला लिया, और तू भी ला ले।
3: नहीं यार, मैं नहीं लौना।
2: ए ता फिर यार मार वाली गल होगी।
3: नशा करन ली मजबूर करन वाले दोस्त दोस्त नहीं, दुश्मन हुंदे आ। नाले ए तेरी सुइयां सांझी करन नाल तेनू HIV दा भी खतरा हो सकदा है।
4: अज ही सरकार दी युद्ध नशा विरुद्ध मुहिम दा हिस्सा बनो ते दोस्तां दा भी नशा छुड़वाओ। बाकी जेकर HIV होण दा शक है ता सरकारी हॉस्पिटल विच HIV दा टेस्ट मुफ्त करवाओ। वधेरे जानकारी लई डायल करो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1097। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी वल्लों जनहित विच जारी।

0: इसी गीत के साथ आज का अखबार कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।
1: आज का अखबार कार्यक्रम के प्रायोजक थे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
1: आज का अखबार।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज का अखबार। ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर। सुबह के ठीक 10 बजने को हैं। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है और इनके नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि महताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूड़ी जल संसाधन समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि कांग्रेस सांसद सप्तगिरी उलाका ग्रामीण विकास और पंचायती राज समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार ये केंद्र शास्त्रीय असमिया, शास्त्रीय बंगाली, शास्त्रीय मराठी, शास्त्रीय पाली और शास्त्रीय प्राकृत के अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
2: ये केंद्र

0: में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता प्रदान करेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। 19वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन अगले वर्ष 7 से 9 जनवरी तक पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान करेंगी और समापन सत्र की अध्यक्षता करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने अपना पूरा जीवन भारत की आजादी के लिए समर्पित कर दिया। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारतीय पायलट स्मिथ के अदम्य साहस की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि पायलट स्मिथ ने एक भयावह घटने को होने से बचा लिया। पश्चिम बंगाल सरकार मायापुर में स्थित इस्कॉन मुख्यालय को एक बड़े धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है। इसके अंतर्गत इस्कॉन मंदिर के आसपास करीब 2100 बीघा जमीन पर विकास कार्य किया जाएगा। यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत के प्रस्ताव को 4 प्रस्तावों में सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाला युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष खत्म करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सैखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सैखों की याद में आयोजित की जा रही है। एशियन गेम्स 2026 का आज समापन होने जा रहा है। समापन समारोह जापान के नागोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समय के अनुसार ये शाम 6 बजे शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 MHz पर।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

0: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
1: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
0: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
1: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के

0: उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
0: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34 डी या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
0: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
2: और लीजिए अब पेश है लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो
4: हेलो,
3: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
4: हेलो चंडीगढ़।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं वर्सटाइल मशीन बद्दी।
1: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच। वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ
2: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
1: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी,
2: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए आज ही संपर्क करें 9736183070।
0: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
3: गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, प्रोग्राम हेलो चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त मोहम्मद असलम। दोस्तों, आज का विषय कुछ ऐसा जिसमें प्यार है, भावना है और एक मोह जुड़ा हुआ है। जी हाँ, मोह कैसा? अपने आसपास के लोगों से तो हम मोह रखते ही हैं, लगाव रखते ही हैं, लेकिन हम में से बहुत से ऐसे हैं जो पशु प्रेमी भी हैं। तो इसी को लेकर आज का हमारा विषय है, जीव जंतुओं से करें प्यार, इनका भी है ये संसार। इस विषय को लेकर आप क्या समझते हैं? जी हाँ, विषय एक बार फिर से सुन लीजिए। जीव जंतुओं से करें प्यार, इनका भी है यह संसार। तो इस टॉपिक को लेकर जो भी आपके मन में विचार हैं, आप हमसे साझा कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2660615, 2660617, 2660619 और चंडीगढ़ का एसटीडी कोड है 0172। तो चलिए, श्रोताओं ने कॉल्स की लाइन लगा दी है और एक एक करके सबकी कॉल अटेंड करते हैं। हेलो चंडीगढ़। नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन सा आप बोल रहे हैं?
4: मैं सुशील शर्मा ठियोग हिमाचल से बोल रहा था।
3: सुशील शर्मा
4: जी सर।
3: जी जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस टॉपिक पर?
4: इस पे तो यही कहूंगा सुन जी, ये तो सर्वविदित है कि जो है ये संसार जो है सृष्टि है, ये न केवल मानवों के लिए है लेकिन अपितु जो ये हमारे धरा पे चराचर पे ये जीव जंतु है, इनसे ही ये जो है इसकी जो है शोभा है।
3: बिल्कुल,
4: और
3: शोभा
4: हम अपनी से कहे ना, या नादानी कहे या मतलब अपनी मनुष्यों के अति लोभ के कारण हम जो है, जैसे मसलन आगजनी की घटनाएं हो जाती है, तो इसमें जो है जीव जंतुओं का जो है उनके प्राणों की क्षति हो जाती है।
3: बिल्कुल बिल्कुल
4: बिल्कुल। और ये देखना क्या बोलते हैं, जो आवारा जो गायों को छोड़ देते हैं, पशुओं को छोड़ रहे हैं जो है, जैसे ही गाय ने जो है दूध देना बंद कर दिया तो बिल्कुल जो है इसको निकाल करके आवारा छोड़ दिया। और जगह जगह पर गौ माता जो है बहुत बुरी स्थिति में है।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
4: तो इसको बड़ी चिंतनीय, बड़ी सोच का विषय है।
3: जी बिल्कुल, वही है ना, जैसे आपने कहा कि ये धरा सबके लिए है। जैसे हम अपना एक घर बनाते हैं और उसमें डेकोरेशन के लिए क्या क्या लगाते हैं कि सब कुछ अच्छा लगे, है ना, कहीं क्या कहीं क्या। तो ऐसे ही इस धरा पे सारे मानव भी, जीव जंतु भी उसी प्रकार हैं, तभी ये धरती सुसज्जित होती है,

0: तो बहुत अच्छे आपके विचार हैं और इस तरफ हमें सोचने की बेशक ज़रूरत है कि कैसे हम जीव जंतुओं का ख्याल रखें, और जब तक उनका हम उपयोग कर सकते हैं तब तक तो वो हमारे साथ हैं, लेकिन अगर उनसे कोई जैसे कुछ वस्तु पदार्थ लेने हैं तब तक ठीक, नहीं तो उसके बाद वो बेकार हो जाते हैं और उसको हम छोड़ देते हैं, है ना। तो ये इससे हमें बचना है और अपना प्रेम मोह बनाए रखना है जी। बहुत बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।
1: ज्वलंत विषय, बहुत ही आप जो है गंभीर विषय पे जो है सार्थक चर्चा होती है, इससे न केवल जैसा कि आकाशवाणी का ध्येय वाक्य है, न केवल इसमें मनोरंजन के साथ साथ जानकारी
0: जानकारी जागरूकता, बिल्कुल
1: जागरूकता
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका,
1: थैंक यू सर, थैंक यू
0: जी।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: बापू का घर घर पहुंचे संदेश, स्वच्छ और सुंदर हो अपना देश।
2: हेलो चंडीगढ़,

0: हेलो।
1: हेलो चंडीगढ़।
0: हाँ भैया जी, नमस्कार
1: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं?
0: जी। भैया योगेश जांगड़े बोल रहे हैं, बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: हाँ जी योगेश जी, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है।
0: ऐसा
1: हाँ, फिर से बोलिए।
0: थोड़ा सा तेज बोलने की कोशिश करता हूँ भैया।
1: नहीं, अब ठीक है, चलिए बोल लीजिए, बोल लीजिए
0: हाँ
1: जी। छत्तीसगढ़ से हैं आप जी? आपकी आवाज़ कट गई अब।
0: जी, योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
1: हाँ जी, हाँ जी योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे आज के इस विषय के बारे में?
0: अभी
1: योगेश जी, आप नेटवर्क में आ जाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी आवाज़ कट रही है लगातार।
0: पता नहीं भैया, हो सकता है नेटवर्क इशू, थोड़ा सा इतने में ही कोशिश कर पाऊंगा।
1: चलिए, हाँ बोलिए बोलिए।
0: ये धरातल हमारे पृथ्वी के बारे में है ना टॉपिक।
1: हाँ, जीव जंतुओं से करें प्यार, उनका भी
0: जी
1: है ये संसार।
0: बिल्कुल भैया, मानव समाज तो सबसे प्रबुद्ध कहा गया है अन्य जीवों की तुलना में, और अन्य जीवों का संरक्षण भी हम मानव समाज की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम ही इसकी रक्षा कर सकते हैं, और उनके जैसे हमारे अधिकार हैं, उनको भी अधिकार दिए जाने चाहिए। कुछ उनके भी अधिकार हैं जिनकी हम संरक्षण कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते
0: बिल्कुल
1: हैं,
0: बिल्कुल,
1: कैसे किया जा सकता है ये
0: कैसे
1: एक?
0: यही है भैया, जैसे आसपास पक्षी जो नजर आते हैं हमारे छत में बालकनी में, उनके लिए दाना व्यवस्था कर सकते हैं, उनके लिए पानी मतलब रख सकते
1: ये तो
0: हैं।
1: आप निजी स्तर
0: और
1: पर करेंगे,
0: हाँ,
1: ठीक
0: ये
1: है?
0: निजी तौर पर है, अगर
1: हाँ,
0: आप
1: शुरुआत
0: सामूहिक
1: निजी
0: या
1: तौर पर
0: फिर
1: ही
0: जी
1: होगी बेशक,
0: जी
1: लेकिन
0: जी
1: लोगों को जोड़ने के लिए हमें उनको जागरूक करना पड़ेगा और उन्हें बताना पड़ेगा कि ये हम करते हैं तो क्यों कर रहे हैं।
0: ये मतलब बहुत सारी चीजें ये कर सकते हैं भैया, जैसे जीव जंतुओं के संरक्षण की बातें हैं तो वृक्षारोपण लगाना, वृक्षों की कटाई को थोड़ा सा रोकना, और जो भी जीव जंतु हमें जैसे रोड में बहुत सारे जीव जंतु मतलब जैसे गाय वगैरह रहते हैं, तो इनके संरक्षण के लिए तो सामूहिक प्रयास ही हो सकता है भैया, कि चलो हम ही थोड़ा सा उतर के उनको मतलब थोड़ा सा रास्ते से हटा दे, इनसे वो भी सुरक्षित रहेंगे और रास्ते में चलने वाले भी सुरक्षित रहेंगे।
1: अव्वल तो ये है कि रोड पर अपनी जो गति है उसको सीमित रखें, है ना? क्योंकि क्या है, ये जगह उनकी भी है। हम कहते हैं कि ये रोड पे ये आ गया, वो जानवर आ गया, रोड पे वो नहीं आए हैं, हम उनकी जगह पे जाके रोड बना लिए हैं,
0: बिल्कुल
1: समझे?
0: बिल्कुल
1: तो उनका भी ध्यान हमें ही रखना है। जिन जंगलों में, जिन बंजर जमीनों पे वो रहा करते थे, वहां हमने रोड निकाल दी है, तो वो कहाँ जाएंगे? तो उसके लिए हमें ही तो
0: बिल्कुल
1: सोचना है। तो सबसे पहले तो इससे दो काम हो जाएंगे। एक तो आप अपनी जो गति सीमा है वो सीमित रखिए, ताकि कोई दुर्घटना ना हो, कोई अचानक से सामने कोई जानवर, कोई गाय, कोई और जानवर, पालतू जानवर आ जाए, तो ध्यान रखना हमारा फर्ज बन जाता है, ताकि उनकी भी जो उनका जो जीवन है वो भी बचा रहे जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इसी तरह
0: जी
1: जुड़े
0: शुक्रिया।
1: रहिए आकाशवाणी चंडीगढ़ के साथ जी।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: हेलो चंडीगढ़।
2: हेलो सर, नमस्कार।
1: नमस्कार जी, कौन सा बोल रहे हैं?
2: सर मैं प्रदीप बोल रहा हूँ, संकट मोचन शिमला से।
1: अरे वाह, जगह का नाम ही बड़ा प्यारा है, संकट मोचन।
2: संकट मोचन,
1: अरे वाह क्या बात है। तो संकट से कैसे निकाले जीव जंतुओं को, उसके लिए क्या प्यार रखे मन में?
2: सर मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से हम इंसान से प्यार करते हैं ना, उसी तरह से हमें जानवरों से भी प्यार होना चाहिए।
1: बिल्कुल, उनकी कदर, उनका ध्यान रखना।
2: बहुत ही समझदार होते हैं इंसानों से कहीं ज्यादा।
1: बिल्कुल, उनकी सेंसेस हमसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है।
2: बिल्कुल सर, वो मतलब अब हम भी पेट लवर है तो आप ये देखिए कि वो इतना ऑब्जर्व करते हैं हमें कि अगर हम कभी उदास है या खुश है तो हमारी तरफ देखते रहते कि क्यों है ये उदास हो रहे थे ना सर।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, भाव वो भी समझते हैं।
2: बिल्कुल सर, बिल्कुल
1: जी, इसीलिए क्योंकि वो देखिए ये संसार उनका भी है तो उनके अंदर

0: भी भाव हैं, जान है,
1: बिल्कुल सर
0: है ना, तो इसलिए हमें उनका ख्याल भी रखना है और
1: बिल्कुल सर
0: इस धरा को सुसज्जित बनाए रखना है जो कि हम
1: हाँ
0: सभी से है
1: बिल्कुल
0: ना जी। बहुत अच्छा
1: बिल्कुल
0: लगा आपसे
1: सर
0: बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया
1: और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी
0: जी
1: मच, थैंक यू।
0: जी

मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरे दोस्त ऊपर वाला। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला।

क्यों भाई बादल क्यों भाई मोदी, मैं सच कहता हूँ मर्द टांगे वाला, मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मुझे दुश्मन क्या मारेगा, मेरा दोस्त है ऊपर वाला, मर्द टांगे वाला।

0: आज ही संपर्क करें 9736183070।
1: वर्सटाइल लिफ्ट बद्दी, भरोसा सुरक्षा का।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़। आज के इस कार्यक्रम में हमारा विषय है जीव जंतुओं से करें प्यार, इनका भी है यह संसार। तो आइए अगले लिसनर का भी विचार जान लेते हैं। हेलो चंडीगढ़।
3: हेलो हेलो
2: हेलो जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
3: हाँ सर, मैं एनके सिंगल बोल रहा हूँ, सेक्टर 20 पंचकुला से।
2: हाँ जी एनके सिंगल जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आज के इस विषय के बारे में।
3: बाय द वे, आपसे तो आपसे के टॉपिक से रिलेटेड कल एक कॉन्सिलेंटली इंसिडेंट हुआ कि हमारी हाई राइजिंग सोसाइटी है, एक बर्ड ट्रैप हो गई कोई टेरेस पे ना, तो किसी रेजिडेंट ने देख लिया।
2: अच्छा।
3: और इमीडिएटली उसने उसका फोटो खींच के ग्रुप जैसे होता है उसने ग्रुप में डाल दिया, और मेंटेनेंस टीम के पास भी वो मैसेज पहुंच गया, इमीडिएटली उन्होंने उसको पढ़ लिया। और मतलब विद इन 5-10 मिनट के अंदर अंदर हमारा सिक्योरिटी गार्ड टेरेस पे जाके उसको बर्ड को सेव कर दिया उसने ना।
2: क्या बात।
3: और बाद में फ्लाई करने लगी तो उसका
2: बिल्कुल सामूहिक प्रयास से ये जतन हो पाया है ना।
3: सर
2: सब लोग आगे आए।
3: Yes, sir.
2: और ऐसा करना ही चाहिए हमें अपने आसपास जहां हम रहते हैं। सबसे बड़ी बात आज की डेट में हमारे पास फोन होते हैं, स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप है, और हम ग्रुप बना सकते हैं।
3: Yes,
2: तो इस ग्रुप का उपयोग क्यों ना इन ऐसी चीजों के लिए किया जाए जहां पर जागरूकता हो, एक दूसरे का साथ हो, कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए सबसे पहले पड़ोस होता है ना। तो पड़ोस के लिए अगर वो पड़ोस का ग्रुप बन जाए अपने आसपास का, तो कोई भी किसी के भी घर में कोई भी एक आपत्ति आ सकती है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है, कहीं कोई जानवर के साथ हो सकती है, तो एक मैसेज एक संदेश गया और कोई ना कोई तो एक्टिव होता ही है।
3: नहीं आपका सजेशन ठीक है
2: जी, तो बहुत अच्छा लगा। और आपका आपके आइडिया से ये आइडिया आया है तो बहुत अच्छा लगा सुनकर, और बहुत अच्छा एक तरह से हमें सुझाव भी मिला।
3: कल का चांस की बात है कि कल ही इंसिडेंट हुआ है।
2: जी बिल्कुल, हमारे जीवन में कुछ ना कुछ घटता रहता है जी, किसी ना किसी के साथ। हमारे ये जो कार्यक्रम होते हैं आपके विचार लेने का मकसद ही यही होता है। हर किसी की अपनी एक जीवन में कुछ ना कुछ कहते ना घटित होता रहता है, अच्छा बुरा पॉजिटिव है ना नेगेटिव, लेकिन उससे ही तो विचार बनते हैं और आइडियाज निकलते हैं। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू सर
2: जी।

0: हेलो चंडीगढ़ कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे वर्सेटाइल मशीन बद्दी।
1: आपके सपनों का घर हो, फैक्ट्री हो या हो ग्राहकों से भरा शोरूम, हर मंजिल तक आसान और सुरक्षित पहुंच, वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी के साथ।
2: आपकी जरूरत के अनुसार हर तरह के लिफ्ट बनाएं, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और भरोसेमंद सर्विस प्रोवाइड कराएं।
1: वर्सेटाइल लिफ्ट बद्दी,
2: अपनी जरूरत के लिफ्ट बनवाने के लिए।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: हेलो चंडीगढ़।
2: नमस्कार जी,
1: स्वागत है कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं
2: जी? मैं ललित शर्मा बोल रहा हूँ, शिमला से।
1: हाँ जी, हाँ जी, ललित जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: जी
1: बताइए, क्या कहना चाहेंगे आज के इस विषय के?
2: आज बहुत ही मार्मिक विषय आपने रखा है
1: जी। बिल्कुल,
2: हमेशा ही अच्छे होते हैं।
1: आज विश्व पशु दिवस में
2: मैं क्या कहना चाहूंगा कि कोई भी धरती पे जो जीव जंतु है वो उसका कोई ना कोई अहम भूमिका है,
1: बिल्कुल वजूद है,
2: और वो हमें नहीं मालूम होता। ठीक है, जो वन्य जीव हैं वो अपना अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। कभी कभी उनके ऊपर आपदा आती है, तो ऐसा नहीं है जो जिनके हृदय में प्रेम होता है वो उनकी मदद भी करते हैं यदि कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया, कुछ हो गया। ऐसा मैं हिमाचल को लेके एक महत्वपूर्ण विषय आपके माध्यम से रखना चाहूंगा, वो ये है कि गाय या गौवंश को सड़क पर छोड़ने का

0: एक प्रचलन चल पड़ा है कुछ वर्षों से, 15-20 वर्षों से। पहले गाय जो ना कभी गोवंश कभी सड़कों पे नहीं दिखता था,
1: घरों में पाली जाती थी और
0: घरों में पाली
1: रखा
0: जाती
1: थी। जी, सम्मान से।
0: जी, तो हम लोग गौशाला भी चलाते हैं, लावारिस गौओं को वहाँ पे रखते हैं, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है क्योंकि गौशालाओं में एक लिमिट होती है कि आपके पास मान लो जैसे हिमाचल की परिस्थिति है, तो यहाँ पे अगर आपको पास 50-100 गौओं रखने की जगह है तो आप कितनी ये बढ़ा लेंगे, नहीं बढ़ा सकते
1: बिल्कुल।
0: लेकिन उसके आड़ में लोग जो है ना एक तरह का बिजनेस मॉड्यूल बना है कि आप हम गौशाला से आए हैं, हमारे को इतने पैसे दे दो, और वो रात के अंधेरे में गौएं जो है ना सड़क पे उतार देते हैं।
1: बिल्कुल, तो कहने का मतलब है इस तरह के फ्रॉड से भी हमें बचना है और हमें कोई ना कोई रास्ता भी निकालना है।
0: जी जी जी
1: जी, जी। चलिए, बहुत संक्षिप्त लेकिन अच्छा आपने एक सुझाव दिया है और एक एक तरह से मुद्दा भी बताया है, और हो सकता है हमारे लिसनर सुन रहे हों और इस मार्मिक विषय पर वो इसके बारे में कुछ सोच पाएं और आपस में चर्चा करें और कोई तो हल निकालेंगे, है ना?
0: बिल्कुल जी,
1: जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।

0: हेलो चंडीगढ़। हेलो,
1: हाँ जी, नमस्कार जी। आप असलम बोल रहे हैं
0: हाँ जी, हाँ जी, असलम बोल रहा हूँ जी। स्वागत है आपका
1: जी,
0: कार्यक्रम
1: आपको
0: में
1: बहुत बहुत सलाम हो जी।
0: जी। सलाम है जी, कौन साहब बोल रहे हैं?
1: मैं नरेंद्र शर्मा, सेक्टर 9, पंचकुला से बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी नरेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे आज के विषय के बारे में? संक्षिप्त में हम बात करेंगे क्योंकि समय
1: हाँ,
0: की
1: मैं
0: सीमा
1: इसमें
0: काफी।
1: ये कहना चाहता हूँ, हम आजकल बड़ा मॉडर्न में वर्ड यूज करते हैं, बीइंग ह्यूमन।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: बीइंग ह्यूमन का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हम आपस में इंसान इंसान से इंसान नहीं, ह्यूमन बीइंग रखनी है
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: हमें। जितने प्लेनेट पे और भी हैं रहने वाले पशु पक्षी वाइल्ड लाइफ, उनसे भी दया कृपा करनी है, उनका
0: बिल्कुल,
1: भी ध्यान रखना
0: दया भाव से ही तो मानवता है ना? तो ये
1: बीइंग
0: रखनी ही
1: ह्यूमन,
0: रखनी
1: उनको
0: है,
1: भी अप्लाई होता है।
0: बिल्कुल, उन पर भी अप्लाई होता है, इसीलिए उनका ख्याल रखना है हमें, और क्योंकि उनका भी ये संसार है
1: और
0: जी
1: गर्मी सर्दी में जो हमारे से हो सके पक्षियों के लिए करना चाहिए, जैसे
0: जी
1: पानी चाहिए गर्मियों में, सर्दियों में भी कवर दे सकते हैं पेट्स को या और किसी पशु को। दिसंबर जनवरी में हम कवर अप कर सकते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा
1: इसमें
0: आपने।
1: दिक्कत।
0: ये इन सब चीज़ों का ख्याल हमें ही अब रखना है। क्यों?
1: हाँ
0: इसकी
1: जी,
0: एक वजह ये भी है क्योंकि कहीं ना कहीं उनके एरिया में हम जाते जा रहे हैं, तो उनका
1: बिल्कुल
0: एरिया कम हो
1: बिल्कुल
0: गया है, उनका एरिया
1: बिल्कुल।
0: कम हो गया है, तो हमें ही तो उनका ख्याल रखना है जी। चलिए,
1: वैसे भी
0: बहुत
1: जब बर्ड्स वगैरह हमारे लॉन में आते हैं, कितनी खुशी होती है
0: जी,
1: हमें
0: देखकर ही मन वो हो जाता है कि हाँ यार,
1: उनकी आवाज सुन के
0: चहचहाने
1: कितने
0: से
1: खुश
0: जी।
1: हो जाते हैं।
0: सुबह जब उठते हैं, अब बिल्कुल भोर, अब तो लोग कम उठते हैं शायद, लेकिन
1: जी
0: अगर
1: जी
0: जल्दी उठें तो उन्हें पता लगे कि चिड़ियों का चहचहाना क्या होता है ना
1: जी
0: जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके
1: ठीक है जी, शुक्रिया।
0: जी।

0: कई साल पहले की ये बात है।
1: बोलो माँ, चुप क्यों हो गए?
0: भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ।
1: बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय।
0: खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे
2: भागो। इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम हेलो चंडीगढ़ यहीं पर समाप्त होता है। अपने रेडियो दोस्त मोहम्मद असलम को अब दीजिए इजाजत।
3: हेलो
4: हेलो,
3: कुछ आपकी कुछ हमारी बातें प्यारी प्यारी। हेलो चंडीगढ़,
4: हेलो चंडीगढ़।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आपकी कसम फिल्म के गीत। सबसे पहले लीजिए प्रस्तुत है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में ये गीत।

आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

अभी आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से और आपकी कसम फिल्म से किशोर कुमार की आवाज में ये अगला गीत।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
2: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं।
3: कदम से कदम मिलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है।
4: आइए अब अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में।

0: प्रोग्राम एक ही फिल्म से में हम आपको सुनवा रहे थे आपकी कसम फिल्म के गीत। इस फिल्म के गीत लिखे आनंद बख्शी ने और इन गीतों को संगीत से सजाया आरडी बर्मन ने। इसी के साथ प्रोग्राम एक ही फिल्म से को समाप्त करने की हमें दीजिए इजाजत।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
2: साफ सफाई अपनाएं, बीमारी को दूर भगाएं।
0: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनते हैं प्रोग्राम आकाशवाणी हेल्पलाइन।
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ से लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी हेल्पलाइन। आकाशवाणी हेल्पलाइन हर विभाग में हर मुद्दे पर होगी अब आपकी बात। आकाशवाणी हेल्पलाइन जो होगी अब आपके साथ। आकाशवाणी हेल्पलाइन प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रमेश कपूर का नमस्कार। दोस्तों, दूर संचार विभाग देश को जोड़ने में अहम भूमिका निभा रहा है। सुरक्षित नेटवर्क और तेज संचार सेवाओं से हर नागरिक को सशक्त और जागरूक बना रहा है। आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे दूर संचार सेवाओं और साइबर सुरक्षा के बारे में। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं श्री रविंदर कुमार, ITS DDG सिक्योरिटी, 1993 बैच के इंडियन टेलीकॉम सर्विस अधिकारी जो दूर संचार विभाग पंजाब LSA मोहाली में कार्यरत हैं, और इनके साथ साथ श्री चेतन शर्मा, ITS डायरेक्टर सिक्योरिटी, 2014 बैच के इंडियन टेलीकॉम सर्विस अधिकारी जो दूर संचार विभाग पंजाब LSA मोहाली में कार्यरत हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी हेल्पलाइन प्रोग्राम में।
3: धन्यवाद।
2: रविंदर कुमार जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही है कि दरअसल DOT LSA क्या है और इसकी क्या भूमिका और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं?
3: DOT दूर संचार विभाग का एक फील्ड यूनिट है जो कि एडिशनल DGT के नाम के हमारे डेजिग्नेटेड ऑफिसर से हेड करते हैं, और उसके नीचे हमारे पास 6 अलग अलग वर्टिकल्स हैं जिसमें हम बेसिकली टेलीकॉम के जो लाइसेंस इश्यूज होते हैं उनके इशूइंग और उनके जो वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसकी कंप्लायंस को मॉनिटर करते हैं। तो इसमें हमारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं, जैसे एक सुरक्षा विभाग जिसको सिक्योरिटी कहते हैं जो कि टेलीकॉम सिक्योरिटी को देखता है और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज को हैंडल करता है। इसी तरीके से एक कंप्लायंस वर्टिकल है हमारे पास जो कि टेलीकॉम के जो लाइसेंस होते हैं उसमें जो कंप्लायंस से रिलेटेड यानी कस्टमर को एनरोलमेंट करना और इसके अलावा जो EMF रेडिएशंस हैं उनको सीमाओं में रखना, इन सब के बारे में मॉनिटरिंग करता है और ऑडिटिंग करता है सारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की। एक टेक्नोलॉजी वर्टिकल है हमारे पास तीसरा, जिसमें कि हम लोग मेनली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज लाइक नई टेक्नोलॉजी 5G आ रही है, 6G आ रही है, उसके बारे में हमारी जो गवर्नमेंट की वेरियस पॉलिसीज हैं उसको इंप्लीमेंट करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ISPs हैं जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, उनकी प्रोविजनिंग, लाइसेंसिंग और उनकी ऑडिटिंग का काम भी हमारा टेक्नोलॉजी वर्टिकल करता है। चौथा वर्टिकल हमारा रूरल वर्टिकल है जो कि मेनली ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं हैं लोगों को टेलीकॉम सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए कार्यरत रहता है। और पांचवा वर्टिकल हमारा चंडीगढ़ UT को हैंडल करता है क्योंकि जो हमारा जुरिस्डिक्शन है पंजाब LSA का, ये एक्सटेंड करता है पूरे पंजाब राज्य में, अपार्ट फ्रॉम दैट चंडीगढ़ UT और पंचकुला का अर्बन एरिया। तो हमारा जो चंडीगढ़ वर्टिकल है वो मेनली चंडीगढ़ यूटी के और यूटी गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन का पार्ट प्ले करता है। छठा वर्टिकल हमारा प्रशासन है जो कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है।
2: जी, तो जिस तरह से आपने बताया कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, तो लाइसेंस इशू करते वक्त किन किन बातों का खास तौर पर आप लोग ध्यान रखते हैं?
3: देखिए, लाइसेंस इशू करने से पहले कंपनी की जो क्रेडेंशियल्स हैं वो वेरीफाई किए जाते हैं कि कंपनी भारत में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, इट शुड बी अ रजिस्टर्ड कंपनी इन इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: या विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके अलावा हमें ये चेक करना होता है उसकी टर्नओवर कितनी है और उसकी कैपेसिटी कितनी है और किस कैटेगरी के लाइसेंस इशू कर रही है। मतलब एक हमारे 3 कैटेगरी के लाइसेंस होते हैं और उसमें वेरियस सर्विसेज होती हैं जिसके ऑथराइजेशन दी जाती हैं। तो एक जो हमारा स्टैंडर्ड लाइसेंस है वो यूनिवर्सल लाइसेंस कहते हैं, यूनिफाइड सर्विसेज का, UL कहते हैं हम उसे। और उसके अंदर वेरियस ऑथराइजेशन होती हैं, जैसे आप इंटरनेट सर्विस देना चाह रहे हैं, आप वॉइस टेलीफोनी देना चाह रहे हैं और आप जो भी टेलीकॉम से रिलेटेड सर्विसेज हैं उसका VNO वगैरह अलग टेक्निकल होती हैं जिसके हिसाब से हम लाइसेंसेज इशू करते हैं कंपनीज को।
1: जी चेतन जी, संचार साथी क्या है और एक आम नागरिक को संचार साथी के बारे में क्यों जागरूक होना चाहिए?
2: जी संचार साथी बेसिकली एक ऐप है, एक पोर्टल भी है। तो संचार साथी एक हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है, नागरिक केंद्रित पहल है, जिसमें हम बेसिकली काफी सारी टेलीकॉम रिलेटेड जो समस्याएं हैं अपने हमारे नागरिकों की, उनको बेसिकली हम एक अम्ब्रेला के अंदर एक हमारे नागरिक को प्रोवाइड करते हैं जिसमें कई सारे मॉड्यूल्स हैं। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं तो हमारे लगभग संचार साथी ऐप में 6 मॉड्यूल्स आज की डेट में

0: डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है, नागरिक केंद्रित पहल है, जिसमें हम बेसिकली काफी सारी टेलीकॉम रिलेटेड जो समस्याएं हैं अपने हमारे नागरिकों की, उनको बेसिकली हम एक अम्ब्रेला के अंदर एक हमारे नागरिक को प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कई सारे मॉड्यूल्स हैं। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं तो हमारे लगभग संचार साथी ऐप में 6 मॉड्यूल्स आज की डेट में हम उसको चलाते हैं, जिनमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट है चक्षु मॉड्यूल, जिसमें बेसिकली आपको किसी भी तरीके की कोई फ्रॉड कॉल आ रही हैं या फिर आपको कोई अनचाही कॉल आ रही हैं, जिनको उस पर आप रिपोर्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद हमारा चक्षु मॉड्यूल के पास नेक्स्ट मॉड्यूल आता है CIR पोर्टल, जिसमें हम हमारा अगर कोई भी मोबाइल गुम हो जाता है या फिर चोरी हो जाता है तो हम उसको किस तरह रिपोर्ट करवाएं, उसको किस तरह रिपोर्ट करवा के वापस पुलिस एक्शन के द्वारा उसको रिकवर करवाएं, तो ये हमारा CIR पोर्टल में हमारा मॉड्यूल कवर करता है। देन हमारा उसमें एक टैफकॉफ मॉड्यूल है, जिसमें हम ये जान सकते हैं कि मेरे नाम पे, मेरी आइडेंटिटी पे कितने सिम्स चल रहे हैं, तो वैसी सिम्स जो मेरे नाम पे नहीं चल रही हैं, मैं उन पे एक्शन ले सकता हूँ, अपने TSPs को उनके ऊपर एक्शन करवा के उनको बंद करवा सकते हैं। देन उसके बाद हमारा एक आता है अपने मोबाइल हैंडसेट की जेन्युइननेस जानना, कि क्या जो मेरा मोबाइल हैंडसेट मैंने खरीदा है क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, कोई ब्लैक लिस्टेड कैटेगरी में नहीं होना चाहिए या फिर वैसी कैटेगरी में नहीं होना चाहिए कि आपको सेकंड हैंड मोबाइल कोई चोरी हुआ हैंडसेट आपको बेचा गया हो। तो हमें बेसिकली अपना जब भी कभी सेकंड हैंड फोन खरीदें तो उसको बेसिकली हम ये जान लें कि क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। इसके बाद हमारा एक मॉड्यूल आता है रिक्विन मॉड्यूल, जिसमें हमें वैसी कोई कंप्लेंट इंटरनेशनल कॉल आ रही है बट हमें उसमें जो नंबर शो हो रहा है वो लोकल नंबर शो होता है, इंडिया का ही नंबर शो हो रहा है, तो वैसी कॉल्स को हम कैसे रिपोर्ट करें, हम ये जान सकते हैं कि उसको रिपोर्ट करके उस नंबर्स पे उन बेसिकली क्या इलीगल सेटअप चला के वो वैसी फॉरेन की कॉल्स हमारे इंडिया में टर्मिनेट कराई जा रही हैं, उसको कैसे रिपोर्ट करना और उसको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज को उनको बस्ट करने में।
1: जी बिल्कुल, इसके बारे में हम लोग विस्तार से आपसे पूछेंगे। तो रविंदर जी, मेरा आपसे सवाल है कि यदि किसी आम नागरिक के पास कोई संदिग्ध या फर्जी कॉल, SMS या WhatsApp मैसेज आता है तो उसे क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि वो किसी भी तरह के फ्रॉड से बच सके?
2: जी, सबसे पहले तो एक अवेयर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि किसी भी तरीके की इस तरीके की जो सस्पेक्टेड कॉल है, फ्रॉड कॉल है, या जिसमें उससे कुछ पैसे की ट्रांसफर के बारे में कहा जा रहा है, या इस तरीके से कहा जा रहा है कि हम पुलिस डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं, आपके अगेंस्ट ये केस पेंडिंग है, या लाइसेंस के रिलेटेड कोई मैसेज आ जाता है कि आपका चालान आ गया है, इन मैसेजेस को जेन्युइननेस पहले चेक करनी जरूरी है और उसको रिस्पॉन्ड नहीं करना है। सबसे बड़ी बात यह कि अक्सर इन मैसेजेस में लोग लिंक डालकर भेज देते हैं, लीगल लिंक्स भेज देते हैं जिनको हमें क्लिक नहीं करना होता है। तो सबसे पहले चीज ये है कि कस्टमर को इन कॉल्स को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। अगर वो कुछ भी कहें, आपसे OTP मांगे, आपके बैंक के पर्टिकुलर्स मांगे, आपको जवाब नहीं देना है, आपको रिस्पॉन्ड नहीं करना है चाहे कितना भी प्रेशर वो डाले। दूसरी चीज ये कि आपको खुद को भी बचना है और लोगों को भी बचाना है, तो इसके चलते आप ये कर सकते हैं कि जैसे अभी चेतन जी ने बताया आपको कि संचार साथी ऐप में एक चक्षु मॉड्यूल है। चक्षु मॉड्यूल में हम इस तरीके की जो सस्पेक्टेड कॉल है, फ्रॉड कॉल्स हैं, इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। उसमें एक फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आप पहले तो ये देखें कि किस माध्यम से कॉल आई है आपके पास, SMS आया है, वॉइस कॉल आई है या WhatsApp मैसेज आया है।
1: जी,
2: तो वो आप स्पेसिफाई करें, उसके बाद आप उसका डेट और टाइम बताएं और फिर वो नंबर बताएं जिस नंबर से कॉल आई है, और उसके बाद फिर आप उसकी एक रिपोर्ट बुक कर देंगे, कंप्लेंट बुक कर देंगे कि आपको ये सस्पेक्टेड फ्रॉड कॉल लग रही है, और थोड़ी सी डिटेल आप डाल सकते हैं कि उसने क्या बोला। उसमें कैटेगरीज हैं अलग अलग जिसमें आप बता सकते हैं कि भाई किस तरीके के फ्रॉड करने की कोशिश की गई है, इंपर्सोनेशन किया गया है, फाइनेंशियल फ्रॉड करने की कोशिश की गई है, इस टाइप की कैटेगरी आप स्पेसिफाई करके आप उसकी कंप्लेंट बुक कर दीजिए। वो कंप्लेंट फिर दूरसंचार विभाग के पास चली जाएगी और दूरसंचार विभाग फिर उसका बैकएंड पे इन्वेस्टिगेशन करके उस सोर्स को प्लग करने की कोशिश करता है।
1: जी,
2: तो और ये हमारा मतलब कर्तव्य बनता है। बट इसके बारे में थोड़ा सा और आगे बताना चाहूंगा कि लगभग पूरे भारत में अभी तक जब से हमने ये लॉन्च की हैं सर्विसेज 2023-22-23 के आसपास हमने लॉन्च किया था, तो अराउंड 12 लाख कंप्लेंट्स आई हैं, लेकिन अब जब दूरसंचार विभाग ने उसकी इन्वेस्टिगेशन की तो 12 लाख कंप्लेंट्स के अगेंस्ट लगभग 60 लाख फोन हम लोग बंद करवा चुके हैं या उनके अगेंस्ट एक्शन ले चुके हैं।
1: जी, तो चेतन शर्मा जी, एक व्यक्ति कैसे पता लगा सकता है कि उसकी जानकारी के बिना उसके नाम पर किसी ने मोबाइल कनेक्शन लिया है, तो तरीका क्या है?
0: बेसिकली आज की डेट में हम देखते हैं कि जो सिम है, मोबाइल नंबर है, डेट इज वेरी इम्पोर्टेंट, हमारी एक डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। तो कभी भी हमारे जैसे अब हम यूजली हम देखते हैं कि काफी सारे लोग मोर देन वन सिम्स रखते हैं, मे बी कोई एक रखता है, कोई दो रखता है, तीन रखता है। तो आज की डेट में हम कैसे जाने कि हमारे नाम पे एक से ज्यादा और कोई सिम जो मेरे नाम पे चल रही है बट मुझे उसका नॉलेज

0: नहीं है। तो इसके लिए हमारे संचार साथी में एक टैफकॉप मॉड्यूल रहता है, जिसमें बेसिकली मुझे सिंपल छोटा सा एक काम करना है कि जो भी आज की डेट में मेरे नाम पे सिम चल रहा है, मैं टैफकॉप मॉड्यूल पे जाके अपना एक वो नंबर डालूंगा। नंबर डाल के उसका बेसिकली मुझे एक वैलिडेशन के लिए ओटीपी आएगा। जैसे ही मैं उसकी मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी डालता हूँ, उसके बाद मेरे नाम पे, मेरी आइडेंटिटी पे या मेरे आधार पे जितने भी नंबर्स चल रहे हैं उनकी लिस्ट आपको सामने शो हो जाएगी। इन केस जैसे मान लीजिए कि अगर आपके नाम पे 4 सिम्स चल रहे हैं जो आपकी नॉलेज में है, बट जब आपने ये डिटेल टैफकॉप पे डाली वहां पे आपको 7 या 8 नंबर्स दिखा दिए उन्होंने, तो इसका मतलब वो 3 या 4 नंबर्स जो एडिशनल आपको दिखा रहा है जिनकी नॉलेज आपको नहीं थी, आप उनको वहीं पे रिपोर्ट करवा सकते हैं। वहां पे आपको बेसिकली 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हर नंबर के आगे आपको ऑप्शन दिया जाएगा दिस इज माई नंबर, दिस इज नॉट माई नंबर एंड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। तो इनकेस अगर आपको लगता है कि ये 4 नंबर, तो मुझे मालूम है कि ये 4 नंबर मेरे नाम पे चल रहे हैं, तो यू कैन से दिस इज माई नंबर। और जो 3-4 नंबर आपको लग रहा है कि ये मेरे नाम पे नहीं है, तो आप नॉट माई नंबर कर दीजिए या नॉट रिक्वायर्ड कर दीजिए। ये डिटेल्स बैकएंड पे हमारे TSPs टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के पास जाती है और उन नंबर्स की रीवेरिफिकेशन की जाती है। जब वो रीवेरिफाई होके जब ये चलेगा पता कि ये बेसिकली एक्चुअल यूजर का, जो भी उनका ओनर है एक्चुअल, जिसके नाम पे वो रजिस्टर्ड है, उसके पास नहीं है, तो जो हमारे TSPs हैं उन नंबर्स को डिस्कनेक्ट करवाते हैं। और ऐसे ही नंबर्स बेसिकली अगर हम देखें तो अराउंड 3 करोड़ नंबर्स ऐसे जो सिटीजन्स ने रिपोर्ट किए हैं इस पोर्टल पे और उनको डिस्कनेक्ट करवाया जा चुका है। तो बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड मॉड्यूल, काफी एक अच्छी पहल है, जिसमें हमारे नाम पे कोई भी सिम अगर चल रहा है जिसका हमें मालूम नहीं है, हम उनको इस पोर्टल के माध्यम से उनको बंद करवा सकते हैं।
1: तो ये जो अपना फोन कनेक्शन बंद करवाने का जो प्रोसेस है वो कितनी देर तक चलता है या कितना समय लगता है? वो कनेक्शन जो हमारे नाम पे चल रहे हैं और हम उनको यूज नहीं कर रहे हैं, कोई और यूज कर रहा है, उसको बंद करने में कितना समय लगता है?
0: इसमें एक चीज मैं आपसे पहले ये बता दूं कि मान लीजिए अगर कोई भी सिम हमारे नाम पे जो चल रहा है अगर वो अनयूज रहता है 90 दिनों के लिए, 90 डेज के लिए अगर मैं उसको यूज नहीं करूं, तो देन वो नंबर मेरा डिस्कनेक्ट हो जाएगा बैकएंड पे। तो अगर मुझे उसको दोबारा, मान लीजिए हो सकता है कि आप कहीं फॉरेन पे गए हैं तो आपने पीछे से वो नंबर आप यूटिलाइज नहीं कर पाए 3 महीने के लिए 4 महीने के लिए, तो आप उसको बेसिकली अपना दोबारा से अपना KYC करवा के TSP से वो नंबर ले सकते हैं। बट अगर वो 90 दिन के लिए नहीं यूज हुआ तो वो TSP बैकएंड पे उस नंबर को डिस्कनेक्ट कर देंगे। और ये बात रही जो नॉट माई नंबर, अगर मैं रिपोर्ट करता हूँ कि ये नंबर मेरा नहीं है या मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसके लिए सारे TSPs को रीवेरिफिकेशन के लिए 60 दिन का समय दिया जाता है। 60 दिन के अंदर अंदर उनको उसकी रीवेरिफिकेशन करनी होती है, अगर वो नंबर उसमें नहीं मिलता है तो देन TSP विल डिस्कनेक्ट दोस नंबर्स।
1: जी, और रविंदर कुमार जी, कई बार हमें कॉल्स आती हैं जो भारतीय नंबर से आई लगती हैं, लेकिन असल में स्पूफ्ड इंटरनेशनल कॉल्स हो सकती हैं।
2: जी,
1: तो क्या हम इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं? यदि हाँ तो कहाँ इसकी रिपोर्ट की जा सकती है और प्रोसीजर क्या रहता है?
2: हमारे इसी में संचार साथी ऐप में एक रिक्विन का मॉड्यूल है जिसमें कि रिसीट ऑफ इंटरनेशनल कॉल विद इंडियन नंबर आता है। उस मॉड्यूल के तहत हमारे कस्टमर्स इस पे कंप्लेंट कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि आपके पास एक इंटरनेशनल कॉल आई है लेकिन उसका जो CLI आपको सामने नंबर जो प्रेजेंट हुआ मोबाइल पे वो भारत का +91 लग के आया है, कंट्री कोड इंडिया का नजर आ रहा है, तो ये क्लियर कट केस होता है जिसमें आप कह सकते हैं, जिसे आप स्पूफ्ड CLI कहते हैं, उस टाइप का केस है। तो ऐसे केस में आपको एक इसमें रिक्विन मॉड्यूल में जाना है, उसमें एक फॉर्म खुलेगा, उस फॉर्म में आपको एंटर करना है कि आपका पहले किस नंबर पे कॉल आई, दूसरा जो भारतीय नंबर नजर आया वो नंबर कौन सा था, उसके बाद उसकी डेट और टाइम और किस कंट्री से आपको सस्पेक्टेड कॉल आई है, तो ये डिटेल डालनी है। और उसके बाद एक छोटा सा आप कमेंट जो भी डालना चाहें जिसमें आप बता सकें कि इस तरीके की कॉल आपको आई, इतने बजे आई और इस डेट को आई है, तो उसकी डिटेल जब कस्टमर फीड कर देगा वो एक शिकायत के रूप पर हमारे पास रिफ्लेक्ट होती है DOT में। उसके बाद फिर उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होती है जब हमारे पास आ जाती है बैकएंड पे, तो हमारा एक पूरा प्रोसेस है जिसके तहत हम उसके पूरे नंबर की डिटेल पहले तो इस कॉल की वेरिफिकेशन करते हैं, उसकी जेन्युइननेस चेक होती है, उसके बाद फिर जो भी जिस नंबर से कॉल आई है उस नंबर के अगेंस्ट सूटेबल एक्शन लिया जाता है आफ्टर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन कि किस तरीके का उसका कॉलिंग पैटर्न है, कहाँ से कॉल आ रही है और कितना वॉल्यूम ऑफ कॉल्स वो करता है, और अगर वो पाया जाता है कि कुछ इलीगल टेलीकॉम सेटअप वहां पर चल रहा है जहां से इस तरीके की कॉल ओरिजिनेट्स हो रही है, पाया जाता है कि वो इलीगल टेलीकॉम नेटवर्क चला रहा है, तो उसके अगेंस्ट पुलिस कार्रवाई भी की जाती है।
1: जी, और रविंदर कुमार जी, जिस तरह से आपने बताया कि उसमें फॉर्म में भरना होता है कि किस कंट्री से कॉल आई है, लेकिन वो तो नहीं पता चलता है उस व्यक्ति को?
2: नहीं, वो देखिए आपको समझ आ जाएगा जब आप कॉल कर रहे हैं, पहली बात तो वो आपको ये पता ही तब चलेगा जब आपके कोई रिलेटिव कॉल कर रहे हैं या आपके कोई फ्रेंड कॉल कर रहे हैं, US से कॉल आ रही है, UK से कॉल आ रही है,

0: आपको पता है कि वो कस्टमर जो है आपका फ्रेंड है वो यूएस में लोकेटेड है, इस तरीके से आपको पता लग जाता है कि वो कॉल कहाँ से आई है, अदरवाइज आपको नहीं पता लगेगा कि इंटरनेशनल कॉल आई है।
1: जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो तो बताते नहीं है कि कहाँ से बोल रहे हैं,
0: जी,
1: वो
0: जी,
1: तो बताएंगे भारत से बोल रहे हैं
0: जी।
1: तो इस हालत में किस तरह से पता लगाया जा सकता है कि कॉल किस कंट्री से आई है?
0: देखिए, ऐसे केस में जहां पर साइबर क्रिमिनल्स कॉल कर रहे हैं उस कॉल को हम ये नहीं कह सकते कि वो इंटरनेशनल कॉल भारत की कॉल बनकर आ रही है, जब तक आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि कॉल करने वाला आदमी कौन था और वो आपसे रिलेटेड होगा। जनरली ये केस जो रिक्विन में आते हैं ये वो केस आते हैं जिसमें आपके नोन लोग कॉल करते हैं आपको और उस पे नंबर जो आता है वो नंबर लोकल आता है, क्योंकि बीच में जब उस आदमी ने बाहर से कॉल की उसको नहीं पता है कि उसकी कॉल किस नेटवर्क के थ्रू कहां इंडिया में कैसे पहुंच रही है, लेकिन बीच में जो ऑपरेटर्स हैं जो मिस्क्रिएंट्स हैं ये लोग उस कॉल को डाइवर्ट करते हैं, उस कॉल को डाइवर्ट करके उसके ऊपर स्पूफ्ड CLI डालते हैं या फिर उसको एक जो लीगल नेटवर्क है कॉल को लाने का भारत में उसको बाईपास कर जाते हैं, उसको बाईपास के भारत में लाके जैसे उसको फिर हमारे भारत के नेटवर्क में टर्मिनेट कराते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो भारत के नेटवर्क से कॉल चली है वो भारत का नंबर नजर आएगा उस पे। तो ये इस तरीके के केसेस होते हैं जहां पर साइबर क्रिमिनल है। साइबर क्रिमिनल आपको कभी नहीं बताएगा कि मैं कनाडा से बोल रहा हूं या मैं अमेरिका से बोल रहा हूं, तो आपको नहीं पता चल पाएगा कि वो लोकल कॉल है या बाहर की कॉल है। ये जनरली कॉल्स जिसमें जिस कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं ये कॉल्स वो हैं जिसमें आपके नोन लोग कहीं से जो इंटरनेशनली लोकेटेड है वो कॉल कर रहे हैं लेकिन आपको उनका नंबर जो नजर आ रहा है वो भारत में।
1: जी, और चेतन जी, अगर किसी का मोबाइल फोन खो जाए या चोरी हो जाए तो उस व्यक्ति को इमीडिएटली क्या करना चाहिए?
2: जी, जैसे कि कभी भी अगर आपका मोबाइल हैंडसेट चोरी होता है या गुम जाता है तो उसमें सबसे पहला काम जो हमें करना है डेट इज पुलिस कंप्लेंट, कि आप सबसे पहले जाके उसकी FIR करवाइए या फिर DDR करवाइए, डेली डायरी करिए। वो आप जैसे ही FIR करवाएंगे उसके बाद आपको सबसे पहले तो अपनी डुप्लीकेट सिम निकलवानी है। अगर उस हैंडसेट में कोई सिम चल रहा था तो जो भी सिम्स आपकी उसमें चल रही हैं उनकी आपको बेसिकली डुप्लीकेट सिम हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास जाइए अपनी FIR की कॉपी DDR की कॉपी लेकर, एंड आप उस पे जाके उसकी कंप्लेंट रजिस्टर करा के वो डुप्लीकेट सिम निकलवाएं। देयर आफ्टर आपके पास दो बेसिकली तरीके हैं जिस तरीके से आप उसको CIR पोर्टल पे कैसे रिपोर्ट करें। या तो आप पुलिस थाने में जाइए, पुलिस विल रजिस्टर द कंप्लेंट ऑन योर बिहाफ, और या तो आप संचार साथी ऐप पे चले जाएं या संचार साथी पोर्टल पे चले जाएं, वहां पे जाके आप बेसिकली वो सारी डिटेल्स आपसे मांगेगा, आप कौन सा नंबर गुम हुआ है आपका, उसका IMEI क्या था आपका, उसका बेसिकली इनवॉइस की डिटेल मांगी जाएगी, FIR की कॉपी की डिटेल उस पे आपको अपलोड करनी रहेगी। जैसे ही आप वो सब अपलोड करेंगे वो जो पर्टिकुलर मोबाइल हैंडसेट है वो आपका पर्टिकुलर मोबाइल हैंड जितने भी इंडिया के TSPs हैं जितने भी TSPs में वो ब्लॉक हो जाएगा
1: जी।
2: तो कभी भी जो चोर है या कोई भी अगर उस हैंडसेट को पाता है तो वो बेसिकली उस पर्टिकुलर हैंडसेट को यूज नहीं कर सकता। अब इसके बाद एक मजेदार बात यह है कि अगर वो चोर उस पर्टिकुलर हैंड जब वो ब्लॉक हो जाएगा उस पर्टिकुलर हैंडसेट में कोई भी सिम डालेगा देन एक ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट होगी जिसकी रिपोर्ट पुलिस को भी जाएगी और जो कंप्लेनेंट है उसको भी जाएगी। तो कंप्लेनेंट को ये पता चल जाएगा कि उस पर्टिकुलर हैंडसेट में किसी ने एक्सेस करने की ट्राई किया है। तो जैसे ही वो ट्राई करेगा एक ट्रेसेबिलिटी रिपोर्ट जनरेट होगी, पुलिस के पास बेसिकली एक रिपोर्ट जाएगी एंड देन पुलिस विल उसको रिकवर करने के लिए अपना जो एक्शन लेगी वो लेगी और रिकवर करके सिटीजन को देगी। तो हम अगर देखें तो अराउंड जो पैन इंडिया हमारे जितने भी फोन गुम हो जाते हैं उसमें अराउंड 37% की रिकवरी रेट आज की डेट में हमारी पैन इंडिया में है।
1: जी रविंदर कुमार जी, कई बार किसी नागरिक को बैंक से होने का दावा करने वाली कोई संदिग्ध कॉल आती है या मैसेज आता है तो ट्रस्टेड कॉन्टेक्ट डिटेल मॉड्यूल कैसे मदद कर सकता है ऐसे हालात में?
0: अधिकतर ये पाया गया है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो कस्टमर को कॉल कर कहते हैं कि हम आपकी बैंक से बोल रहे हैं और आपको अपना ATM कार्ड का नंबर बताइए या अपने डेबिट कार्ड का या क्रेडिट कार्ड का नंबर बताइए, OTP बताइए। तो इसके लिए पहली बात कस्टमर को रिस्पॉन्ड तो नहीं करना है उसके कहने पर, सिर्फ ये ट्रस्टेड जो बैंक कॉन्टेक्ट्स हैं इसमें आपके पास एक फाइनेंशियल पूरी एक डिटेल आती है जिसमें कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं बैंक्स हैं इनके आप चेक कर सकते हैं कि सपोज आप SBI में आपका अकाउंट है तो आप उसमें SBI डालिए तो SBI के जितने भी टोल फ्री नंबर्स हैं अपार्ट फ्रॉम दैट जितने नंबर्स जो उसके रजिस्टर्ड नंबर्स हैं जहां से कॉल कस्टमर को आ सकती है, ईमेल IDs क्या है उसकी, ये सारी डिटेल उस पोर्टल पे आपको नजर आ जाएंगी। तो आप उसे ये चेक कर सकते हैं कि जिस नंबर से आपको कॉल आई क्या वो नंबर उस लिस्ट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर रिफ्लेक्ट हो रहा है तो आप समझ जाइए कि ये जेन्युइन कॉल थी, बैंक से आई है, और अगर वो नंबर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप ये समझ जाइए कि इलीगल कॉल है, किसी मिसक्रीन ने कॉल की है आपको फ्रॉड करने के लिए।
1: जी चेतन जी, जब एक व्यक्ति फोन खरीदने के लिए जाता है तो वो कैसे पता लगा सकता है कि ये जो मोबाइल फोन वो खरीदने वाला है वो जेन्युइन है, सही फोन है, असली है या फिर नकली है, किस तरह से पता लगाया जा सकता है?
2: फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक हमारा जो मॉड्यूल जिसकी आप

0: बात कर रहे हैं नो जेन्युइननेस ऑफ योर मोबाइल हैंडसेट। ये काफ़ी अच्छी एक पहल है हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें आप खासकर कभी अगर सेकंड हैंड फ़ोन लेने जाते हैं तो उस समय पे आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो पर्टिकुलर हैंडसेट वाकई जेन्युइन है या नहीं। अब एक हमारा जो मोबाइल हैंडसेट की एक आइडेंटिटी है, जैसे एक हमारे मोबाइल नंबर की एक आइडेंटिटी रहती है, वैसे एक मोबाइल हैंडसेट की आइडेंटिटी रहती है जिसे हम IMEI नंबर कहते हैं। उस IMEI नंबर को हम *#06# डायल करके हम पता कर सकते हैं कि हमारे मोबाइल नंबर में उसकी IMEI क्या है। अगर हमारा सिंगल सिम है तो एक IMEI होगी, अगर हमारा ड्यूअल सिम है देन आपको उसको दो IMEI रिफ्लेक्ट होती हैं। तो वो पर्टिकुलर एक IMEI आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे जाइए, वो जब भी आप सेकंड हैंड फोन खरीदने जाएं तो उस पर्टिकुलर IMEI को आप उसमें डालें, देन इट विल शो कि वो उसमें सारे आपका मेक मॉडल क्या है, उसका मेक एंड मॉडल सारी डिटेल्स उस पर्टिकुलर हैंडसेट के IMEI के बारे में आपको दिखाई देने लग जाएंगी। जैसा कि मान लीजिए कि अगर उसमें आप एक पर्टिकुलर ब्रांड का मोबाइल हैंडसेट लेने जाते हैं और उसमें आपको ये दिखता है कि आपने IMEI डाली और आपको किसी और दूसरे पर्टिकुलर ब्रांड का डिटेल शो हो रहा है, या फिर सेम ब्रांड में ही कोई दूसरा मॉडल शो हो रहा है, तो इट मीन्स उसकी IMEI के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो वैसे पर्टिकुलर अगर आप हैंडसेट को खरीदने जाओ तो पहले से ही अलर्ट हो जाए कि ये उस IMEI का ये मेक एंड मॉडल होना चाहिए था, वो नहीं है, तो डैट मीन्स उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, डैट इज नॉट ए जेन्युइन हैंडसेट। तो और कभी भी आप सेकंड हैंड फोन लेने जाएं तो इस पर्टिकुलर फीचर का इस्तेमाल जरूर करें, बिकॉज इट विल सेव यू। ये आपको बचाएगा एक तो पहली बात तो फेक हैंडसेट लेने से, और इन केस अगर वो चोरी किया हुआ मोबाइल आपको सेकंड हैंड में बेचा जा रहा है, जैसे हमने CIR मॉड्यूल में पहले बात की थी कि चोरी किए हुए मोबाइल सेकंड हैंड मार्केट में जाते हैं और वो आगे बाकी लोगों को बेच दिए जाते हैं, इन केस अगर कोई वैसा केस आता है तो आप पहले से बच सकते हैं। आप एक तो पहले अपना सेकंड हैंड मोबाइल खरीदते टाइम आपने जितने का भी वो फोन लिया होगा वो आपको बेसिकली उसका नुकसान होगा, क्योंकि अगर वो CIR पोर्टल पे उसकी कंप्लेंट गई देन पुलिस विल कम टू यू, क्योंकि वो IMEI वो पर्टिकुलर मोबाइल सेंट आपके पास है। तो इसलिए सेकंड हैंड फोन खरीदते टाइम इस पर्टिकुलर फीचर को जरूर यूज करें और स्टे अलर्ट एंड स्टे इन्फॉर्म्ड।
1: जी, और रविंदर जी, अगर कोई व्यक्ति संचार साथी पर किसी फ्रॉड या संदिग्ध नंबर की रिपोर्ट करता है तो उस संबंध में कार्रवाई किस तरह से आगे बढ़ती है?
2: एक बार जब हमारे पास कस्टमर की कंप्लेंट रजिस्टर हो जाती है तो वो जो नंबर है संदिग्ध नंबर वो उसमें फ्लैग हो जाता है, हमारे चक्षु मॉड्यूल के थ्रू कंप्लेंट आती है, वो नंबर फ्लैग हो जाता है। उसके बाद उसकी कार्रवाई इस तरीके से शुरू होती है कि सबसे पहले तो उस नंबर की वेरिफिकेशन की जाती है, जिसको हम रीवेरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। तो जो रिस्पेक्टिव टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसको ये कहा जाता है कि इस नंबर को रीवेरीफाई कीजिए। वो रीवेरीफाई करेगा इस चीज से कि अपने रिकॉर्ड में जिस आदमी के नाम से नंबर चल रहा है और उसका जो KYC हमने किया था, क्या वो जेन्युइनली आज उसी के नाम पर चल रहा है या फोन किसी और के हाथ में है और हमारे रिकॉर्ड में किसी और के नाम से बोलता है। तो यदि इस तरीके का कुछ मिसमैच पाया जाता है तो वो नंबर बंद कर दिया जाता है, और अगर वो नंबर स्टिल ओके पाया जाता है तब उसके बाद वो कंप्लेंट दूरसंचार विभाग उसकी पूरी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करता है और ये जानने की कोशिश की जाती है कि उसका कॉलिंग पैटर्न कैसा है, किस तरीके की कॉलिंग वो करता है, और यदि ये पाया जाता है कि वो संदिग्ध सस्पेक्टेड कॉल्स कर रहा है, लोगों को फ्रॉडलेंट कॉल्स कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट पुलिस कार्रवाई भी की जाती है। इसके साथ ही ये नंबर जब फ्लैग हो जाता है तो हमारी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, जितने भी बैंक्स हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास भी एक लिस्ट में ये मार्क हो जाता है, फ्लैग हो जाता है ये नंबर। तो अगर कोई कस्टमर इस नंबर पे, सपोज ये सस्पेक्टेड नंबर पर कोई कॉल करके कहता है कि इस नंबर पे पैसे ट्रांसफर करो, UPI करिए या GPay करिए, जिस भी तरीके से आप मनी ट्रांसफर करने चाहेंगे, तो आपको बैंक से एक अलर्ट आएगा कि ये नंबर ऑलरेडी फ्लैग्ड है साइबर सिक्योरिटी मेजर्स में, क्या आप फिर भी इस ट्रांजैक्शन से आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, और अगर वो यस करेगा तभी वो ट्रांजैक्शन होगी, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन वहीं पे फेल हो जाएगी।
1: जी,
2: तो इस तरीके से कस्टमर को हम सेफगार्ड करते हैं जब कंप्लेंट आती है।
1: चेतन जी, संचार साथी ऐप के बारे में वो कौन सी एक बात जो हर मोबाइल यूजर को याद रखनी चाहिए हमेशा?
0: संचार साथी में बेसिकली हमारे जितने भी टेलीकॉम से रिलेटेड हमारी समस्याएं हैं या कोई हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, उन सब का ब्यौरा हमारा एक संचार साथी ऐप में आपको मिल जाता है। तो संचार साथी के रिलेटेड मैं सभी श्रोताओं से यही निवेदन करूंगा कि आप अपना जागरूक रहें, अलर्ट रहें और सिक्योर रहें। संचार साथी ऐप यूज करके अपने को सिक्योर करें और साथ में अपने साथियों को भी सिक्योर करें।
1: जी रविंदर जी, बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं या मिथ कह लें कि संचार साथी ऐप वो यूजर का निजी डाटा जो है वो चुरा लेती है, क्या ये सही है या ये केवल एक गलत फहमी है, केवल एक मिथ है?
2: जी, अगर हम संचार साथी की बात करें तो मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि एक मिथ है, क्योंकि ये ऐप वेरीफाइड गूगल के प्ले स्टोर पे है और एप्पल के ऐप स्टोर पे है। हमें सिर्फ जब एज अ कस्टमर जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो हमें ये चीज चेक करनी होती है कि उसका डेवलपर कौन है, वो जेन्युइन ऐप है कि नहीं है। तो उसके लिए अगर आप संचार साथी ऐप जब डाउनलोड करेंगे, आपको उसका डेवलपर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन

0: नजर आए। सो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक गवर्नमेंट का विभाग है, तो इसमें कोई भी इलीगैलिटी इन्वॉल्व नहीं है, किसी का कोई डेटा चोरी नहीं होता है इस प्रोसेस में। और उसके बाद कस्टमर अपनी मर्जी से परमिशन अलाउ करता है, और जहां पे जरूरत पड़ती है केवल वही परमिशन ली जाती है, उसके अलावा कोई परमिशन या डेटा नहीं लिया जाता है। तो इस तरीके से बिल्कुल सेफ और सिक्योर ऐप है। इसके थ्रू आप अपनी पूरी जो भी रिपोर्टिंग है, बेसिकली एक कस्टमर का, क्योंकि हमने नाम ही इसका संचार साथी रखा है, तो एक साथी तो आपके लिए हमेशा आपके साथ रहता है और आपका मित्र बनकर चलता है, तो वी शुड ट्रीट इट एज अ फ्रेंड जो आपकी मदद करेगा जब जरूरत पड़ेगी आपको।
1: इसका मतलब है कि बेफिक्र होकर संचार साथी ऐप का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज बहुत से सुनने वाले हमारा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं। तो रविंद्र कुमार जी और चेतन शर्मा जी, आप हमारे सुनने वालों को साइबर सिक्योरिटी के बारे में, संचार साथी ऐप के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
0: जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि एक जागरूक सिटीजन का सबसे पहला काम ये है कि जब भी उसे कोई सस्पेक्टेड फ्रॉडलेंट कॉल आती है, क्योंकि बहुत से केस हमने ऐसे पाए गए हैं जिसमें हम इस तरीके से कंट्रोल में आ जाते हैं सामने वाले के, कि हम अपना जो है अपना विवेक है उससे काम नहीं कर पाते हैं उस समय पर। सडनली हम लोग जैसे कहते हैं पैनिक स्टेट में चले जाते हैं। उससे बचने के लिए हमें पहले तो ये चीज बहुत माइंड में अलर्ट रहना है कि जो सामने वाला जो मुझसे पूछ रहा है, क्या मुझे वो इन्फॉर्मेशन उसको देनी है, और क्या वो मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसी तो नहीं जिससे मुझे नुकसान हो सकता है। कोई बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग रहा हो, कोई इनकम टैक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग रहा हो, जो डेटा मेरा प्राइवेट है उसके बारे में, इवन मेरा आधार नंबर भी कोई ऐसे नहीं पूछ सकता। तो अगर आपका आधार नंबर कोई पूछने की कोशिश कर रहा है, आपका पैन नंबर कोई पूछने की कोशिश कर रहा है, तो हमें पहले अलर्ट रहना बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है कि इस तरीके की कॉल को रिस्पॉन्ड नहीं करना है। दूसरी चीज हमें यह है कि बहुत से टाइम हमें ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं कि आपके नाम पर लॉटरी निकल आई है, या आपका एक कोरियर आया है यूएस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, वो आप उसको कलेक्ट करने आइए, इस जगह पर आइए, या आपका ओटीपी आया होगा, वो ओटीपी हमें बताएं ताकि हम आपको डिलीवर कर पाएं, या अपना एड्रेस दीजिए, हम आपको लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भी कभी भी किसी से टेलीफोन पर शेयर नहीं करनी है। तीसरा, जनरली जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो आपको कॉल कर बताएंगे कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट या कस्टम्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं, और आपके अगेंस्ट आपकी कार्रवाई होनी है, लीगल प्रोसीडिंग्स होनी है, हमारे जज साहब यहां बैठे हैं, जो टिपिकल डिजिटल अरेस्ट की मोडस ऑपरेंडी है। ऐसे केस में भी आपको अलर्ट रहना कि कोई भी कार्रवाई कोई भी सरकारी विभाग ऑनलाइन टेलीफोन के थ्रू नहीं करता है। यदि आपको कुछ उसमें शक है तो आप कंसर्न्ड ऑफिस में जाकर आप उसकी वेरिफिकेशन कर सकते हैं, बट टेलीफोन पर आप उसको रिस्पॉन्ड ना करें, मोबाइल पर उसको रिस्पॉन्ड ना करें।
2: इसी बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे संचार साथी मॉड्यूल है, इसमें ऐप में कई सारे मॉड्यूल्स ऐसे हैं जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कोई टेलीकॉम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कुछ फेच कर रहे हैं और कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। कुछ मॉड्यूल्स में आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, लाइक फ्रॉड कॉल्स की रिपोर्टिंग है या इंटरनेशनल कॉल आ रही है उसकी रिपोर्टिंग है। तो बेसिकली जब भी आपको कोई वैसी कॉल्स आ रही है, कुछ भी आपको अनचाही कॉल्स आ रही है, तो आप उनको जरूर रिपोर्ट करें एज अ बेसिकली विजिलेंट सिटीजन, बिकॉज आपकी एक कॉल के जरिए हो सकता है कि जो उस पर्टिकुलर टेलीकॉम इलीगल टेलीकॉम कोई अगर सेटअप चल रहा है, हम उसको बस्ट करके और जितने भी मोबाइल नंबर्स या कोई भी टेलीकॉम रिलेटेड जितने भी उसके कनेक्शन है उनको भी बंद करवाते हैं, तो आपके एक इनपुट से बाकी जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं उनकी भी सुरक्षा हो रही है। तो स्टे विजिलेंट, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे सिक्योर।
1: जी, रविंद्र कुमार जी और चेतन शर्मा जी, आप आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आए। आकाशवाणी हेल्पलाइन कार्यक्रम में आपने संचार साथी ऐप के बारे में और साइबर क्राइम के बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे साथ शेयर की, हमारे सुनने वालों के साथ शेयर की। स्टूडियो में आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।
0: बहुत बहुत
2: धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।
1: दोस्तों, आज आकाशवाणी हेल्पलाइन कार्यक्रम में हमारे मेहमान थे श्री रविंदर कुमार, ITS DDG सिक्योरिटी, 1993 बैच के इंडियन टेलीकॉम सर्विस अधिकारी। आप सुन रहे थे आकाशवाणी हेल्पलाइन, FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर, FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
3: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
3: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
4: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
4: जग घूमे आधार जैसा ना कोई,
3: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
3: और हमारा ईमेल आईडी है akashwani@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम अपने दिल्ली केंद्र से समाचार रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कई संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर नए अध्यक्ष नियुक्त किए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 26 तारीख से लागू हो गया।
1: भाजपा सांसद भर्तृहरि मेहताब को वित्त समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष होंगे। रेल समिति की अध्यक्षता भाजपा सांसद सुधीर गुप्ता करेंगे। डॉक्टर काकोली घोष दस्तीदार को रसायन और उर्वरक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी कृषि पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण समिति के अध्यक्ष होंगे। भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह रक्षा समिति की अध्यक्षता करेंगे। इन समितियों का कार्यकाल पिछले महीने की 20 तारीख से लागू हुआ है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से पायल शर्मा।
0: शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये केंद्र असमिया, बंगाली, मराठी, पाली और प्राकृत भाषा के विशेष अध्ययन के लिए बनाए जाएंगे।
2: ये केंद्र असम में तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे में डेक्कन कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्थापित किए जाएंगे। यह पहल इन शास्त्रीय भाषाओं से संबंधित उन्नत अकादमिक अनुसंधान, भाषाई और साहित्यिक विरासत के संरक्षण और डिजिटलीकरण तथा ज्ञान के व्यापक प्रसार के लिए समर्पित संस्थागत सहायता दान करेगी। सुपर्णा सेकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। भारत ने पाकिस्तान से जारी घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब की फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को बेबुनियाद बताया। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 घुसपैठिए पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। कई बार वापस लौटने की चेतावनी देने के बाद सीमा सुरक्षा बल को कार्रवाई करनी पड़ी। विदेश मंत्रालय ने इस मामले में पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी को भी तलब किया है। यूक्रेन के रूस के साथ युद्ध विराम के लिए भारत का प्रस्ताव सबसे व्यापक बताया है। यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिब्याहा ने कहा कि उनका देश ऊर्जा ढांचे और काला सागर को शामिल करने वाले युद्ध विराम पर विचार करने के लिए तैयार है। ये बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयान के एक दिन बाद आया है। श्री पुतिन ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघर्ष समाप्त करने के लिए कुछ रचनात्मक सुझाव दिए हैं। अमेरिका के उप विदेश मंत्री क्रिस्टोफर लैंडो ने भारत

0: भारतीय पायलट स्मिथ मच्छर के अदम्य साहस की सराहना की है। श्री क्रिस्टोफर ने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने एक भयावह घटना होने से बचा ली। अमेरिका में भारतीय दूतावास ने वर्जीनिया के ग्रेवली पॉइंट पार्क में विकसित भारत एकता दौड़ का आयोजन किया। इसमें भारतीय मूल के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान योग और ध्यान का भी आयोजन किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दूसरी सेंखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मैराथन वायुसेना के परमवीर चक्र विजेता फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेंखो की याद में आयोजित की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाया और आज़ादी की भावना जगाई। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने ओजस्वी भाषणों और प्रेरणादायी लेखन से लोगों को विदेशी शासन के खिलाफ एकजुट किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की है। जापान में 20वें एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। 2 सप्ताह से अधिक के इन खेलों में कई रोमांचक मुकाबले हुए। भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदक जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।
2: आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

किशोर कुमार की आवाज में हाथी मेरे साथी फिल्म का गीत आपने सुना, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

0: मैं सुंदर हूं इस फिल्म से। मन्ना डे की आवाज फिल्म मेरा नाम जोकर नीरज की रचना है, शंकर जयकिशन की तर्ज।
1: ए भाई दर

और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी खोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है। और रिंग मास्टर के घोड़े पर थोड़ा जो भूख है, थोड़ा जो पैसा है, थोड़ा जो किस्मत है, नाच के दिखाना यहाँ पड़ता है, बार बार रोना और गाना यहाँ पड़ता है। हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है।

0: बाहर है हप हप, खाता है कोड़ा भी, रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान, आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूँगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहाँ तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
3: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
2: सखी सहेली?
3: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
2: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।

शब्बीर कुमार की आवाज़ में SH बिहारी की रचना थी ये तेरी मेहरबानी। इस फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का सर्वाधिकिया।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम यादों की महफिल और इस गीत के संगीतकार थे राम लक्ष्मण।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: किशोर कुमार की आवाज़ में बनफूल फिल्म का ये गीत आपने सुना, आनंद बख्शी की रचना थी, तर्ज लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली
1: गलियां, आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं यादों की महफिल।

लता मंगेशकर का गाया, शैलेंद्र का लिखा, सचिन देव बर्मन का सर्वध किया गीत फिल्म गाइड से आप सुन रहे थे यादों की महफिल। जी प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र FM 107.2 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए अब सुनिए आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार पहले हिंदी में 1:05 पर और शाम को 6:10 पर। फिर पंजाबी में सुनिए पहले 1:10 पर और शाम 6:20 पर। कुछ फिल्मी संगीत सुनिए 1:15 पर और शाम 5:30 पर। प्रोग्राम सुरीला सफर सुनिए 1:30 पर। 2 सुनिए त्रिवेणी। 2:30 पर सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। मन चाहे गीत ये प्रोग्राम आप सुनेंगे 3:00। तीन बजकर 30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए नाटक वायलन वादक। लेखक हैं असद जैदी और निर्देशक हैं मदन शर्मा। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सुनिए कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। संगीतकार उत्तम सिंह से यूनिस खान की बातचीत का 3rd। शाम 5:20 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे प्रस्तुत किया जाएगा। अमृत वाणी आप श्रवण कर सकते हैं शाम 6:30 पर। सात बजे विशेष जयमाला प्रोग्राम सैनिकों की शौर्य गाथा। महावीर चक्र से सम्मानित एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मुलगावकर की शौर्य गाथा पेश की जाएगी। 8 हवा महल में हम आपको सुनवाएंगे नाटिका परिवर्तन का 1, जिसकी लेखिका हैं कामना चंद्र और निर्देशिका हैं अनुराधा शर्मा। 8:15 पर। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा।

पार्श्व गायक शैलेंद्र सिंह पर। रात 10 बजे सुनिए कार्यक्रम छाया गीत और सुरसांझ कार्यक्रम 10:32 पर। अभी आप सुन रहे थे आज रात तक प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों का विवरण।

0: FM 107.9 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले 1:05 पर हिंदी में हमारे केंद्र से, उसके बाद 1:10 पर पंजाबी में आकाशवाणी के जालंधर केंद्र से।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के सभी भाजपा विधायकों ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक के दौरान उन्होंने कई विषयों पर उनके साथ एक सार्थक बातचीत की। उन्होंने कहा कि बैठक में लोगों की सर्वोत्तम संभव तरीके से सेवा करने और जनकल्याण के लिए और भी अधिक प्रभावी ढंग से काम करने पर चर्चा की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ प्रदेश के मंत्रियों और विधायकों की मुलाकात ऐतिहासिक और प्रेरणादायक रही। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के विकास, जनसेवा और संगठन को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। वे प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद नई दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में श्री मोदी ने हरियाणा को विकसित भारत के संकल्प से और मजबूती से जोड़ने का स्पष्ट मार्गदर्शन किया। उन्होंने युवाओं के कौशल विकास पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सरकार, मंत्रीगण और विधायक और कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं, समस्या जमीन पर जाकर सुनी जाए और समाधान जमीन पर दिखाई दे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से जो दिशा मिली है उसे केवल बैठक तक सीमित नहीं रखा जाएगा। अब हर मंत्री अपने विभाग में, हर विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र में और हर कार्यकर्ता अपने गाँव में इस सोच को जमीन पर उतारने का काम करेगा। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक प्रभारी को तलब किया है। भारत ने पाकिस्तान से जारी अवैध घुसपैठ को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। भारत ने पंजाब के फिरोजपुर सेक्टर में शुक्रवार को हुई घटना को लेकर पाकिस्तान के लगाए आरोपों को भी बेबुनियाद बताया है। विदेश मंत्रालय के अनुसार 3 लोग पाकिस्तान से भारतीय सीमा में घुसे थे। सीमा सुरक्षा बल BSF ने उन्हें कई बार वापस लौटने की चेतावनी दी, लेकिन वे सीमा बाड़ की ओर बढ़ते रहे। सुरक्षा के लिए खतरा पैदा होने पर BSF को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। भारत ने पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही घुसपैठ और तस्करी की घटनाओं को रोकने और नशीले पदार्थों की तस्करी की जाँच करने और अपने सीमा सुरक्षा बलों की भूमिका पर कार्रवाई करने को कहा है। प्रसिद्ध हरियाणवी गायक दिलेर खरकिया की गाड़ी पर फायरिंग करने वाला बदमाश गांव बरोटा छथेरा के पास हरियाणा पुलिस के विशेष कार्यबल और दिल्ली अपराध शाखा की संयुक्त टीम से हुई मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने बताया कि कल देर रात मुठभेड़ हुई। आरोपी लाडपुर निवासी रोहित उर्फ बोंदा पर अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं और उसका संबंध लॉरेंस गिरोह से बताया गया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने पुलिस दल पर 2 फायर किए, उससे एक पिस्तौल, बाइक और एक थैला बरामद हुआ है। पुलिस को आरोपी की हिसार टोल प्रबंधक हत्याकांड और सोनीपत में रंगदारी के मामले में भी तलाश थी। एशियाई खेलों में आज समापन होने जा रहा है। समापन समारोह जापान के नगोया सिटी मिजुहो पार्क एथलेटिक स्टेडियम में होगा। भारतीय समयानुसार यह शाम 6 बजे शुरू होगा। भारत ने इस बार शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 85 पदक जीते हैं। इनमें 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक शामिल है। भारत पदक तालिका में 4थे स्थान पर रहा। समापन समारोह में भारत की महिला ध्वजाभाग निशानेबाज नीरू ढांडा होगी। वे तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। समारोह में खिलाड़ियों की परेड और खेलों के औपचारिक समापन सहित कई पारंपरिक कार्यक्रम होंगे।

नौवें राष्ट्रीय पोषण माह 2026 के अंतर्गत चंडीगढ़ में बहलाना, धनास, मिल्क कॉलोनी और सेक्टर 18 के औद्योगिक क्षेत्र में पोषण और जागरूकता से जुड़ी कई गतिविधियां आयोजित की गईं। इनमें बच्चों, गर्भवती महिलाओं और उनके परिवारों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बहलाना में बच्चों को फल और हरी सब्जियां खाने के महत्व के बारे में जागरूक किया गया और उन्हें अपने दैनिक आहार में मौसमी फलों और हरी सब्जियों को शामिल करने के लिए प्रेरित किया गया। धनास मिल्क कॉलोनी में गर्भवती महिलाओं के लिए गर्भावस्था के दौरान मातृ पोषण पर एक सत्र आयोजित किया गया। सेक्टर 18 में खेल खेल में पोषण के प्रति समझ बढ़ाने के लिए 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए चित्रकला गतिविधि भी आयोजित की गई। कुरुक्षेत्र में किसानों को पराली जलाने के नुकसान के प्रति जागरूक करने एवं आगजनी की घटनाओं की निगरानी के लिए प्रत्येक उपमंडल में उपमंडल अधिकारी नागरिक की अध्यक्षता में टीम गठित की गई है, जिसमें तहसीलदार, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी एवं कृषि विभाग के अधिकारी शामिल हैं। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार, ये आकाशवाणी है। हुण तुसीं जगजीवन सिंह तो प्रादेशिक खबरां सुनो। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है कि पंजाब हुण काम की राजनीति अते परिवार केंद्रित राजनीति विचकार स्पष्ट फर्क देख रहा है। फतेहगढ़ चूड़ियां दे कणीके बांगर विखे वड्डी लोक मेले दौरान मुख्यमंत्री ने 90% परिवारों लिए मुफ्त बिजली, 10 लाख तक के इलाज, 88% खेतीबाड़ी जमीन लिए नहरी पानी और मामा भैणों को सीधी वित्तीय सहायता का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार का ध्यान शासन के लाभों को सीधा लोगों तक पहुंचाने पर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि महज 4.5 सालों में साड़ी सरकार ने कांग्रेस और अकाली शासन के 22 सालों नालों वध काम करके दिखाया है। इस बारे उन्होंने अपने एक्स अकाउंट से एक पोस्ट भी साझी की है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पंजाब पुलिस में 10,000 नवी असामिया भरन का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब युद्ध नशे विरुद्ध अंतिम और फैसलाकुन पड़ा से जंग लड़ रहा है। अपनी तरह की पहली SHOs मिलने दौरान शानदार कारगुजारी वाले पुलिस अधिकारियों सन्मानित करने करवाए गए समागम दौरान मुख्यमंत्री मान ने कहा है कि पंजाब पुलिस को नशे विरुद्ध हर जायज कार्रवाई करने की खुली छुट्टी दी गई है। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पिंडों और कस्बों में जान लोगों को नाल लैन और इस लानत से रोक लाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि युद्ध नशे विरुद्ध हर पूरे पंजाब में लोक लहर बन चुका है, जबकि पुलिस फोर्स में जल्द ही 450 ASI 3400 पुलिस मुलाजम मिलेंगे। पंजाब के खुराक सिविल सप्लाई और खपतकर मामले मंत्री लालचंद कटारू चक ने बीते दिन तरन तारण थाना मंडी विखे झोने के खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। इस मौके उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार किसानों की मेहनत नाल पैदा की फसल का दाना दाना खरीदेगी। उन्होंने कहा कि सूबे झोने की सरकारी खरीद 1 अक्तूबर तो शुरू हो चुकी है। किसानों मंडियों में अपनी फसल बेचण समय किसी किस्म की दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस मौके उन्होंने मंडी में खरीद लिफ्टिंग भुगतान बारदाने समेत होर प्रबंधों का जायजा लैंदा संबंधित अधिकारियों को लोड़ीदे दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। उन्होंने दसिया कि खरीद सीजन दौरान केंद्रीय पूल लिए 180 लाख टन झोने की खरीद का टीचा रखा गया है। पंजाब सरकार दिव्यांग व्यक्तियों को सम्मान सुरक्षा और आत्मनिर्भर जीवन जीने लिए सहारा देने वास्ते हुण तक करीब 255 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता जारी कर चुकी है। इस बारे जानकारी दिंदिया समाज सुरक्षा इस्तरी और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने कहा है कि पंजाब सरकार का मानना है कि दिव्यांगता किसी भी व्यक्ति के सुपना सम्मान और तरक्की के राह में रुकावट नहीं बननी चाहिए। इस सोच नाल सरकार केवल वित्तीय सहायता ही नहीं सगो दिव्यांग व्यक्तियों को आत्मविश्वास, स्वयं निर्भरता और समाज में बराबरी नाल अगे वधन का मौका भी दे रही है। उन्होंने दसा कि इस स्कीम तहत इस वेले 2.84 लाख के करीब लाभपात्रियों नियमित तौर पर वित्तीय सहायता मुहैया करवाई जा रही है। गैंगस्टरां ते वार मुहिम दे 256 दिन पूरे हो गए हैं। पंजाब पुलिस ने सूबे भर में गैंगस्टरां दे साथियों दे पछाणे अते मैप किए गए 592 टिकाणे ते छापेमारी की है। पुलिस टीमों ने 275 व्यक्तियों को 16 हथियारों समेत गिरफ्तार किया, जिस नाल मुहिम की शुरुआत तो हुण तक 75,810 गिरफ्तारियां हो गई ने। इस तों इलावा 195 व्यक्तियों विरुद्ध एहतियाती कार्रवाई भी की गई है। पुलिस टीमों ने इस मुहिम दौरान 6 भगौड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पंजाब में नशा कारण और सिंचाई बीमारियों विरुद्ध चल रही लड़ाई होर तेज करने के मद्देनज़र सरकारी नशा छुड़ाऊ और मुड़ वसीबा केंद्रों में HIV हैपेटाइटिस बी और हैपेटाइटिस

आइए अब सुनिए सुपर 30 फिल्म का गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और श्रेया घोषाल की, शब्द रचना अमिताभ भट्टाचार्य की है और संगीत निर्देशन है अजय अतुल का।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल, कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: कार्यक्रम के अंत में हम आपको सुनवा रहे हैं स्त्री फिल्म का गीत, जिसे गाया है मीका सिंह और सचिन जिगर ने। गीतकार हैं वायु, संगीतकार सचिन जिगर।

0: गिली गिली है, है।
1: इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम समाप्त होता है।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।
3: FM 107.2 MHz पर ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। आइए सुनते हैं कार्यक्रम सुरीला सफर। ये कार्यक्रम हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे।

घर की दीवारों के साए आज गीत हैं कार्यक्रम सुरीला सफर में। श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे पालकी फिल्म से। हमारे श्रोताओं ने बिल्कुल ठीक फरमाया है, राजेंद्र कुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गीत था। सुमन कल्याणपुर और मोहम्मद रफ़ी की पुरकशिश आवाज़ें थीं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दीवारें सदियों से न जाने कितने राज, न जाने कितने रहस्य अपने में समाये खड़ी हैं। अचल और अस्थिर दीवारें तो कमोवेश एक जैसी होती हैं, बस उनको देखने का नज़रिया अलग अलग होता है। अतीत को छोड़ देना बहुत आसान होता है, मगर दीवारें सब जानती हैं। दुनिया की हर दीवार पर मन की व्याख्या अंकित है, बस समय पर हम उसे पढ़ नहीं पाते। चुप्पियां और दीवारों पर ठहरे हुए गहरे निशान प्रतिध्वनि को जन्म देते हैं। जहां सब समा जाता है वो अंततः मौन हो जाता है, इसलिए दीवारें भी मौन हैं। कुछ दीवारें ऐसी होती हैं श्रोताओं कि जिन्हें अक्सर लोग गिरा दिया करते हैं, यानी दिल की दीवारें। जी हाँ, इन्हें गिरा देना ही अच्छा होता है। एक और श्रोता ने लिखा है कि दीवारें और छत आपस में जुड़कर मकान बनाते हैं और पारिवारिक सदस्यों के आपसी जुड़ाव से मकान घर बन जाता है। जहाँ हमारी संस्कृति और संस्कार इसी घर और परिवार के सदस्यों की पहचान बन जाते हैं। वैसे तो घर से जुड़ी हर चीज़ से हमारा जुड़ाव होता है, लेकिन कोई एक दीवार ऐसी होती है जो दिल से ज़्यादा जुड़ जाया करती है। किसी दीवार में झरोखा, अलमारी, आला या कारनेस हुआ करता था। किसी एक दीवार में दर्पण होता था जिसमें हम अपने आप को से बातें किया करते थे, जो कि उस दीवार से हमारा जुड़ाव एक ख़ास वजह से हो सकता है। घर की दीवारें आधार होती हैं और हमारे मन में पनपी शंका या गलतफहमी की दीवारें संबंध को तोड़ देती हैं। कुछ एक घर का कोना होता है श्रोताओं जो हमें बड़ा ख़ास तौर से अच्छा लगता है। ऐसी कोई जगह थी घर के अंदर जहाँ आप खासकर बैठने में बड़े सुकून की अनुभूति करते थे? एक तो ये सवाल आपको बताना है, और आज विश्व पशु दिवस भी है तो आप बताएं, क्योंकि घरों में महानगरों की बात तो मैं नहीं कर रही, लेकिन हाँ, जो घर जहाँ से हम आए या पुराने घरों में, गांव के घरों में, वहाँ पालतू जो पशु होते थे वो भी हमारे घरों में हुआ करते थे। उनमें से कौन आपको प्यारा था, या कोई चिड़िया या कोई पक्षी आपकी दीवारों पर आकर बैठता था? तो आप हमसे ज़रूर ये बातें ताज़ा कर सकते

एक और श्रोता ने लिखा है कि हम तो अपने बचपन के दिन हमें याद आ गए जब हमारे भाई बहन हमें रेडियो सुनने नहीं देते थे और हम सीढ़ी की दीवार से सटकर सुनते थे, विविध भारती और पढ़ाई भी करते थे। तब ना ऐसी जरूरत पड़ती थी, ना ही फोन होता था और फैन होता था, इन्होंने लिखा ये, पंखा नहीं होता था और प्राकृतिक हवा जो होती थी, यानी प्रकृति की हवा जो होती थी वो वही काम करती थी।

0: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू। घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
1: लिखावट और कार्टून बनाने का जो एक कार्टून बनाने की जो नाकाम कोशिश थी और अपने नाम को लिखने की जिद और माँ पापा की डांट आज भी बहुत याद आती है, ऐसा हमारे इन श्रोता ने लिखा है। एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी नानी का घर पहले कच्चे घर रहते थे, वैसा था, अब बहुत अच्छा बन गया है और आज भी जब कभी जाते हैं तो आंगन, वो दलान सब याद आती है। नानी के घर की ओर जो बैठक रूम था उसमें जो कि आपने पूछा कि साथ में एक बड़ा सा

जीवर रखा रहता था। नाना जी का और हम सभी बच्चों को कंपलसरी रहता था न्यूज़ सुनना। तो हम लोग न्यूज़ सुनने के बाद नकल भी बहुत करते थे। अब आप सुनिए ऐसे मतलब बोलते थे, हम लोग रेडियो रेडियो खेलते थे तो हम लोग इसी टाइप से खेल खेलते थे, समाचार वाचक बनकर या उद्घोषक बनकर। बड़ा मज़ा आता था उन दिनों की, आज याद पूरी ताज़ा हो गई। एक और श्रोता ने लिखा है कि वो दीवारें आज भी याद आती हैं जहाँ बचपन बीता, वो मिट्टी की दीवार, वो फूस का घर जहाँ पानी की बूंदें भिगरती तो सब भीगा भीगा सा लगता, वो हवा के झोंके, बिजली का चमकना, ऐसा लगता था मानो वो चारों दीवार के अंदर भी डर लगता था। आज सब कुछ बदल गया है मगर कुछ नहीं बदला, तो वो बचपन की यादें, वो मिट्टी का घर बहुत याद आते हैं। दिल यही कहता है कोई लौटा दे बीते हुए दिन। एक और श्रोता ने लिखा है कि इतना रोए थे लिपट कर दरों दीवार से हम, शहर में आके बहुत दिन रहे बीमार से हम।

ये गीता श्रोताओं, गंगा मैया तोहे बेरी चढ़े बेस फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में और कुमकुम नज़र आती हैं इस गीत में। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत घर और घर की दीवारों के उस पार ले चलने वाली है। सिर्फ पत्थर और सीमेंट से नहीं बनता, इसमें परिवार के हर सदस्य के प्रेम भाव रूपी सीमेंट भी ज़रूरी है और जो हर सदस्य को मजबूती से जोड़े रखती है। उस पर घर के अंदर रेडियो पर जब विविध भारती चल रही हो तब सोने पर सुहागा।

हो जाता था। रेडियो से जुड़े बचपन की वो के वो दिन जो है वो याद आते हैं। एक और श्रोता ने लिखा है कि एक दीवारों में पहले एक स्पेशल स्थान था। बचपन में चौक से पहले जो ड्राइंग निकाली टेढ़ी मेढ़ी वो दीवारों पर निकली। पिताजी मेरे और भाई जो थे वो चित्र निकालते थे। हमारे परिवार की बातें इन्होंने लिखी हैं कि माँ बोलती थी कि दीवार के भी कान होते हैं, तो हम बच्चे उनको ढूंढने जाया करते थे। और सच में जैसा पुराना घर था वैसे लोग के मन थे। मिट्टी जैसे सुगंधित लेकिन मजबूत, पहले महंगी डेकोरेटिव पीसेस नहीं थी लेकिन दीवारों पर वार्ली पेंटिंग्स दीवार सजाती थी। जी हाँ, वार्ली पेंटिंग्स जो होती है श्रोताओं, वो चावल को भिगो कर उसमें जो सफ़ेद लेप होता है उससे बनाई जाती है और काले रंग से भी बनाई जाती है। ये महाराष्ट्र के आउटस्कर्ट्स में होती है जो वार्ली जनजाति द्वारा बनाई जाती है। तो ये बड़ी सुंदर बात इन्होंने लिखी है। आप जो है अगला गीत, इसमें कौन से कलाकार हैं वो आपको पहचानने हैं। और ये दीवारें आप देखिएगा श्रोताओं, मिट्टी से बना ये घर, इनकी कुछ यादें हैं तो आप साझा कीजिए। और हमने आपसे कहा था कि क्या कोई पशु आपने पाल रखा था, या क्या कोई पंछी आपकी दीवारों पर आता था, या जब आपकी सहेलियों से साथियों से बातें होती थी तो क्या किसी दीवार से लगकर आप घंटों बातें किया करते थे।

आप सुन रहे थे ये गीत फिल्म ठोकर से बलदेव खोसा और अलका पर फिल्माया गया। सर्जन दहलवी का लिखा ये गीत था श्याम जी घनश्याम जी की तर्ज थी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन छूटा तो दरों दीवार आंगन घर का वो सामान सब यादों में सिमट गया। पुरानी यादों में खो गए क्या लिखें शब्द कम पड़ जाएंगे। खूबसूरत समय यादों में बसा है जिसे अकेले में बैठ कर तस्वीरों से साझा करते हैं। दिल को आज भी उन्हीं लम्हों की याद आती है उन्हें खोजता है ये दिल। और कुछ गीत भी इन्होंने लिखे हैं श्रोताओं। और जो घर की यादें होती हैं घर की बातें होती हैं वो बड़ी ही आलीशान होती हैं। क्या इन घरों की मरम्मत इन दीवारों की मरम्मत आपको ज़रूरी लगती है जहां कभी गुड्डे गुड़ियों का खेल खेला था। ऐसी यादें ऐसी बातें भी आप हमसे ज़रूर साझा कीजिए। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ श्रोताओं कि किसी घर के सामने आप पहुँचे जिस घर में आपको जाना था लेकिन उस घर के सामने आकर भी आप उस घर को पहचान नहीं पा रहे हैं या फिर किसी ने आपको भटका दिया कि ये वो घर नहीं है और उस घर को बाद में आपने दीवार से पहचाना। ऐसा कुछ गुंजा यानी साधना सिंह की जो फिल्म आई थी नदिया के पार इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि वो अपने ही घर का पता सचिन को नहीं बताती हैं। आपको फिलहाल ये कलाकार बताने हैं जो इस गीत में हैं।

हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे बचपन के वो दिन याद हैं जब कितनी मेहनत से हमारे पिताजी ने ज़मीन लेकर चार दीवार तो खड़ी की पर उस पर छत डालने में कितना कष्ट उठाया। उनका स्वास्थ्य, उनके पास धन की तंगी, सब मिलकर एक घर बड़ी मुश्किल से बनता है। ये मैंने खुद अपनी आँखों से देखा है।

संजीव कुमार और रीटा हक्सर पर फिल्माया गया सूरज और चंदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे। आपने श्रोताओ, मुझे तो वो नहीं मिला कमेंट, हमने आपसे पूछा था कि क्या कोई घर ऐसा था जिसे आप ढूंढने गए लेकिन उसके सामने ही खड़े होकर भी आपको पता नहीं चला कि ये घर वही है जहां आपको जाना है। वैसे हमारे एक श्रोता ने बड़ा प्यारा सा कमेंट लिखा है, लिखते हैं कि हाँ, मैंने पहले एक मुर्गा पाल रखा था जब मैं बचपन में था तो मेरी उम्र अब शायद लिखते होंगे या पहले के 38 साल की हो चुकी है, मैं शायद पहले दूसरी कक्षा में पढ़ता था। मैंने एक मुर्गा पाल रखा था, उसका नाम मैंने चित्र रखा था और वो जहाँ भी मैं जाता था मेरे साथ ही जाता था कुट कुट करता हुआ। एक बार मेरे चाचा के यहाँ बैल बंधे हुए थे ऐसा इन्होंने लिखा होगा शायद, और वहीं पर जाता था बार बार तो कुछ तो बिखेर देता था वहाँ पर, तो चाचा ने मुर्गी को मार डाला तो मैं कम से कम 2 दिन तक रोटी नहीं खाया। इन्होंने जब बहुत माँ बाप ने समझाया तब जाकर मैंने सोचा कि छोड़ो

और प्रदीप कुमार पर फिल्माया गया ताजमहल फिल्म का ये खूबसूरत नगमा आप सुन रहे थे। श्रोताओं, तो कुछ ना कुछ वादा तो आपने भी अपने घरों की दरों दीवारों से ज़रूर किया होगा उनको दुरुस्त करने का, और ये वादा कि वहाँ लौट कर फिर से आने का। तो आपकी सभी प्रतिक्रियाओं के लिए, सभी कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम सुरीला सफ़र यहीं संपन्न होता है। आप रहिए रेडियो विविध भारती के संग।

श्रोताओं नमस्कार। त्रिवेणी में आज बातें पशुओं की। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वर्षों से मनुष्य का पशुओं के साथ कुछ अलग ही नाता रहा है। जहां कुछ पशु वनों और गहन जंगलों में ही वास करते रहे हैं, वहीं कई जानवरों ने मनुष्य का साथी बनकर उनका हाथ बटाया है, जैसे कि गाय, बैल, घोड़े जैसे जानवर हमें अलग अलग तरह से सहायता करते रहे हैं। पुराने समय में हमारे आवागमन और कृषि के लिए हमने इनकी मदद ली है। मनुष्य केवल इनसे सहायता ही नहीं लेता रहा है, बल्कि इन पशुओं को अपने साथियों के रूप में पाता है। वैसे एक समय था जब गाय, बैल, घोड़े के अलावा बंदर, भालू और हाथियों को भी पाला जाता था और वो साथी होने के साथ साथ जीविका का साधन भी बनते थे।

एक लंबे समय तक मनुष्यों ने पशुओं को अपनी आजीविका का साधन बनाकर उनका दोहन भी किया। वहीं सर्कस और सड़कों पर तमाशों के जरिए भी कई ऐसे जीवों को उनके आवास से दूर किया जिनके लिए मनुष्यों की बस्तियों में रहना उचित नहीं था। जल्द ही हम पशुओं के अधिकारों को लेकर जागे और हमने पशुओं के लिए उनके अनुकूल वातावरण और आवास बनाए। इससे पशुओं और मानवों के बीच एक संतुलन कायम हुआ। इस तरह हम पशुओं के मित्र बन गए और पशुओं ने तो अपनी मित्रता सालों साल निभाई है, खासतौर से पालतू पशुओं ने, जैसे कि बिल्ली।

जब भी पालतू पशुओं की बात करते हैं तो बिल्ली के साथ साथ श्वान यानी कुत्तों का उल्लेख भी आता है। कुत्ते को एक वफादार जानवर कहा जाता है। जब भी वो किसी व्यक्ति के परिवार या जीवन का हिस्सा बन जाता है तो उसका साथ अंतिम समय तक निभाता है। कुत्तों की वफादारी और उनके सूंघने की शक्ति का ही परिणाम है कि वो ना सिर्फ आम घरों में हमारे साथ होते हैं बल्कि पुलिस और सेना में भी भर्ती होकर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। केवल इन्हें पालना ही हमारी जिम्मेदारी का हिस्सा नहीं है बल्कि इनकी सही देखभाल, खान पान का ख्याल रखना और समय समय पर जरूरी चिकित्सा और टीकाकरण करवाना भी आवश्यक है। तभी तो हमारे ये साथी हमारे साथ मजे से खेलता नजर आएगा।

आज विश्व पशु दिवस के मौके पर पशुओं के संरक्षण और उनकी प्रजातियों की सुरक्षा तो सुनिश्चित कीजिए ही, साथ ही उनके प्रति होने वाली क्रूरता को रोकने का प्रण भी लेते हुए एक बेहतरीन मनुष्य बनने का संकल्प लें। इसी संदेश के साथ आज के त्रिवेणी से दीजिए अपनी दोस्त नेहा शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

0: भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनावों के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का एक वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए गए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ाना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस योजना का उद्देश्य सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों आईटीआई को आधुनिक और उद्योग की जरूरतों के अनुसार तैयार करना है। योजना के तहत आईटीआई में प्रशिक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है, साथ ही युवाओं को रोजगार के लिए जरूरी व्यावहारिक कौशल देने पर जोर दिया जा रहा है। पीएम सेतु योजना के लिए कुल 60,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इसमें केंद्र सरकार 30,000 करोड़, राज्य सरकार 20,000 करोड़ और उद्योग जगत 10,000 करोड़ रुपए का योगदान देगा। देश में सरकारी और निजी आईटीआई की संख्या 2014 में 9,000 से अधिक थी, जो 2026 में बढ़कर 13,000 से ज्यादा हो गई है। पीएम सेतु योजना के तहत अब तक 850 आईटीआई को चुना गया है। इनमें 172 हब आईटीआई और 678 स्पोक आईटीआई शामिल हैं। योजना के तहत 200 आईटीआई क्लस्टर में इसे देश भर में लागू करने की मंजूरी दी गई है। 14 आईटीआई क्लस्टर के लिए 3,446 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश योजना को मंजूरी मिल चुकी है। आनंद और ऋषु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जन सेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी यह यात्रा निरंतर जारी है। सेवा और सुशासन की इसी भावना के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में

0: लगातार कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज की विशेष श्रृंखला में असम में गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की जानकारी दी जा रही है। इस हवाई अड्डे के कारण अब पूर्वोत्तर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार बन गया है।
1: असम का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक क्षेत्रीय ट्रांजिट केंद्र से विकसित होकर एक प्रमुख वैश्विक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित हो गया है, जो पूर्वोत्तर भारत में आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण को नई गति दे रहा है। प्रकृति से प्रेरित नए एकीकृत टर्मिनल 2 पर केंद्रित इस विशाल विस्तार परियोजना को केंद्र सरकार की एक्ट ईस्ट नीति के तहत एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को इस अत्याधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया था और 22 फरवरी 2026 को इसका वाणिज्यिक संचालन शुरू हुआ। नई सुविधा के साथ हवाई अड्डे की वार्षिक यात्री क्षमता बढ़कर 1,30,00,000 से अधिक हो गई है। टर्मिनल के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस प्रकार का बुनियादी ढांचा और अन्य विकास परियोजनाएं युवाओं के लिए एक नए अवसर सृजित करती है।
2: इंफ्रास्ट्रक्चर के इस विकास का बहुत बड़ा संदेश भारत की विकास यात्रा की पहचान बन रहा है। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है, निवेशकों को कनेक्टिविटी का भरोसा मिलता है, लोकल प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में पहुंचाने का रास्ता खुलता है और सबसे बड़ा भरोसा उस युवा को मिलता है जिसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। और इसलिए आज हम असम को असीम संभावनाओं की इस उड़ान पर आगे बढ़ते देख रहे हैं।
1: दक्षिण पूर्व एशिया के रणनीतिक संपर्क बिंदु पर स्थित यह उन्नत हवाई अड्डा बैंकॉक, पारो और सिंगापुर जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों के लिए सुगम हवाई संपर्क प्रदान कर रहा है, जिससे असम भारत के पूर्वी प्रवेश द्वार के रूप में अपनी भूमिका को और सशक्त बना रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार आज शाम समाप्त हो जाएगा। मतदान के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां दोनों विधानसभा क्षेत्रों में भेजी जा रही हैं। मतदान 6 अक्टूबर को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज अमरीका के हिंद प्रशांत कमान के प्रमुख एडमिरल सैमुअल जे पापारो से मुलाकात की। डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि बैठक में हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत और अमरीका के बीच सुरक्षा साझेदारी और समुद्री सहयोग और मजबूत करने पर चर्चा हुई। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज राजस्थान के जैसलमेर में डेजर्ट नेशनल पार्क में 2 नर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षियों को छोड़ा। श्री यादव ने कहा कि ये उपलब्धि भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और कर्मचारियों की एक दशक की मेहनत का परिणाम है। उन्होंने कहा कि पक्षियों को जंगल में छोड़ने से इनके संरक्षण में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में तकनीक और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से सहयोग की अपील की है। विजयवाड़ा में पैन आईआईटी आंध्र प्रदेश समिट के बाद उन्होंने कहा कि अमरावती में प्रस्तावित पैन आईआईटी वर्ल्ड काउंसिल शिक्षा, उद्योग और आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों को एक साथ लाने में सहायता करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय कल से गुजरात में 2 दिन का चिंतन शिविर आयोजित करेगा। इसमें देश में राजमार्ग के विकास और परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। शिविर में केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी तथा एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कैप्टन स्मिथ मच्छर की बहादुरी पर चुप्पी साधने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने नई दिल्ली में कहा कि पूरा राष्ट्र कैप्टन स्मिथ के असाधारण साहस से गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि कैप्टन स्मिथ ने लोगों की जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर त्रिवेदी ने कहा कि जहां कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की भारत और विश्व में प्रशंसा हो रही है, वहीं कांग्रेस नेतृत्व इस उपलब्धि पर चुप्पी साधे हुए है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल अपना वोट बैंक खोने के डर से मौन है। दिल्ली पुलिस ने 3 महिला पत्रकारों के पुलिसकर्मियों पर यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच अपराध शाखा को सौंप दी है। ये घटनाएं कल नई दिल्ली में एक प्रदर्शन के दौरान हुई। ये पुलिसकर्मी कानून व्यवस्था बनाने के लिए तैनात थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अपडेट रहे, आगे रहे X@AIRNewsHindi और Instagram पर AIRNews Alerts को फॉलो करें।
1: ये आकाशवाणी है। यमन की सेना ने देश के कुछ प्रमुख मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच सऊदी अरब ने हूतियों के रियाद में मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा खारिज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की है।
2: हूती विद्रोहियों के रियाद पर हमले के दावे को सऊदी अरब ने खारिज कर दिया है। सऊदी पक्ष ने कहा है कि यमन में मिली हार के चलते हूती एक इल्यूजरी विक्ट्री का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि उन्होंने रियाद के पास अरामको की एक फैसिलिटी को निशाना बनाया और उनके मिसाइल और ड्रोन हमले टारगेट पर भी लगे। वही यमन की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट ने कहा है कि उसकी आर्म फोर्सेस ने तैस और तूर अल बहा में हूती ठिकानों के खिलाफ 97 ऑपरेशन किए। इन ऑपरेशन में 260 हूती लड़ाकों को न्यूट्रलाइज करने और 44 मिलिट्री व्हीकल्स और सप्लाई एसेट्स को नष्ट करने का दावा किया गया है। मनीष शिवा, आकाशवाणी समाचार, दुबई।
1: सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन के प्रवक्ता ने कहा कि ताइज में हुए नुकसान के बीच हूती समूह अपनी जीत दिखाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि यह हूतियों की अपने नुकसान से ध्यान भटकाने की कोशिश है। अमरीकी तटरक्षक बल ने पुष्टि की है कि बरमूडा से बोस्टन जा रहे लापता चिकित्सा विमान का मलबा नेटकट तट के पास मिल गया है। इस विमान में कनाडा के 4 और बरमूडा के 2 नागरिक सवार थे जिनकी तलाश की जा रही थी। कनाडा के परिवहन मंत्री स्टीवन मैकिनॉन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थिति पर पैनी नजर रखी जा रही है। जापान के नागोया में एशियाई खेल आज संपन्न हो रहे हैं। समापन समारोह कुछ ही देर में 2:30 बजे शुरू होगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि महिला निशानेबाज नीरू ढांडा भारत की ध्वजवाहक होंगी।
3: एशियाई खेलों में भारत शानदार प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित कुल 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। क्रिकेट, कबड्डी और हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इस जीत के साथ भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम ने लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए सीधे क्वालिफाई भी कर लिया है। कुश्ती में अमन सहरावत ने पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत की मुक्केबाजी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया। गोल्फ में प्रणवी उर्स एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली भारत की पहली महिला गोल्फर बनी। भारोत्तोलन में मीराबाई चानू ने रजत पदक हासिल किया। तीरंदाजी में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को 5-3 से हराकर पहली बार स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। जबकि कुमकुम मोहत व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज बनी। तीरंदाजी में भारत का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित कुल 9 पदक जीते। समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी श्यामजी कृष्ण वर्मा को जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्य शिवा की जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि सुब्रमण्य शिवा ने स्वतंत्रता और वंदे मातरम का आह्वान तमिलनाडु में कोने कोने तक पहुंचाकर आजादी की भावना जगाई। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल के कुछ क्षेत्रों में कल तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिन गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है। कोंकण और गोवा में कल तक गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वायुसेना ने आज कई शहरों में सैकड़ों भारतीय वायुसेना मैराथन आयोजित की। इनमें दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, ग्वालियर, बेंगलुरु, गुवाहाटी और जोधपुर शामिल हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने नई दिल्ली में दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर वाइस मार्शल शेखर यादव ने संवाददाताओं से कहा कि मैराथन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों की स्मृति में आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान असाधारण साहस का प्रदर्शन किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा भारत अपने संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार के बूते ही विकसित बनेगा। पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो रहा है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को रूपांतरित करने के लिए शुरू की गई पीएम सेतु योजना का 1 वर्ष पूरा। केरलम, माहे, तमिलनाडु

0: पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर कल तक तेज वर्षा का अनुमान। यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमले की पुष्टि की। हूती ने रियाद में अरामको तेल संयंत्र पर मिसाइल और ड्रोन हमले का दावा किया। और जापान में एशियाई खेलों का समापन आज। भारत 21 स्वर्ण 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

विविध भारती से लीजिए पेश है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

0: फिल्म तीसरी कसम में आपने सुना आशा भोसले की आवाज, शैलेंद्र के बोलों को सुर में ढाला शंकर जयकिशन ने, और इस गीत के पहले श्रोताओं दिल ही तो है फिल्म का गीत हमने आपको सुनवाया था मुकेश की आवाज में। साहिल लुधियानवी के बोलते रोशन का संगीत था।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
4: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
3: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
5: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
3: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
6: तुम्हारी याद सताते हैं
3: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

आकाश दीप, इस फिल्म का गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी की आवाज में मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला चित्रगुप्त ने। आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे में।

0: आप सुन रहे थे लागी छूटे, लागी नहीं छूटे राम इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियां, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी,
2: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रोबब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
1: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती का कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

की आवाज फिल्म तीसरी मंजिल। मजरू सुल्तानपुरी के बोल राहुल देव बर्मन की तर्ज।

सी रामचंद्र की तर्ज साहिल ध्यानवी की बोल लता मंगेशकर की आवाज फिल्म बहुरानी का ये गीत था सदाबहार नगमे। ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है।

0: प्यार की चुवन, अपने पन का गांव, छाया गीत रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: श्रोताओ नमस्कार, आपके रेडियो सेट पर आ चुका है आप ही के मनचाहे गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत। आज इस प्रोग्राम में कौन कौन से गीत शामिल हैं और किन श्रोताओं की फरमाइशें शामिल हैं, इन बातों के लिए चलिए मनचाहे गीत कार्यक्रम के सफर में चलें हम और आप साथ साथ बनाकर आपके मनचाहे गीतों को अपना हम सफर। सुनने वालों को संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।
1: दिल

आप सुन रहे थे चरस फिल्म का गीत लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और आनंद बख्शी की आवाजों में। आनंद बख्शी की रचना थी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी। विनय अवस्थी ने इस गीत को पसंद किया। पालमपुर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के ये हमारे श्रोता हैं और इसी गीत की फरमाइश की अम्बाला कैंट हरियाणा से रतनलाल, विनोद कुमार, साहिल, सुदेश और मनीषा ने इस गीत को सुनना चाहते थे। काशी निवास बंगाली पंजाब महाराष्ट्र के हमारे श्रोता प्रकाश रंभांडे, भारती रंभांडे, नागपुर के श्रोता टोनी बोरकर, ललिता बोरकर की यह फरमाइश थी। रामनगर जिला गुना के हमारे श्रोता ज्योति प्रजापति, नरेश प्रजापति, सार्थक प्रजापति और पालदा नाका इंदौर के हमारे श्रोता हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी की फरमाइश हमने आपको सुनवाई और इसी गीत को सुनना चाहते थे। घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मित पंचोलिया।

रूप तेरा मस्ताना फिल्म का दो गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किशोर कुमार का गाया, असद भोपाली के बोलों को सुर में ढाला लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुना चाहते थे बड़ोड़ा करेली बाग के हमारे श्रोता दिव्य हर्ष, राधे, पारस पूजा रचना और इनके परिवार के सभी सदस्य, कटोल जिला नागपुर से सुरेश मलमकर, श्रीमती रजनी मलमकर की ये फरमाइश थी। और रेलवे कॉलोनी जी ब्लॉक आनंद विहार के हमारे श्रोता किशन वंजानी, नीलम वंजानी, स्वाति और कीशु वंजानी की ये फरमाइश थी। और ये हमारे श्रोता हैं इंदौर आड़ा बाजार के प्रतिभा बंजारे बबलू जिया राशि, नेहा मनीष शर्मा और भावना के साथ साथ एक और नाम है आशीष जाधव का। और ये हमारे श्रोता हैं आरुष आर कम्मत, इन्होंने कोची केरल से ये फरमाइश भेजी थी।

कैथल हरियाणा के हमारे श्रोता सुरेंद्र वर्मा, मूर्ति वर्मा, पूनम वर्मा, पूजा वर्मा ने इस गीत को पसंद किया। दत्तारेंगी भाटापारा से हीरामन वर्मा, हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र चिंतामणि और नोखेलाल वर्मा की फरमाइश थी। प्रबोध चंद्र कंडपाल, रेणु कंडपाल, अंजलि कंडपाल की ये फरमाइश आई इंदौर से। और गजवाटांड धनबाद से हमारे श्रोता हैं शाहीन बानो, समीना बानो, नाजिया और सायका बानो, और इसी गीत को सुनना चाहते थे। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र के हमारे श्रोता सिद्धार्थ गुंडा ने, अर्चना गुंडा ने और इनके प्रतिभा पद्माकर गुंडा ने और इनके परिवार के सभी सदस्य पगला कहीं का इस फिल्म का गीत इन्होंने सुनना चाहा था। मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपने सुना। नगमा निगार हसरत जयपुरी मस्कार शंकर जय किशन थे। विविध भारती से आप सुन रहे हैं अपने ही पसंदीदा गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत।

फिल्म जंगली में आपने सुना मुकेश और आशा भोसले की आवाजें, हसर जयपुरी के बोल थे, तर्ज थी शंकर जयकिशन की। इस गीत की फरमाइश भेजी जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र के हमारे श्रोताओं ने, जितेंद्र वाघमारे, प्रतिभा वाघमारे, मितांश वाघमारे और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश थी। ग्राम दरचुरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, रेखा मोतीलाल साहू ने इस गीत को पसंद किया। नूर मुजस्सम रौमा, दिलावर हुसैन रौमा, अजहरुद्दीन तमामुद्दीन रौमा, इनकी फरमाइश है तहसील मालिया मियाना से। और परवेज अहमद, शहजाद अहमद, सरफराज अहमद, ये हमारे श्रोता हैं काशीपुर खालसा के, और इस गीत को सुनना चाहते थे जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चौरसिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया की ये फरमाइश है श्रोताओं।

आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में आंखें फिल्म का गीत, साहिल लुधियानवी का लिखा, रवि का संगीत था। अनारकली बाजार जगराओ के हमारे श्रोताओं ने इस गीत को पसंद किया। सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका और सुच्चा सिंह पाठक ने इसी गीत के लिए हमें पत्र लिखे। नाचन गांव, जिला वर्धा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से आरती भगत, विशाली पूर्वी भगत, लता प्रदीप, विशाल भगत ने इस गीत को पसंद किया और इनके साथ ही रामचंद्र भगत और चंद्रकांत भगत और इनके परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश। अकोले संगम विहार दिल्ली के हमारे श्रोता हैं रणधीर गुप्ता, बबिता सत्यम गुप्ता और सुंदरम गुप्ता, राजकुमार, भगवती, शकुंतला और ये हमारे श्रोता हैं, इन्होंने रामनगर जबलपुर मध्य प्रदेश से फरमाइश भेजी है। भगवान दास, सियाबाई, राजकुमार और दिनेश कुमार की ये फरमाइश है और ये ही नाम इसमें है। और लेक सिटी उदयपुर के हमारे श्रोता प्रकाश चंद्र, अमिता, इंदिरा देवी, शैलेंद्र बाबू, अरुचि और नेहा अमेटा ने इस गीत को सुनना चाहा था और यही थी श्रोताओं।

मनचाहे गीत कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। आज का मनचाहे गीत प्रोग्राम यहीं संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को। आप रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती के संग और मनचाहे गीत में अपना साथ बनाए रखिए। भेजते रहिए अपने पत्र। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती। नाट्य तरंग, आज के नाट्य तरंग कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं असद जैदी का लिखा नाटक वायलिन वादक। निर्देशक हैं मदन शर्मा।
1: मैं सूत्रधार हूं और इस नाटक में बीच बीच में इसी तरह टपकता रहूंगा।
2: जिंदगी के इस नाटक को समझना आसान नहीं होता। मैं अपनी जिंदगी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं अपनी मर्जी का मालिक होना चाहता हूं, नहीं हो पाता। मैं चाहता हूं घटनाओं पर मेरा स्वामित्व हो। मैं चाहता हूं बस मैं यही चाहता हूं कि मैं कुछ चाहता हूं। क्या कुछ पता नहीं।
3: अनाम भैया, वॉलन सुनाओ ना।
2: हाँ, जरूर सुनाऊंगा ऋतु, अभी सुनाता हूँ।

0: पूछो ना भैया।
1: पूछो।
0: ये वायलिन तुम कहाँ से लाए?
1: ये वायलिन
2: बेटे अनाव, कहाँ जा रहे हो?
1: बाजार माँ।
2: अरे कुछ पहन कर नहीं जाओगे? बाहर बहुत सर्दी है।
1: अरे माँ कुछ नहीं होगा।
2: लो अपना गला अच्छी तरह ढक लो। ये कोट के बटन भी तो बंद कर लो, सर्दी तेज है।
1: अरे माँ।
2: अरे हाँ बेटे, आज तुम्हारा जन्मदिन है, क्या लाऊं तुम्हारे लिए?
1: अरे माँ पैसे कहाँ है तुम्हारे पास?
2: इस महीने की तनख्वाह में से बचा कर रखे थे।
1: तब तो जो मर्जी आए ले आना।
2: मैं तेरे लिए वायलिन लाऊंगी। मैंने आज मिस्टर बत्रा से पूछा था, उन्होंने कहा कि बेटे के लिए वायलिन खरीदो। मैंने उन्हें तुम्हारी रुचियां बताई थी।
1: माँ ये मिस्टर बत्रा कौन है?
2: हमारे स्कूल में नए टीचर आए हैं, हिंदी पढ़ाते हैं और नाटक खेलते हैं।
3: ये थी अनाम की 18वीं सालगिरह। माँ के दिए हुए वायलिन को उसने सीखना शुरू कर दिया। उसे लगा वायलिन के रूप में उसे जिंदगी की नई खुशी मिल गई है। अनाम का कॉलेज सुबह का था और माँ जिस स्कूल में पढ़ाती थी वो शाम का था। अनाम कॉलेज से घर लौटता, माँ के हाथ से खाना खाता। जब माँ स्कूल चली जाती थी तो अनाम का वक्त काटना मुश्किल हो जाता। वायलिन आने पर उसका वक्त आसानी से गुजरने लगा। एक दिन की घटना है।
2: अनाम बेटे, तुम्हारे कॉलेज के नाटक का क्या हुआ?
1: अच्छा गया माँ।
2: तेरा रोल तो अच्छा रहा ना?
1: बहुत अच्छा रहा, लेकिन मैं स्टेज के पीछे रो दिया था।
2: क्यों?
1: माँ वो मैं श्रवण कुमार बना था। जब राजा दशरथ अंधेरे में पानी भरते हुए श्रवण कुमार को तीर मार देता है
2: तो क्या
1: मेरा रोल खत्म हो गया। मैं रोल खत्म होने पर स्टेज के पीछे खड़ा हो गया, मगर रोल सर से उतरा नहीं था। जैसे ही श्रवण कुमार के माँ बाप ने रोना शुरू किया, मेरे भी आंसू आ गए। सच

0: मुझे तुम याद आ गई माँ।
1: बेटे तुम बहुत भावुक हो, बहुत भावुक।
2: यही था वो अनाम जो जीवन के 18 बसंत गुजार कर भी बच्चा ही बना हुआ था। माँ उसका संसार थी, उसकी सारी चीजें माँ के इर्द गिर्द केंद्रित थीं, क्योंकि जब से उसने होश संभाला तभी से उसके लिए सिर्फ माँ थी। पिता सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, इसलिए अनाम की माँ को स्कूल में नौकरी करके वैधव्य के लंबे दिन गुजारने पड़े।

0: लेकिन माँ वो तो मुझे जानते ही नहीं।
1: जानते हैं जानते हैं, मैं तुम्हारे बारे में उनसे बात किया करती हूँ।
0: अब ठीक है माँ, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा।
1: नहीं, अकेले ही जाना।
0: क्यों?
1: मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा।
0: मगर क्यों माँ?
1: वो तुमसे अलग से बात करेंगे, मेरे साथ चलने से क्या होगा, आखिर रोल तो तुम्ही को करना है। आ गए तुम?
0: अच्छा नहीं रहा माँ।
1: क्यों?
0: वो उन्होंने नाटक के बारे में तो कोई बात ही नहीं की, बस मेरी पढ़ाई के बारे में पूछते रहे, रुचियों के बारे में पूछा, मेरे दोस्तों साथियों की बात, आने वाले दिनों में क्या करना चाहते हो, बस ऐसी ही बातें।
1: ठीक तो है, वो तुम्हें समझना चाहते होंगे, तुम्हारे बारे में जानना चाहते होंगे।
0: मुझे तो वो पसंद नहीं आए माँ।
1: क्यों?
0: बस कुछ आदमी पता नहीं क्यों अच्छे नहीं लगते।
1: ये बचपना छोड़वा नाम, इस तरह नहीं कहा करते, मिस्टर पत्रा बहुत अच्छे आदमी हैं।
0: होंगे मगर
1: अनाम।
0: माँ, इसमें नाराज होने की क्या बात है? ठीक है माँ, मैं तुम्हें दुख नहीं पहुंचाऊंगा, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें दुख होगा। तुम चाहोगी तो मैं उनके नाटक में काम करूंगा। आज उन्होंने मुझे कुछ ऐसी नजर से देखा कि मैं बहुत परेशान हो गया, बस इतनी सी बात थी।
1: अना, अब तुम जवान हो, समझदार हो, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।
0: मुझे दुख है माँ।
2: मिस्टर बत्रा के बारे में अनाम की बात सुनते ही माँ कितनी विचलित हो गई। माँ की वो संदेह भरी नजर, चेहरे पर अचानक चौंकने का ये भाव, नाराजगी भरी आंखें, अनाम को पहली बार माँ के साथ ये तजुर्बा हुआ। इस तजुर्बे से अनाम को धक्का लगा। मिस्टर बत्रा से मिलना अनाम को अच्छा नहीं लगा और अनाम सोच भी नहीं पाया कि मां को इससे दुख होगा। मिस्टर बत्रा के शुरू किए गए नाटक सुंदरता के सभी शिकारी में अनाम ने काम करना शुरू कर दिया। रिहर्सल होने लगी। रिहर्सलों के दौरान मां मौजूद रहती, वो लगातार मिस्टर बत्रा से पूछती रहती,
1: कहिए बत्रा साहब, अनाम ठीक चल रहा है ना? एक्टिंग तो ठीक करता है। बस बस बस यही कसर है, मगर सुधार तो लेगा ना? हाँ, मुझे भी डर था, मगर ठीक है। बस बस बस ज्यादा तारीफ मत करिए। आप उसे खुश तो है ना? बहुत बहुत शुक्रिया बत्रा साहब, सो काइंड ऑफ यू। प्लीज प्लीज बत्रा साहब, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे ना होगा, ये मुझसे नहीं होगा।

0: अब मुझे तुम भी कह सकते हैं। सच तो ये है कि एक औरत के अकेलेपन के दिन कैसे होते हैं मैं ही जानती हूँ। मैं अब खुश रहने की कोशिश करूंगी, कोशिश करूंगी।
1: अब तो आप जान ही गए होंगे प्रिय श्रोतागणों कि नाटक एक नहीं दो चल रहे थे। एक नाटक का नाम सुंदरता के सभी शिकारी और दूसरा नाटक ऐसा था जो जिंदगी के वास्तविक रंगमंच पर खेला जा रहा था, मिस्टर बत्रा और अनाम की मां के बीच, जिसमें अनाम भी था। इस दूसरे मगर अदृश्य नाटक में फंसे अपने तीनों पात्र कुछ अरसे तक अपनी अपनी दिशाओं में चलते रहे और अपने अपने अंतर्द्वंद्वों का शिकार होते रहे। अब यह जानना कतई जरूरी नहीं कि कब क्या कैसे हुआ, मगर एक दिन अनाम ने मां से कह दिया कि आगे से वो रिहर्सलों में ना आए।
2: आखिर क्यों?
3: अच्छा नहीं लगता मां, बत्रा साहब अच्छे डायरेक्टर।
2: अच्छे डायरेक्टर वे चाहे ना हो, वो अच्छे आदमी जरूर है।

0: है ना?
1: नहीं माँ, मेरा मतलब उनकी बुराई से नहीं था, मगर तुम रोज रोज रिहर्सल में बैठी रहती हो, ये अच्छा नहीं लगता।
0: देखो अनाम, तुम अपने मन से उल्टी सीधी बातें निकाल कर फेंक दो।
1: बुरा मत मानो माँ, मैं तो ना समझ हूं, बच्चा हूं, मगर माँ मेरे लिए संसार का अर्थ ही माँ है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता माँ, तुम्हें खो देने का मतलब होगा संसार को खो देना।
2: और माँ अनाम की कल्पनाओं के अंधेरे में हवा के उजले झरोखे सी माँ अपनी उलझने लिए मिस्टर बत्रा के पास पहुंची।
3: अनाम ने कभी मुझसे अपने आप को काट कर नहीं देखा, बचपन से ही उसके साथ सिर्फ मैं रही हूँ, मेरे साथ उसके विचार चले। मिस्टर बत्रा, अनाम नादान है, लड़कपन से आगे वो निकल नहीं पाया है। ये पहली बार हुआ है कि उसने मेरी बात की अवहेलना की और मेरे रोकते रोकते आप पर अपनी नापसंदगी की मोहर लगा दी है। कुछ कहिए मिस्टर बत्रा, चुप मत रहिए।
2: क्या कहते श्री बत्रा या कोई और? जिंदगी का अकेलापन कहीं तो 20-20 साल तक आपको नहीं खाता, और जब खाने लगता है तो एक दिन भी उसकी पूरी गिरफ्त में आने के लिए काफी है। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना, बैठिए और तसल्ली से बत्रा साहब से बातें कीजिए, जिनकी जिंदगी के 40 बरस कोरे गए, वे अब एहसास की तहरीरें देख रहे हैं। दूर समंदर में उठती किनारे की रोशनियों से जगमगाती लहरों की तरह उनके अंदर विचारों का उठाव है। द्वंद्व में सिर्फ आप ही नहीं हैं।
3: अनाम बच्चा है, वो नहीं समझेगा एक औरत की तकलीफ।
1: न माँ कुछ समझेगी न मैं, वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी, और अब मैं भी अपनी नाराजगी वापस कैसे लूं?
2: अंतर्द्वंद्व चलता रहा, माँ और बत्रा, बत्रा और माँ। अनाम ने देखा कि संसार का सारा अर्थ सिमट कर माँ के लिए सिर्फ बत्रा रह गया है। वो देखता रहता, रिहर्सल करता रहता, देखता रहता। रात होती घर आता, माँ कहती खाना खा, अनाम आता खाना खाता। माँ कहती वायलिन न बजा, जा बिस्तर में जा, जाकर सो जा।
4: आ, आ, आ, अनाम खाना खा, चल घर चल, जा बाजा बजा, बाजा बजा, जाकर सो सो जा,
5: चल उठ उठ कर हाथ मुंह धो, हाथ मुंह धोकर नाश्ता कर, चल स्कूल चल, आ अनाम नाटक कर, कर नाटक कर, अच्छा अभिनय कर, चल तू उत्सव को हंस, खुलकर हंस, आ बाजा बजा, वायलिन बजा, बस बंद कर अब बंद कर, चल कहना मान, आज्ञा मत डाल, खुश रह आंसू मत पी, खुल कर लो खुल कर लो खुल कर लो।
0: मिस्टर बच्चा बहुत अच्छा आदमी है, मिस्टर बच्चा बहुत अच्छा आदमी है, मिस्टर बच्चा बहुत अच्छा आदमी है। नहीं अकेले ही जाना चाहिए, मेरे साथ चलना अच्छा नहीं रहेगा, मेरे साथ चलने से क्या होगा? मैं तेरे लिए वॉयलिन लाऊंगा। मैंने आज मिस्टर बच्चा से पूछा था, उन्होंने कहा
6: के लिए वॉयलिन खरीद। अनाम अनाम, क्या हुआ बेटे? क्या तुम डर गए थे? सब में डरो मत बेटा, डरो मत।
1: हाँ माँ, सपना था, सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना, सपने के अंदर सपना, सपने के बाहर सपना।

0: बस रितु,
1: और बजाओ ना ना बजाओ।
0: बस रितु अब कल।
2: अच्छा अनाम भैया, आपकी मम्मी कहाँ गई?
0: मेरी मम्मी? पता नहीं रितु, मेरी मम्मी कहाँ गई? तुम्हारी मम्मी तो है ना?
2: मेरी मम्मी घर पर है, आपको मेरी मम्मी के पास ले चलूं?
0: नहीं रितु।
2: क्यों?
0: वो मुझे मेरी मम्मी याद आ जाएंगी।
1: अच्छा नाम भैया, मैं चलती हूँ।
3: अनाम, ये वायलिन बंद करो, पहले मेरी बात सुनो।
0: सुन रहा हूँ।
3: मेरी बात टालोगे तो नहीं?
0: क्या बात?
3: इतने ठंडे सुर में क्यों बोलने लगे हो तुम अनाम? बेटे, मैं मिस्टर बत्रा से शादी कर रही हूँ। तुम्हारी क्या राय है?
0: मेरी राय कैसी?
3: तुम्हें दुख है?
0: कोई दुख नहीं, अच्छी बात है।
3: मेरी मर्जी पर चलोगे नहीं?
0: किसने कहा?
4: अनाम की मां अब मिसेज बत्रा हो जाती हैं। अब सिचुएशन यह है कि अनाम महोदय बेचैन हैं। घर पर ताला लगाकर वे अपनी मां के साथ अपने नए पिता के घर आ गए हैं। उनका मन बैरागी हो गया है।
3: अनाम, दिन भर से कहां गायब थे?
0: बाहर था।
3: बाहर से मतलब? मैं पूछ रही हूँ कहां गायब थे?
0: शहर में घूम रहा था।
3: देखो अनाम, ये वायलिन उठाकर दिन दिन भर आवारा गर्दी करना, किसी से बोलना ना चालना, पढ़ाई में मन ना लगाना।
0: बस करो माँ।
3: तुम्हारे पिता कह रहे थे तुम आज रिहर्सल में भी नहीं आए, ये सब कब तक चलेगा आखिर?
0: ठीक है।
3: क्या ठीक है?
0: आगे से ख्याल रखूंगा।
3: कहाँ जा रहे हो?
0: सोने के लिए।
3: खाना तो खा लो।
0: भूख नहीं है।
3: ठीक है, जाओ।
0: ये चिड़चिड़ापन तुम में क्यों माँ? ये असहिष्णुता मुझ में क्यों? मैं घटनाओं से समझौता नहीं कर पा रहा हूं। आखिर क्यों ये सूनापन क्यों घिराया है? अपनी मां को खोकर मुझे ऐसा क्यों लगने लगा जैसे मेरे अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह गया है? मैं इतना पराश्रय क्यों हूं? मैं तुमसे अपने आप को अलग क्यों नहीं कर पाता मां?

0: माँ को माँ कहना अनाम ने बंद कर दिया है। वो उसे मिसेज बत्रा कहकर पुकारता है अगर जरूरत होती है तो। एक अनजान बच्ची को वो वायलिन सुनाता रहता है। और एक संसार था माँ का।
1: अनाम खोया खोया रहता है, उदास और मूर्छित। वो इस घर में नहीं रहना चाहता, उसे पुराने घर की स्मृतियां सताती हैं। वो वहीं लौट जाना चाहता है। दिन दिन भर आवारा करती वायलिन और पड़ोस की बच्ची रितु। आप ही बताइए मैं क्या करूं, कैसे संभालूं इसे।
2: मिस्टर बत्रा, चुप क्यों हैं? कुछ कहिए ना, हमारे श्रोता आपकी वाणी सुनने को तरस रहे हैं।
1: अब मैं और नहीं सह सकती। कब तक यह निश्चय, आखिर कब तक? मैं किसी की जंजीर से नहीं बंधी हूं, चाहे बेटा हो। उसकी भावुकता और बचकानेपन पर अपनी बलि मैं नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी।
0: जी हाँ, बलि ना होने दें। ये फैसला आपको पहले ही कर लेना चाहिए था। खैर, देर आयद दुरुस्त आयद।
1: आपको पता है, अनाम घर छोड़कर चला गया।

0: रात को यहाँ नहीं आया। स्कूल का एक लड़का बता रहा था कि पुराने घर में अकेला बैठा वायलिन बजाता रहता है। बहुत दिन हो गए नाम को यहाँ से गए हुए। एक बार का ऐसा गया कि फिर इस ओर झांक कर भी नहीं देखा। उसकी खबर मिलती रहती है। मैं बेचैन हूँ। पता चला है अनाम ने नौकरी कर ली है, पास हो गया है।
1: कितने आश्चर्य की बात है कि मिनट, घंटे, पहर और दिन गुजारना मुश्किल लगता है। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक दिन ऊब, उकताहट और बोरियत हमें खाए लेती है। अनाम को यह सोचकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वो 20 बरस का हो गया है। मां से जुदाई के 2 वर्ष पल पल सदियों की तरह कटा, मगर ये सदियां कब मिलकर 2 साल बन गई पता ही ना चला। है ना आश्चर्य की बात।
2: वोइलिन के साथ गुजारे गए 2 साल बचपन के सुनहरे दिन, कैशोर्य के बदलाव के रंग से दिन।
3: मिस्टर अनाम,
2: पता नहीं कौन निरंतर मुझे आवाज देता है।
3: मिस्टर अनाम,
2: बार बार खटखटाहट होती है, बार बार मैं जागता हूं, बार बार फिर खटखटाहट होती है। इसका रहस्य मेरी समझ में कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। महीनों हो गए, मां की कोई याद नहीं। 2-1 बार मिलने भी आई, मैंने मिलने से इनकार कर दिया। पता नहीं अच्छा किया या बुरा। घटनाएं अब सिर्फ एक धुंधली सी स्मृति बनकर रह गई हैं। न किसी के प्रति प्रेम उमड़ता, न नफरत। ये मुझे क्या हो रहा है धीरे धीरे।
0: अनाम एक दिन मेरा अपमान करेगा, मैं उससे मिलने जाऊंगी और वो मुझसे मिलने से इनकार कर देगा। ओह, ये कभी सोचा तक न था। मगर क्या करूं, उसको अपने से हटा नहीं सकती। मैं उतनी क्रूर और कठोर नहीं बन सकती, नहीं बन सकती।
1: अनाम ने मातृत्व ढूंढा था, वो मां के दूसरे किसी पक्ष की कल्पना भी नहीं कर पाया था।
0: मातृत्व वैधव्य के लंबे दिन गुजारने से ही सार्थक नहीं होता अनाम।
2: ये तुम्हारी भूल है मां, तुम मुझे समझ नहीं सकी।
4: कैसी भूल और किसकी भूल? जीवन के इन पेचीदा प्रश्नों का उत्तर किसके पास है?
5: कहां है उत्तर?
4: कहां है उत्तर?
2: कहां है उत्तर?
5: कहां है उत्तर?
4: कहां है उत्तर?
5: अनाम भैया।
2: हाँ रितु।
5: वायलिन सुनाओ ना।
2: रितु, आज समुद्र के किनारे चलते हैं, वहां जाकर खूब वायलिन बजाएंगी, है ना?
5: हाँ हाँ चलो।

सारे शहर में खबर फैल गई कि समंदर के किनारे चट्टान पर बैठकर एक लड़का पिछले 12 घंटों से वायलिन बजा रहा है। बहुत सारे लोग उसे देखने जा रहे हैं, बहुत भीड़ है। यह भी सुना गया है कि एक 10 वर्षीय बच्ची निरंतर 12 घंटों से वायलिन वादक के साथ बैठी वायलिन सुन रही है।

0: किनारे वायलिन बजा रहा है। रितु के मामा भी परेशान है, वो भी इसी के साथ है।
1: विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि युवा वायलिन वादक जो पिछले 20 घंटों से लगातार वायलिन बजा रहा है, उसका नाम अनाम पाठक है। कुछ लोगों का अनुमान है कि संभवतः वो लगातार वायलिन बजाने में विश्व रिकॉर्ड कायम करना चाहता है। एक अन्य सूचना के अनुसार पुलिस थाने में एक बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। बच्ची के माँ बाप ने किसी अनाम पाठक के प्रति संदेह व्यक्त किया है। विश्वास किया जाता है कि ये युवक संभवतः वही युवा वायलिन वादक है, और ऋतु नामक जिस बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, ये वही बच्ची है जो उक्त वायलिन वादक को पिछले 21 घंटों से सुन रही है।
2: अनाम भैया को वायलिन बजाते बजाते रात हो गई।
0: अभी भी पड़ोसी ने आकर खबर दी है कि वायलिन बजा बजा कर अनाम ने अपनी उंगलियों को घायल कर डाला है। तमाम वायलिन उसकी उंगलियों के खून में भीग गया है।
2: अनाम भैया,
1: प्राप्त समाचारों के अनुसार एक युवा वायलिन वादक जिसका नाम अनाम पाठक बताया जाता है, आज समुद्र के किनारे मृत पाया गया। संभवतः उसने आत्महत्या की है। इस आत्महत्या के पीछे 2 दिन पूर्व की उस घटना का हाथ बताया जाता है, जब उस युवक ने लगातार 25 घंटे तक बिना रुके वायलिन बजाकर पूरे शहर को चकित कर दिया था। बाद में युवक की मां ने उसके हाथ से वायलिन छीनकर तोड़ दिया था। मृत युवक अत्यधिक संवेदनशील और प्रतिभाशाली था, मगर एक चिकित्सक के अनुसार कुछ मानसिक व्याधियों से ग्रस्त था वो वायलिन वादक।

0: वायलिन वादक, नाट्य तरंग में अभी आप असद जैदी का लिखा यह नाटक सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया मदन शर्मा ने। यह रिकॉर्डिंग हमें प्राप्त हुई आकाशवाणी के जयपुर केंद्र के सौजन्य से। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

उनका सफर शुरू हुआ था बतौर वायलिन वादक। उसके बाद वो बने म्यूजिक अरेंजर और फिर बने म्यूजिक डायरेक्टर। पहले बनी जोड़ी उत्तम जगदीश की पेंटर बाबू वारिस और फिर संगीतकार उत्तम सिंह।

0: एक प्रेम कथा।
1: मैं निकला ओ गट लेके
0: पिंजर दास्तान बेमिसाल संगीत की
1: उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा।
0: एक उत्तम जीवन की कहानी उजाले उनकी यादों के संगीतकार उत्तम सिंह के साथ। ये है जाने माने संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत का तीसरा भाग। उत्तम जी नमस्कार, एक बार फिर से विविध भारती की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद जी, नमस्कार जी, आप सब सुनने वालों को मेरा प्रणाम।
0: उत्तम जी, एक बहुत लंबा प्रोग्रेशन आपका रहा है। आपने 13 साल की उम्र में बतौर वायलिनिस्ट अपना सफर शुरू किया था
2: जी,
0: और उसके बाद म्यूजिक अरेंजर और फिर म्यूजिक डायरेक्टर, ये एक पूरी यात्रा है। और म्यूजिक डायरेक्टर में भी एक पहले उत्तम जगदीश की जोड़ी बनती है, फिर आप एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। हमारे बहुत सारे सुनने वाले ये जानना चाहते हैं कि एक म्यूजिशियन का क्या काम होता है, म्यूजिक डायरेक्टर का क्या काम होता है, और अरेंजर असल में क्या करता रहा है।
2: जी, वैसे तो म्यूजिशियन बनना इट्सेल्फ इज ए बहुत बड़ी बात है
0: जी।
2: एक बहुत विख्यात संगीतकार है जिनका नाम है इलैयाराजा साहब
0: जी,
2: दुनिया जानती है उनको। उन्होंने एक स्टेज पे या पता नहीं कहाँ कहा था उन्होंने, वो बात उनकी मुझे आज तक याद है, उन्होंने कहा था कि जी म्यूजिशियंस आर बॉर्न नेवर मेड।
0: वाह,
2: तो म्यूजिशियन बनना जो है ये एक कुदरत की देन है। कुदरत की देन को हासिल करना, कुदरत की देन को पॉलिश करना, कुदरत की देन को आगे बढ़ाना, ये इंसान के हाथ में है। क्योंकि म्यूजिक तो आपको मिल गया, ऊपर वाले ने दे दिया, लेकिन सुर की साधना, संगीत की साधना, इसके लिए जो पुराने लोग थे 20-20 साल रियाज करते थे। तो जब मेरी लाइफ शुरू हुई एज ए संगीतकार, तो 4.5 साल की उम्र में पिताजी ने मटका सिखाया
0: जी,
2: फिर तबला सिखाया, सितार सिखाई, वोकल सिखाया, डांस सिखाया। बॉम्बे में आके वेस्टर्न क्लासिकल वायलिन शुरू किया
0: जी।
2: तो मुझे आज भी याद है 60 की एज में जब उन्होंने शुरू करवाया मुझे, तो उन्होंने टाइम टेबल बनाया था। यूनुस जी, ये आज बड़ी अनहोनी सी बात लगती है, उन्होंने मेरा टाइम टेबल बनाया था 13.5 घंटे का।
0: बाप रे बाप,
2: 13.5 घंटे प्रैक्टिस करनी है, 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे 3 घंटे और 1.5 घंटा,
0: और उसमें खेलना और
2: कुछ नहीं,
0: कुछ भी नहीं,
2: कुछ नहीं। 3 घंटे के रियाज, उसके बाद 1/2 घंटा ब्रेक, खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ, फिर खाओ पियो, फिर शुरू हो जाओ। तो 13.5 घंटे मैं खड़े होके प्रैक्टिस करता था।
0: ओहो,
2: बैठना भी नहीं, खड़े होके। वायलिन की एक पोजीशन होती है खड़े होने की, बस उससे हिलना नहीं। अगर पांव थोड़ा सा हिल गया तो शाम को माँ कंप्लेंट करती थी कि आज इसका पांव हिल गया।
0: ओहो हो,
2: तो ये तपस्या होती है
0: जी
2: जो आज के युग में खत्म हो गई है। लेकिन संगीत की साधना जो है ना, वो आप मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, मस्जिद जाओ या चर्च जाओ, उससे कहीं ऊपर है। आज हम मंदिर जाते हैं, वहां पूजा करते हैं, अगर आपने साधना कर ली संगीत की, तो आप समझिए कि आपने चारों धाम घूम ली।
0: बिल्कुल,
2: आप मक्का पहुंच गए, आप मंदिर पहुंच गए, आप अमृतसर पहुंच गए, क्योंकि आपने संगीत की साधना की। संगीत की साधना जो है वो भगवान की साधना है।
0: क्या बात है,
2: उसकी साधना है जिसको कोई देख नहीं सका आज तक।
0: वाह,
2: उसकी साधना।
0: बिल्कुल, शैलेंद्र जी ने लिखा भी है ना, स्वर की साधना परमेश्वर की।

0: तो यहाँ से संगीत की लाइफ शुरू हुई एज ए म्यूजिशियन। तो म्यूजिशियन में भगवान की कृपा रही कि 1962 में पहली रिकॉर्डिंग बजाई और 1964 में पहला सोलो बजाया नौशाद साहब के लिए।
1: जी,
0: मुझे फिल्म याद नहीं
1: जी,
0: लेकिन सोलो बजाया। सोलो म्यूजिशियन बनना एक बहुत
1: बड़ी बात होती है।
0: बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद में 1965 में एज अरेंजर बनने की शुरुआत थी, भगवान ने शुरुआत करवाई और वो शुरुआत दी मुझे शंकर शंभू
1: जी
0: कव्वाल जो थे उन्होंने
1: जी
0: दी।
1: जी
0: और वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला, तो मैं चलता रहा एज ए अरेंजर, काफ़ी काम करता रहा। यहाँ पे बड़ी खुशी की बात है कि अगर हिंदुस्तान में किसी एक कॉर्नर में एक फिल्म बनी है तो उसमें उत्तम सिंह ने अरेंज किया है।
1: वाह वाह वाह, मतलब तमाम भाषाओं में,
0: तमाम
1: तमाम
0: भाषाओं,
1: प्रदेशों में।
0: कोई भी भाषा हो, अगर फिल्म बनी है
1: जी
0: तो मैंने उसमें अरेंजमेंट जरूर किया है। मतलब वहाँ के म्यूजिक जो है उनको उत्तम सिंह चाहिए,
1: क्या
0: चाहे वो
1: बात है,
0: नेपाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो अपना हरियाणा हो या बंगाल हो या कहीं भी हो,
1: साउथ हो।
0: कहीं भी हो, कुछ भी हो, पंजाब हो, कुछ भी हो, तो मैंने अरेंजमेंट किया। तो मुझे लगता है अगर मैंने सब अकाउंट रखा तो 15-20 हज़ार गाने तो मामूली बात है।
1: बाप रे बाप रे बाप, एक जीवन
0: इतना
1: काल में इतना
0: इतना
1: काम।
0: इतना काम।
1: जब काम एकदम से चारों तरफ बढ़ने लगा, पिताजी माँ कितने खुश थे?
0: बहुत खुश थे जी। और 60 में आए हम लोग और 66 में पहला घर ले लिया था
1: वाह वाह,
0: और 17,000 रुपये का घर था।
1: क्या बात है।
0: तो पहला घर अपना
1: किस इलाके में था?
0: खार में,
1: जी
0: खार 10th रोड में था, आज भी है वो बिल्डिंग।
1: जी
0: तो वो पहला घर था 17,000 रुपये का, और 17,000 रुपये में शायद मुझे लगता है 7 या 8 हज़ार रुपये कर्जा था।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: आधा कर्जा था।
0: आधा कर्जा था, लेकिन वो कर्जा खत्म हो गया क्योंकि काम
1: काम तो कर ही रहे
0: तो
1: थे।
0: कर ही रहे थे। तो मुझे बड़ी एक चैन भरी जिंदगी होती है ना, उसमें बहुत बड़ा चैन शांति मिलना होता है जब आपके मन की बातें पूरी हो जाए।
1: जी
0: तो मुझे शांति इस बात की है कि मेरे माता पिता को जो चाहिए था वो उनका पूरा हो रहा था।
1: जी जी जी
0: वो लड़के को म्यूजिशियन बनाया जाता है, लड़का भगवान की कृपा से सोलो वायलिस्ट बन गया।
1: जी
0: फिर वो चाहते थे कि लड़का तरक्की करे, तो लड़का अरेंजर बन गया।
1: जी
0: अरेंजमेंट में भी भगवान की कृपा से बहुत नाम हो गया, बहुत काम किया। फिर वो चाहते थे कि लड़का और तरक्की करे, तो और तरक्की, तो लास्ट स्टेज तो म्यूजिक डायरेक्टरी है।
1: बिल्कुल,
0: म्यूजिशियन की जो लास्ट स्टेज है वो
1: म्यूजिक
0: इस
1: डायरेक्टरी।
0: इंडस्ट्री में म्यूजिक डायरेक्टर है। खैर वो मैं आगे बताऊंगा आपको कि हमारे माता पिता की जो एक जर्नी है
1: जी
0: वो कैसे कैसे आगे बढ़ती गई, लेकिन माता पिता बहुत खुश थे।
1: जी ये जो सर म्यूजिक अरेंजमेंट है, ये
0: जी
1: अपने आप में एक बहुत बड़ा काम होता रहा है। आज के जमाने में चीजें हालांकि बदल गई हैं,
0: जी
1: लेकिन उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम के जरिए हम चाहते हैं कि हम ये चीज संजो लें कि म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक अरेंजर के काम में क्या फर्क है, और म्यूजिक अरेंजर कितना महत्वपूर्ण काम रहा है
0: जी
1: भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास का,
0: जी जी
1: जिसकी वजह से कई गाने चमक गए और हमेशा के लिए अमर हो गए।
0: अमर हो गए जी, बिल्कुल। ये बात आपने अच्छी कही। देखिए जी, पुराने जो संगीतकार जिनमें मदन मोहन साहब, नौशाद साहब, श्री रामचंद्र, खयाम साहब, जो भी पुराने संगीत, जंगर जयकिशन, इनके पास हमेशा एक अरेंजर रहा है।
1: जी
0: मैंने नौशाद साहब के साथ 35 साल एज ए अरेंजर, एज ए असिस्टेंट काम किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग और बहुत बड़े बड़े अरेंजर जैसे सेबेस्टियन साहब, फ्रेंकी साहब, मास्टर जी, उसके बाद में श्याम राव जी, पार्टे जी, ये बहुत बड़े बड़े लोग अरेंजमेंट थे, तो इन्होंने बहुत काम किया। बासु मुरारी, आर डी बर्मन के यहाँ, एस डी बर्मन साहब के यहाँ,
1: जी
0: बहुत सारे उस टाइम के जो म्यूजिक थे ना, लिखना नहीं जानते थे, म्यूजिक लिखना नहीं जानते थे,
1: नोटेशंस,
0: नोटेशन लिखना। टू यूज ए बिग ऑर्केस्ट्रा यू हैड टू हैव समबडी जो ये सब लिखे और पूरा उसमें कॉर्ड डाले, हारमोनी डाले, तो ये सब अरेंजर किया करते थे।
1: यानी अरेंजर हर एक इंस्ट्रूमेंट पर क्या बज रहा है उसके नोटेशंस,
0: नोटेशन और उसकी नॉलेज होना
1: जी,
0: वो बहुत जरूरी है।
1: और वही तय करता था कि इस गाने में वायलिन बजेगा इंट्रो
0: जी
1: में,
0: जी
1: M1 में क्या बजेगा, M2 में क्या
0: जी
1: बजेगा।
0: मोस्ट प्रॉब्ली 99% यही
1: जी
0: करते थे। फिर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी कंसेंट होती है,

0: जैसे मदन साहब है, चलो हम मदन साहब की बात करते हैं। मदन साहब ने गाना बनाया, मास्टर जी ने अरेंजमेंट किया, मदन जी आपको पूरा भरोसा है कि मास्टर जी जो बनाएंगे वो अच्छा ही बनेगा। फिर मास्टर जी ने म्यूजिशियंस बोले कि भाई मुझे आज 24 वायलिन चाहिए, व्योला चाहिए, चलो चाहिए, चलो। उसमें मदन जी को कुछ पता नहीं है कि मैंने क्या क्या म्यूजिक है, पर मदन जी अपना म्यूजिक सुन रहे हैं, यस साउंडिंग गुड, ओके।
1: वो बदल भी सकते हैं चाहे तो,
0: वो चाहे बदल भी सकते हैं क्योंकि ही इज द सुप्रीम पावर। लेकिन कराने वाले कौन? मास्टर जी अरेंजमेंट, और लिखने वाला उनके, क्योंकि मास्टर जी तो ब्लाइंड थे लिखने वाले। मदन साहब के यहाँ बहुत से अरेंजर आए, मैंने जब शुरू किया तब मास्टर जी थे वहाँ पे।
1: मास्टर जी यानी हम अपने सुनने वालों को बता दें कि सोनिक ओमी,
0: हाँ सोनिक ओमी का जो जोड़ी थी उसमें सोनिक साहब, और सोनिक साहब के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, वो ब्लाइंड थे
1: जी
0: और निहायत ही डेडिकेटेड म्यूजिशियन।
1: वाह।
0: एक बार हम उनकी फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक कर रहे थे, मैं लिख रहा था, और ये बैकग्राउंड म्यूजिक हमने मदन साहब के म्यूजिक रूम में ये कंपोज किया था
1: जी,
0: क्योंकि मदन साहब के पास पियानो था।
1: हाँ।
0: तो मास्टर जी वांटेड ए पियानो टू कंपोज, तो मैं उनके साथ लिख रहा था, वहां बैठ के हमने कंपोज किया। मदन साहब नहीं थे, मास्टर जी ने मदन साहब को कहा मुझे आपका रूम चाहिए, बोले हाँ ले लो। तो एक सीन ऐसा आया कि जिसमें जो हमारे साथ दूसरा आदमी था राज करके, जो लिखता था कि इस सीन के बाद क्या क्या होगा, तो वो सीन लिख के आया। तो हम लोग घर में बैठ के बना रहे थे, तो राज को पूछा राज क्या था, तो बोले जी इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था, इतने सेकंड पे ये था। उन्होंने बताया पूरा सीन, डेढ़ मिनट का पीस था। मुझे आज भी याद है, बोले नहीं राज तुम कहीं मिस कर रहे हो।
1: गजब।
0: एक जगह ऐसी थी जहाँ पे वो हीरो चला था और टक्कर के पांव की आवाज थी, वो तुमने शायद मिस किया है, तो तुम जाओ बाकी करके आओ। वो वापस गया मोबिला पे, फिर उन्होंने वापस देखा तो वाकई मिस था।
1: ये मेमोरी सोनी जी की,
0: क्योंकि ब्लाइंड थे तो ध्यान सारा पूरा। तो मुझे आज भी याद है उनका, मास्टर जी का। तो मास्टर जी वैसे फैंटास्टिक अरेंजर, फैंटास्टिक कंपोजर, उनके अपने पाने के भी कितने हिट है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में गाना सुनते हैं।

0: मदन जी के कुछ कुछ गजलें तो ऐसी हैं, उनको निकाल दो, अपना मास्टर जी का म्यूजिक निकाल दो तो ऐसा लगेगा कि ये गजल है, लेकिन मास्टर जी के म्यूजिक ने उस गजलों को रूप रंग ही चेंज कर दिया. एंड बैकग्राउंड म्यूजिक वाज टोटली कंपोज्ड बाय मास्टर जी. मदन साहब थे वहां पे, हमने बजाया बहुत सारे बैकग्राउंड म्यूजिक. सोनिक कौन सा पीस ले रहे हो अभी? जी फलाना पीस ले रहा हूँ, सुनवाओ एक दफा. सुना ये कहाँ पे आ रहा है? जी यहाँ पे आ रहा है. अच्छा, देन मदन साहब यूज टू इमेज कि म्यूजिक कैसा लगेगा वहां. ओके, टेक करो.
1: क्या बात है.
0: तो म्यूजिक डायरेक्टर एंड अरेंजर की जो कॉम्बिनेशन है, नाम हम डेफिनेटली एक कंपोजर का सुनते हैं
1: जी,
0: कि भाई ये कंपोज किसने किया है? नौशाद साहब ने, ये मैं किया मदन साहब ने, ये शंकर जयकिशन ने, सोने. लेकिन उसके पीछे बहुत सारे हाथ होते हैं.
1: जी जी जी.
0: म्यूजिशियंस हो गए, अरेंजर हो गया, आपके सिंगर्स हो गए. सिंगर्स का तो नाम आता है पर म्यूजिशियंस का तो नाम नहीं आता, अरेंजर का भी नाम नहीं आता. हाँ, स्क्रीन पर अगर नाम दे दिया हो कि भाई असिस्टेंट म्यूजिक एक्टर सो, वो अलग बात है. अच्छा, मैंने जब अरेंजमेंट शुरू किया तो मेरा अरेंजमेंट करने का ये होता था कि आपने एक गाना बनाया.
1: जी,
0: आपने गाना बनाया और मैंने गाना लिख लिया. मैं जब तक गाना नहीं लिखता, गाना मेरा नहीं होता.
1: मतलब आप अपने हाथ से लिखते हैं?
0: मैं अपने हाथ से जब नोटेशन लिख लूंगा उस गाने का
1: जी,
0: तो फिर वो गाना आपका है ही नहीं, वो गाना मेरा हो गया.
1: अच्छा.
0: फिर मैं उसके बाद उसका म्यूजिक बनाता हूँ.
1: ओके.
0: फिर मैं उसका पूरा म्यूजिक बनाया, मुझे क्या क्या चाहिए, क्या क्या हो गया, यहाँ फ्लूट, यहाँ सरोद, यहाँ जो भी है, जो भी है.
1: और ये कैसे डिसाइड होता है कि कहाँ फ्लूट का?
0: ये मेरी डिसाइड है
1: जी,
0: ये मेरी चॉइस है, मेरी लाइकिंग है, मेरा म्यूजिक है. और उसके बाद में फिर रिकॉर्डिंग तक, फाइनल तक मैं वहां पे हूँ. जब तक वो गाना पूरा फाइनल नहीं हो जाएगा. अभी जैसे मैंने प्यार किया, वो उसमें राम लक्ष्मण का म्यूजिक था
1: जी,
0: लेकिन Everything was done by me. Music arrangement से लेकर music बजवाना, music record करना, लता जी आती थी, लता जी को गवाना, दीदी को क्या चाहिए, क्या होता है, उसके बाद final mixing तक I am there.
1: यानी introduction music में मान लीजिए कि गिटार के strings हैं, जैसे किसी गाने में आते हैं, आज शाम होने आई में
0: जी जी
1: horn की आवाज आती है.

0: क्योंकि आपको एक स्केलेटन मिलता है
1: जी,
0: आज की जो जबान है वो ये है कि आपको एक स्केलेटन मिल गया, अभी फैशन डिजाइनर उसके ऊपर डिजाइन करेगा।
1: करेक्ट,
0: तो
1: ये काम है।
0: हाँ, ये कौन है, इसकी ड्रेस किसने बनाई है, सो एंड सो ने। इसकी ड्रेस, अरे यार इसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, किसने बनाई, सो एंड सो ने। तो फीमेल तो वही है, बट ड्रेसेस जो है वो फैशन डिजाइनर है। तो ये गाना है, अब गाने को कैसे सजाना है और उसकी रूह कैसे कायम रहे और अपनी रूह जो है वो उसको लेके चले साथ में।
1: जी जी,
0: तो ये दो रूहों का मिलन है, एक संगीतकार और एक अरेंजर।
1: वाह वाह वाह, क्या खूबसूरत बात कही।

0: दो रूहों का मिलन है।
1: वाह।
0: लेकिन वो एक बन के आपके पास आता है
1: जी,
0: आपको ये पता नहीं कि दूसरी रूह कब इसके अंदर ज्वाइन हो गई
1: और कहाँ कहाँ है,
0: कहाँ कहाँ है
1: जी।
0: लेकिन वो आपको जो सुनाई दे रहा है वो सोए।
1: एक लंबी यात्रा बतौर म्यूजिक अरेंजर आपकी रही है, लेकिन तमाम म्यूजिक अरेंजर्स का काम आपने देखा है, तो ऐसे कौन से म्यूजिक अरेंजर्स हैं जिन्हें आप बहुत ज्यादा स्नेह और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, एक आइडियल की तरह देखते हैं?
0: देखिए जी, वैसे तो सारे ही अरेंजर बहुत कमाल थे
1: जी।
0: सेबेस्टियन साहब तो बहुत ही कमाल थे,
1: शंकर जयकिशन के साथ,
0: शंकर जयकिशन के, नैयर साहब के साथ और सबके साथ, वसंत देसाई साहब के साथ
1: जी।
0: फिर पाटी जी थे जिन्होंने काम किया कल्याण जी के साथ, बासु मुरारी आरडी बर्मन के साथ काम किया, एसडी बर्मन के साथ किया, फिर मास्टर जी ने मदन साहब के साथ काम किया, उषा खन्ना के साथ काम किया। मेरी पसंद हमेशा मास्टर जी रहे,
1: सोनिक जी,
0: सोनिक साहब रहे।
1: क्या बात है।
0: और मैंने कई बार अपने अरेंजमेंट में उनको फॉलो भी किया।
1: किस तरह से?
0: उनके स्टाइल को।
1: अच्छा, उनकी स्टाइल को।
0: उनके स्टाइल को फॉलो किया
1: जी जी,
0: मैंने लाइक किया उनके स्टाइल को, उनके स्टाइल को, वो वायलेंस कैसे बजते थे, वो वायलेंस मैंने अपने अरेंजमेंट में भिजवाए।
1: वाह।
0: तो वो एक फील जो है वो अलग है, तो उसमें मैंने हमेशा मास्टर जी को प्रेफर किया। बहुत बड़े अरेंजर थे हमारे प्यारेलाल जी।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: उन्होंने जो अपने साथ काम किया वो तो अलग, लक्ष्मी प्यारेलाल तो अलग बात है,
1: लेकिन तमाम लोगों
0: भी उन्होंने काम किया। क्या काम किया उन्होंने एज अरेंजर, उनसे बड़ा अरेंजर कोई था ही नहीं उस टाइम पर, उनका नाम बहुत बड़े अरेंजरों में आता था। लेकिन सब घूम घाम के आया तो मुझे सोनिक साहब बहुत पसंद आया, क्योंकि वैसे उनका मैंने काम भी किया, तो मेरा अपना एक स्टाइल था, लेकिन मैंने उनके स्टाइल को अपने साथ रखा हमेशा।
1: क्या बात है जी। सोनिक जी के साथ कोई याद, कोई दिलचस्प याद, क्योंकि आपने उनके साथ बजाया बहुत है।
0: मैंने बजाया भी है, उनके साथ लिखा भी है, उनके साथ कंडक्टिंग भी किया है, सब किया उनके साथ, बहुत साल, बहुत
1: लंबा साथ है।
0: और लास्ट का उनका जो पीरियड था वो सारा मेरे साथ गुजरा।
1: अच्छा
0: जी। वो हालात किसी के कभी एक जैसे नहीं होते
1: जी जी,
0: तो लास्ट में उन्होंने मेरे साथ कई बार रिकॉर्डिंग में बाजा बजाया।
1: अरे,
0: क्योंकि हारमोनियम उनसे अच्छा कोई बजाता नहीं था
1: जी जी,
0: इतने बड़े हारमोनियम प्लेयर थे वो।
1: अच्छा।
0: तो उन्होंने बहुत मेरे साथ, क्योंकि मैं एज ए अरेंजर मेरे पास बहुत काम था
1: जी,
0: तो हालात कुछ जैसे थे, फिर वो मेरे साथ उन्होंने बजाया।
1: एक समय ऐसा आया जब उन्होंने मदन जी का साथ छोड़ दिया था।
0: हाँ, वो उनको अपनी फिल्में बहुत मिल गई थी ना उस टाइम पर,
1: सोनी गोमी की जोड़ी।
0: हाँ, सावन भादों के बाद उनके पास काफी काम आ गया था।
1: हाँ।
0: मुझे आज भी याद है, एक महीना उनका ऐसा था 28 दिन रिकॉर्डिंग थी उनकी।
1: अरे बाप रे, यानी हर एक दिन
0: एवरीडे गाना था उनका।
1: गजब गजब गजब।
0: मैं उस टाइम के साथ बजाता था एवरीडे सॉन्ग, इतना काम था उनके पास। फिर उनका काम कम होता चले गया, जो भी है। तो अरेंजमेंट की पोस्ट बहुत बड़ी है जी। मैंने तो अरेंजमेंट की पोस्ट ऐसे संभाली है कि भाई गाड़ी को बनाना भी है
1: जी,
0: और गाड़ी को शिमला लेके भी जाना है बम्बई से।
1: वाह वाह।
0: और शिमला जाके छोड़ के भी आना है।
1: क्या बात है।
0: तो ये तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ।
1: बिल्कुल।
0: तो मैंने गाने को समझिए मुंबई में ले लिया, उसको पूरा बनाया, उसकी पूरी पॉलिशिंग की, उसका इंजन सब ठीक किया, सब कर रहा, जब अच्छा लगा कि हाँ अच्छा लगा, तो इसका बाकी इंस्ट्रूमेंट कहाँ मिलेंगे, वो रास्ते में मिलेंगे। तो पूरा करते करते करते करते करते ये छोड़ गया।
1: वाह वाह वाह।
0: तो इस तरीके से मैंने काम किया हमेशा।
1: अच्छी मिसाल दी आपने। हमने इतना मास्टर जी को याद किया, तो मास्टर जी की याद में दिल ने फिर याद किया फिल्म का गाना सुनते हैं।
0: जरूर सुनिए, बहुत कमाल के गाने थे वो
1: जी।

0: एक बात मास्टर जी की मैं सुनाना चाह रहा था लेकिन बातों में व्यस्त कर गया। देखिए, मैं रात को सिटिंग करके घर आ गया
1: जी।
0: वो समझिए मेरे से 500 मीटर दूर रहते थे।
1: अच्छा,
0: कार में? हाँ
1: जी,
0: 500 मीटर दूर थे। मैं यहाँ, मैं भी कार में था, तो मैं पूरा गाना लिख के घर में आ गया और रिकॉर्डिंग थी परसों, कल का दिन गैप था। तो सुबह सुबह उनका आदमी मेरे पास आया सुबह 6 बजे, बोले मास्टर जी ने कहा है कि आधे घंटे के लिए आके जाओ। मैं तो रिकॉर्डिंग में जा रहा हूँ, आके जाइए आप प्लीज, बहुत जरूरी है। तो मैं सुबह 7:30 बजे उनके पास पहुंचा। मैं कहा मास्टर जी क्या हुआ? बोलते यार उत्तम बैठ यार, मैं सारी रात सोया नहीं।
1: अरे
0: मैं कहा क्या हुआ? कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ मैंने गलती की है। तो एक बार एक काम कर प्लीज, वो इंट्रोडक्शन सुनाओ।
1: ये कौन सा गाना था?
0: ये मुझे याद नहीं।
1: अरे
0: लेकिन लेकिन इंट्रोडक्शन सुनाओ। तो मैंने इंट्रोडक्शन उनको सुनाया
1: जी जी।
0: तो बोलते ये तो ठीक है, तो पहला म्यूजिक सुनाओ, फर्स्ट म्यूजिक सुनाया। बोलते ये भी ठीक है, अपने आप ही बोल रहे हैं, ये भी ठीक है। फिर दूसरा म्यूजिक सुनाओ, दूसरा म्यूजिक सुनाया। उत्तम यही गड़बड़ है।
1: अरे
0: क्या हुआ मास्टर जी? बोले ये जो तुम चार बार गा रहे हो ना, ये मेरे नहीं है, ये धनी राम जी के है।
1: अरे बाप रे बाप।
0: मैंने कहा मास्टर जी मैंने तो कहीं नहीं सुना। बोले तुमने नहीं सुना लेकिन ये धनी राम जी के चार नोट हैं इस गाने के। उन्होंने वो गाना गा के सुनाया कि इस गाने के ये चार नोट हैं। मैं ऐसा हैरान हो गया, मैं कही ये, और उन्होंने वो चेंज किया।
1: गजब। और इसके लिए वो सारी रात परेशान भी रहे।
0: देखिए आप एक आज का टाइम देखिए, आज जो कॉपी मास्टर है वो सबसे बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर है
1: जी,
0: सबसे बड़ा राइटर है, सबसे बड़ा वो है, क्योंकि वो कॉपी कर रहा है
1: और ये कॉपी नहीं कर

0: ये
1: इसके लिए
0: कॉपी,
1: परेशान
0: किसी की
1: रहे।
0: कॉपी हो गई गलती से, तो वो बोल रहे हैं कि अरे यार ये तो उनका था, धनी राम जी का था।
1: बाप रे।
0: फिर उन्होंने वो चार बार चेंज किए, मैंने लिखे पूरे, और उसके बाद फिर मैं म्यूजिक में गया दूसरे दिन रिकॉर्डिंग। कौन सा गाना था मैं भूल गया, मुझे याद नहीं,
1: जी
0: लेकिन ये इंसिडेंट था।
1: ये अद्भुत घटना है, ये एक डेडिकेशन और ईमानदारी की एक बहुत ही अद्भुत घटना है। उत्तम जी, ये जो पूरी आपकी यात्रा है, इसमें चाहे नौशाद हो, चाहे रोशन साहब हो, मदन मोहन हो, सी रामचंद्र हो, तमाम लोगों के साथ आपने बजाया है,
0: जी
1: बल्कि नैयर साहब की बाद वाली जो पारी है उसमें भी आप साथ में थे।
0: मुझे बुलाया था, लेकिन कुछ कारणवश मेरा हो नहीं सका। मुझे तो एज ए अरिजन के लिए बुलाया था उन्होंने,
1: अच्छा
0: हाँ, लेकिन हो नहीं सका।
1: जी,
0: जी
1: सी रामचंद्र के साथ?
0: अन्ना के साथ मैंने बजाया बहुत, और अन्ना मुझे बहुत प्यार करते थे।
1: जी
0: अन्ना की एक जगह मैं आज भी नहीं भूल सकता, मैंने फर्स्ट टाइम मोपेट ली थी, डैडी
1: मोपेट। जी
0: मोपेट डैडी ने 500 रुपये की या 450 रुपये की से मोपेट ली थी। तो मैं लिंकिंग रोड से मोपेट में जा रहा था,
1: अच्छा,
0: तो मेरे बाजू से एक गाड़ी निकली,
1: हाँ,
0: हेराल्ड गाड़ी थी, तो
1: हेराल्ड।
0: जोर से निकल गई, तो आगे जाके वो गाड़ी ने रोक दी। तो मैंने कहा, तो ऐसे बाहर निकले तो अन्ना,
1: गजब।
0: तो मुझे रोका। मैंने कहा, अन्ना आप कहाँ? मैंने तुमको देखा इसलिए मैंने गाड़ी रोक ली, तुम ये कहाँ बाइक में जा रहे? मैं कहता, अन्ना डैडी ने ली थी तो मैं ऐसे ही चला रहा था, उसके लिए लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ती थी उसको। मुझे आज भी याद है, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, उत्तम बहुत आगे जाओगे, ये जो आशीर्वाद है,
1: जी
0: ये जो प्यार है यूनुस जी, ये मांगने से नहीं मिलता।
1: क्या प्यारी बात है, वाह वाह वाह।
0: आशीर्वाद कभी भी मांग नहीं सकते आप,
1: जी, उसके
0: आशीर्वाद
1: काबिल
0: आपको
1: होना पड़ता
0: लेना
1: है।
0: पड़ता है,
1: जी
0: हासिल करना पड़ता है। और मुझे याद है कि मैं अन्ना की रिकॉर्डिंग में हमेशा लास्ट तक, मेरी बड़ी किस्मत रही है बहुत अच्छी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, खयाम साहब, श्री रामचंद्र साहब, एन दत्ता, उसके बाद में आपके आर डी बर्मन, एस डी बर्मन, नौशाद साहब, मैंने शुरू इनके साथ किया
1: जी
0: और इनके जाने तक मैं इनके साथ था।
1: क्या बात है।
0: ये कितनी खुशकिस्मत की बात है कि मैंने उनके साथ शुरू किया,
1: जी, और
0: लेकिन उनके
1: लगातार साथ रहा।
0: लगातार साथ रहा, जब तक वो नहीं गए,
1: जी
0: जब तक वो चले गए मैं उनके साथ।
1: जी जी जी
0: तो ये बहुत प्यार मिला सबका।

0: अच्छा मुझे ये बताएं कि बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की, पर पंचम की बात रह गई है, और पंचम के साथ आपका काम भी है और एक साथ भी तो रहा है
1: ऑलमोस्ट 25 साल
0: जी।

0: बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स की बात की, पर पंचम की बात रह गई है, और पंचम के साथ आपका काम भी है और एक साथ भी तो रहा है
1: ऑलमोस्ट 25 साल।
0: जी जी जी, जी। कुछ यादें बांटिए।
1: पंचम जी के साथ जहाँ काम शुरू किया, मुझे लगता है वो भूत बंगला का बैकग्राउंड था।
0: ओहो हो, वो तो बहुत ही करामत ही बैकग्राउंड है भाई।
1: हाँ, वो 65 का है शायद वो।
0: जी जी, महमूद की फिल्म।
1: तो वहाँ से मैंने एज ए म्यूजिशियन उनके साथ शुरू किया था। तो उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे मैं उनका सोलो वायलिनिस्ट हो गया।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: फिर उनकी वायलिन का जो सेक्शन है वो पूरा मैं लीडर था। पहले मैं बजाता था, मैं सेट करता था, फिर सब लोग बजाते थे। तो मरोड़ जी आके रिहर्सल करते थे 9:30 बजे। तो 9:15 बजे के करीब हम लोग सेट करते थे और चलता रहा, काम चलता रहा। लेकिन जब कुछ सोलो बजाना होता था तो उत्तम बजाएगा सोलो तो है, क्योंकि उनके पास सोलो इंस्ट्रूमेंट जैसे मैं हो गया, भूपेंद्र जी गिटार हो गए, शिव जी संतूर हो गए, उसके बाद में हरि जी फ्लूट हो गए,
0: मनोहरी दादा
1: की फ्लूट हो गए,
0: सेक्सोफोन
1: हो गए, चलो सोलो बजाना तो बसुदा हो गए। तो घर के रिदम में अगर कुछ सोलो बजाना है तो मारुति हो गया,
0: मारुति बजाते थे।
1: हाँ, और उनके मतलब ही हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। पंचम हैड ए क्रीम ऑफ म्यूजिशियन। तो मुझे किसी ने बोला कि क्या था, तो मैंने कहा जैसे अकबर के पास 9 रत्न थे
0: जी,
1: ऐसे आरडी बर्मन के पास भी 9 रत्न थे।
0: क्या बात है, क्या बात है।
1: और 9 रत्न कौन थे
0: जी?
1: मनोहरी जी
0: 1,
1: बासु जी
0: 2,
1: के भूपी जी
0: 3,
1: उसके बाद भानु,
0: हाँ
1: 4, मारुति
0: 5,
1: देवीचंद
0: 6,
1: अमृत
0: 7,
1: होमी मुल्ला
0: 8,
1: और 1 चंद्रकांत
0: 9। गजब गजब।
1: ये 9 लोग उनके घर में बैठे होते थे, काम करते थे।
0: ये सब हीरे थे, नगीने थे।
1: और इसमें कई लोग तो मतलब जब होमी है, ये चंद्रकांत है, ये इनका काम था इंस्ट्रूमेंट लेके जाना, रखना और इंस्ट्रूमेंट घर में लाना, ये भी उनका काम था। म्यूजिशियन भी थे और ये काम भी करते थे।
0: गजब गजब।
1: चंद्रकांत हो गया,
0: पूरी टोली का
1: काम था। और मतलब उनका काम जो मैंने कभी कभी, मैं तो ज्यादा आता नहीं था उनके रिहर्सल रूम में, लेकिन पंचम ने अगर कुछ गाया है
0: जी,
1: तो भूपी जी ने कुछ गा दिया, मारुति ने कुछ गा दिया, अपना मारुति ने कुछ बजा दिया, 15-20 मिनट के बाद गाना ओके हो गया, चलो चलते हैं,
0: वाह वाह वाह,
1: खाना खाते हैं।
0: ऐसी सुपर क्रिएटिव। शान फिल्म के गाने में यमा यमा में आपने जो वायलिन बजाया वो बहुत अलग है, उसके बारे में बताइए।
1: वो मुझे याद नहीं, लेकिन मतलब हम तो रोज ही बजाते रहते थे, बट ये पीस ऐसा था तो मैंने कहा इसको ऐसे करें, तो करते करते वो हमारा फिक्स हो गया म्यूजिक। और फिर वो गाना सुनिए, आपको बहुत मजा आया, बहुत बहुत खूबसूरत वायलिन है उसके अंदर।
0: क्या बात है,
1: बहुत उतार चढ़ाव है उसके अंदर, और इसको इजिप्शियन स्टाइल बोलते हैं।
0: जी जी,
1: तो सुन लीजिए आप
0: जरूर।

0: सर, इतने सारे गानों की बातें हुई, पंचम के साथ कुछ और याद हमारे साथ बांटना चाहें आप?
1: पंचम जी के साथ यादें तो बहुत सारी हैं, बट ऐसा है, एक बार मैं पंचम के साथ नाराज हो गया था।
0: अरे
1: वो क्या हुआ कि एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो केबीएन एक सेंटेंस आ गया था, मैं केबीएन, केबीएन का मतलब कोई बात नहीं होता ना, अरे केबीएन कोई बात नहीं हो गया कोई बात। तो ऐसे काफी दिनों से केबीएन चल रहा था
0: जी,
1: तो हम लोग भी अच्छा लगा कि आशा जी ने गलती कर दी केबीएन, उन्होंने गलती कर दी केबीएन, एक तीसरे ने गलती कर दी केबीएन, कोरस ने गलती कर दी केबीएन। तो ये केबीएन कुछ चार पांच महीने से चल रहा,
0: एक जुमला बन गया था,
1: एक जुमला बन गया था। तो अभी एक रिकॉर्डिंग चल रही थी तो एक पीछे से कि वायलिन वाले की गलती हो गई और उसको कट करना पड़ा। तो पंचम नाराज हो गया,

0: ही स्टार्टेड शाउटिंग। काम नहीं करते ध्यान से, ध्यान कहाँ रहता है, ये होता है वो होता है, इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग जा रही थी, ये हो गया वो हो गया, चलो टेक करते हैं, अभी गलती मत करना। सब साइलेंट हुआ तो मैं खड़ा हो गया। पंच जी, मैं पिछले 6 महीने से सुन रहा हूँ KVN, आशा जी की गलती हुई थी KVN, भूपे जी की गलती हुई थी KVN, इनकी गलती, एक वायलिन वाले ने गलती कर दी तो आप इतना शाउट कर दे, व्हाट इज दिस। अरे उत्तम, आई एम सॉरी। उस आदमी का एक कमाल था, उस आदमी में कहीं ईगो नहीं था।
1: क्या बात है,
0: ही इज लाइक अ फ्रेंड एंड आई एम सॉरी उत्तम, आई एम सॉरी।
1: वाह।
0: फिर मैंने कहा KVN। सब लोग, सब म्यूजिशियन हंस पड़े, वायलिन वाले भी हंस पड़े कि वायलिन में कोई बोला तो सही, क्योंकि ऑर्केस्ट्रा में किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती।
1: जी जी जी।
0: तो ये सोलोस जो है वो तो है। अरे एक बेचारे से किसी से गलती हो गई तो एकदम शुरू हो गया। तो ये किस्सा, फिर एक बार ना पंचम क्या क्या था, पंचम का क्रिएटिविटी बहुत थी।
1: जी जी। आपको कुछ पीसेस याद आते हैं?
0: पीस तो वैसे बहुत सारे मैंने ठीक करवाए जो भी है, लेकिन आपका एक बहुत, आपकी एक फिल्म है सागर।
1: हाँ।
0: तो सागर में बहुत बड़ा पीस था,
1: जलपरी वाला
0: वायलिन सोलो का पीस था।
1: अच्छा,
0: सागर फिल्म।
1: जी।
0: तो जो वो कमलासन बजाता है।
1: अच्छा अच्छा, वो। जी।
0: तो मुझे आके बोला गया कि इतना बड़ा पीस है, ऐसे ऐसे है, ये है, और वो बजाते बजाते तार टूट जाती है।
1: हाँ।
0: ये हमको पिक्चर में दिखाना है।
1: जी जी जी।
0: मैं बड़ा परेशान हो गया, पहले तो पूरा पीस बनाया, पीस वहीं बैठ के कंपोज किया, ऐसे बजेगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ये चलो मेरा पीस कंपोज हो गया, अभी तार टूटे कैसे,
1: तो तोड़ना पड़ेगा सचमुच।
0: टूटेगी नहीं ना ऐसे, तार ऐसे नहीं टूटते।
1: जी।
0: इतना भी मारोगे टूटेगी, जब कभी कभी टूट जाती है।
1: हाँ।
0: ऐसे नहीं टूटते। फिर मैंने, अभी वो वायलिनिस्ट नहीं है, किशोर सिंह करके एक बहुत अच्छा वायलिनिस्ट थे।
1: जी जी।
0: उनको बुलाया, जैसे वो चैम्बर है ना, मैं वहाँ खड़ा होकर गया, जिस उस चैम्बर में लता जी, आशा जी वगैरह सब वहाँ उसी चैम्बर, तो उस चैम्बर में मेरे को जगह दी गई, ये उत्तम ये यहाँ से बजाओ, क्योंकि बाहर से उनको हॉल में नॉइस। तो ठीक है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा किशोर जब मैं पूरा पीस बजाऊंगा तो मैं तुमको साइन दूंगा, मैं ऐसे करूंगा तो तू टंक करके साइन दे, जैसे ये ऐसे
1: स्नैप आ जाए,
0: तू हाथ से करना।
1: जी।
0: जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, जैसे ये वायलिन है
1: जी,
0: अभी ए,
1: हाँ,
0: ये साउंड है
1: जी,
0: ये चाहिए, तार टूट गई।
1: हाँ।
0: तो की 2-3 रिहर्सल की, जब वो किशोर पूरा समझ गया तो रिकॉर्डिंग की, तो फिल्म में दिखाया कि उन्होंने तार टूटी है।
1: हाँ।
0: लेकिन वो हाथ से किया हुआ है।
1: वो पीस आप बजाएंगे हमारे लिए?
0: नहीं नहीं, वो पीस अब नहीं बज सकता।

0: एक दिन कुछ पता नहीं अजीब सा गाना लेके आया।
1: हाँ हाँ,
0: हम लोगों ने बजाया, मैं कहा यार क्या बात है। तो मैं वेट कर रहा था पंचम के, पंचम आए तो मैं पूछूं, तो पंचम जी आए तो मैं कहा पंचम दा ये कहाँ से लाते हो रोज रोज यार। बोलता है उत्तम हो जाता है यार, काम करते रहते ना हो जाता है। वो जो हो जाता है ये बात जो है ना, ये जब मैं डायरेक्टर बना तब मुझे समझ में आया, वो
1: काम करते रहने से हो जाता है। ये जो अजीब सा गाना था ये कौन सा था?
0: नहीं याद नहीं,
1: वो याद नहीं। अच्छा।

शब्दों की। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं संगीतकार उत्तम सिंह से यूनुस खान की बातचीत पर आधारित ये लंबी श्रृंखला। आज आपने सुना इस श्रृंखला का तीसरा भाग। रिकॉर्डिंग इंजीनियर समृद्धि नाइक और एचआर पाटले, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उन

0: विविध भारती मुंबई से अभी आप सुन रहे थे पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के। हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर।
1: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
2: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
1: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
2: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
1: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
2: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ Sector 34D या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
2: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़।

इस समय आप हैं विविध भारती चंडीगढ़ के संग। श्रोताओं, कुछ ही पलों में शाम के 5 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। श्री राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के 58वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है।
1: So the significance of this great journey becomes even more apparent when we look at India of today. Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile five economy, we become the

0: fourth largest economy, and I'm sure soon we are going to be the third largest economy of the world.
1: श्री राधाकृष्णन ने कहा कि देश में बेहतर कंपनी सुशासन को बढ़ावा देने में संस्थान का योगदान सराहनीय रहा है और इसने सतत विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा. शिक्षा मंत्रालय ने शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन के लिए 5 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है. ये उत्कृष्टता केंद्र असम के तेजपुर विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल के विश्व भारती विश्वविद्यालय, पुणे के स्नातकोत्तर डेक्कन कॉलेज और अनुसंधान संस्थान तथा ओडिशा और गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित किए जाएंगे. सरकार की इस पहल से भारत की शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन, शोध और संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा. पीएम सेतु योजना का आज 1 वर्ष पूरा हो गया है. इस योजना के अंतर्गत उन्नत आईटीआई के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना बढ़ाई जाती है. कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की ये योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी. इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी को मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था को बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है. तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज समाप्त हो जाएगा. इन 6 सीटों पर मंगलवार को मतदान होगा, जबकि मतगणना शुक्रवार को की जाएगी. तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थत्तन चावड़ी और पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं. असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी मतदान होगा. विधानसभा सीटें मौजूदा विधायकों के इस्तीफे के कारण खाली हुई हैं, जबकि कांग्रेस नेता प्रद्युत बरदोलोई के इस्तीफे के बाद नौगांव लोकसभा सीट रिक्त हुई है. कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे. इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सिटीजन पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा. ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अमेरिका के साथ टकराव का कोई सैन्य या प्रतिबंधों पर आधारित समाधान नहीं है. उन्होंने कहा कि तनाव खत्म करने का एकमात्र तरीका कूटनीति है. आज तेहरान में विभिन्न देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के राजदूतों और प्रतिनिधियों से बातचीत में श्री अराक्ची ने उम्मीद प्रकट की है कि अमरीका समझदारी और तर्कसंगत ढंग से काम लेगा. इस बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध बहुत जल्दी ही समाप्त हो जाएगा. उन्होंने आशा प्रकट की है कि टकराव खत्म होने के बाद तेल की कीमतों में भारी गिरावट आएगी. यमन की सेना ने दावा किया है कि देश के कुछ अहम मोर्चों पर हूती लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचा है. वहीं सऊदी अरब ने हूतियों के इस दावे को खारिज किया है कि रियाद को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया गया था. यमन ने सना और सादा में हूती नियंत्रित इलाकों पर हमलों की पुष्टि की है. एशियाई खेल 2026 का जापान के नगोया में आधिकारिक समापन हो गया. इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज वर्ष 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए. समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू डांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया. भारत ने एशियाई खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ पदक तालिका में 4th स्थान हासिल किया. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र. अब आप सुनेंगे फिल्म संगीत.

फिल्म संगीत के इस प्रोग्राम में पहला गीत हम अरमान फिल्म से सुनवा रहे हैं, जिसमें आवाजें दी हैं सोनू निगम और सुनिधि चौहान ने, बोल जावेद अख्तर के हैं और संगीत से सजाया

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म आराधना का ये गीत। बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत से सजाया है।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम सुनेंगे हाथी मेरे साथी फिल्म में से ये गीत, जिसमें आवाज़ें दी हैं किशोर कुमार ने और लता मंगेशकर ने, संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब समाप्त होता है। FM 107.2 MHz पर यह आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र। अब प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे।

Hello dear friends, welcome to Lamhe program with me your RJ Chetan. माता पिता और बच्चों का रिश्ता जब पारिवारिक जीवन की बात आती है तो हर कोई ये जानने का प्रयास करता है कि माता पिता और बच्चों के बीच का संबंध कैसे आदर्श बन सकता है। पॉजिटिव सकारात्मक पेरेंटिंग तकनीक बच्चों को अच्छे नैतिक मूल्य और नीति नियम के साथ उनका विकास हो सकता है, इस तरह से काम करती है और हर माता पिता का भी यही सपना रहता है। हालांकि ये उपलब्धि इतनी आसान नहीं है और ये जानना महत्वपूर्ण है कि माता पिता के उनके बच्चों के बीच का संबंध दो तरफा सड़क की तरह है। दूसरे शब्दों में ये वास्तव में एक माता पिता और उनके बच्चों के बीच एक साझेदारी है। जैसे विविध रंगों वाले फूलों से एक बगीचा सुंदर दिखाई देता है, इसी तरह

अगर माता पिता सिखाते हैं कि कैसे एक मालिक की तरह अपने बच्चे के व्यक्तित्व को पहचाने और उसे पोषण देने में सक्षम बने, तो उनका गार्डन सुगंधित हो जाएगा। ये सभी पॉजिटिव पेरेंटिंग की ओर निर्देश करते हैं। जब माता पिता प्रभावी पेरेंटिंग का कौशल विकसित करते हैं, तो वे पीढ़ी अंतराल यानी जेनरेशन गैप को मिटाने के सक्षम होते हैं। जब पेरेंट्स इस बात को समझने लगते हैं किन चीजों में मर्यादा रखी जाए, कहां प्रोत्साहित किया जाए और कहां अंकुश रखा जाए, तो उनके बच्चे बिगड़ेंगे नहीं। इस तरह वे अच्छे माता पिता बन सकते हैं। जब लोग ये नहीं जानते कि एक अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, तो दोनों के बीच दूरियां विकसित होती है। सच्ची समझ के साथ युवा वर्ग भी अपने माता पिता के साथ अपने रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं। आज के युवाओं को संपूर्ण समझ प्रदान करने के उद्देश्य के साथ बाल्य और किशोर अवस्था के दोनों वर्गों अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रगति कर सकते हैं। इस हेतु से शुद्ध प्रेम और समता के साथ उनका कैसे विकास किया जाए, ये मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। नैतिक मूल्यों, अच्छे शिष्टाचार और पॉजिटिव पेरेंटिंग संबंधित उन्होंने उत्कृष्ट समाधान दिए हैं, जो युवावस्था के दौरान भी काम आते हैं। सभी पेरेंट्स के लिए आज के समय अनुसार गाइडेंस, अपने बच्चों की संभाल कैसे करें, माता पिता और बच्चों का संबंध कैसा होना चाहिए, आज इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि बच्चे और माता पिता के बीच रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। अगर आप भी इस बारे में जानना चाहते हैं, तो सुनते रहिए लम्हे प्रोग्राम आरजे चेतन के साथ। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। हेल्थी रिलेशनशिप से बनेंगे बच्चों का हेल्थ। आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए, इसीलिए सबसे अच्छा स्कूल में भेजने की कोशिश करते हैं। वह ये उम्मीद करते हैं कि बच्चा स्कूल से ज्ञान के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी सीखेंगे। तो हाल ही में हुई एक रिसर्च की मानो तो बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण उसे अच्छे स्कूल में भेजने से ज्यादा जरूरी है। आमतौर पर सभी स्कूल एक जैसे होते हैं और अपने हर छात्र पर बराबर ध्यान देते हैं, लेकिन जिन बच्चों के माता पिता उनका होमवर्क करने में मदद करते हैं, पढ़ाई की अहमियत समझते हैं और बच्चों के सभी स्कूल इवेंट्स अटेंड करते हैं, उनके बच्चे दूसरों बच्चों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बच्चे और उनके पेरेंट्स के बीच का रिश्ता सबसे अच्छा और जरूरी बंधन है। ये रिश्ता बच्चों की पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार और पसंद की नींव डालती है। यही से उसका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का विकास होता है। जीवन में दूसरे लोगों से भी अपना रिश्ता अच्छा बनता है। मुश्किल परिस्थितियों में अपनी भावनाओं पर काबू रखना, बच्चे के मानसिक, भावनात्मक और भाषा का विकास होना, बच्चे का आशावादी और आत्मविश्वास से पूर्ण होना, बेहतर सोशल और एकेडमिक परफॉर्मेंस रहना। आप चाहे कितना भी बिजी हो, लेकिन अपने बच्चे के लिए समय जरूर निकाले। जैसे जैसे आपके बच्चे की उम्र बढ़े, तो आप अपने पेरेंटिंग स्टाइल को भी बदल दें। बच्चे की उम्र कुछ भी हो, उससे हमेशा प्यार से बात करें और गर्मजोशी दिखाए। उनको बातों बातों में प्यार से ये समझाए कि आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं और उन्हें आगे का रास्ता दिखाए। बच्चा जो कुछ भी कहे, उसे ध्यान से सुने और उसके प्रति हर परिस्थिति में हमदर्दी दिखाए। कोई भी समस्या हो, उसे हल करने में उसकी मदद करें। जब आप अपने बच्चों के साथ कोई भी समस्या को हल करेंगे, तो वह आपको देखकर सीखेंगे कि किसी भी मुश्किल हालात में कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने बच्चों की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देकर आप उसके करीब आ सकते हैं और उसके जीवन का सबसे अच्छा दोस्त बन सकते हैं। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता सबसे जरूरी है और अच्छा बंधन होता है। यह रिश्ता बच्चों के व्यवहार का पसंद और बच्चों की पर्सनैलिटी पर असर डालता है। यही से बच्चों का भावनात्मक स्वास्थ्य, शारीरिक और मानसिक विकास होता है। माँ बाप और बच्चों के बीच में अगर रिश्ते अच्छे हो तो इसके बहुत फायदे हो सकते हैं। अपने जीवन में दूसरे लोगों के साथ भी एक अच्छा रिश्ता बनाना, बच्चों का भावनात्मक, मानसिक और भाषा का विकास होना, बच्चों का आत्मविश्वास से परिपूर्ण होना और आशावादी होना, मुश्किल वक्त में और परिस्थिति में अपनी भावनाओं पर काबू रख पाना, बेहतर एकेडमिक और सोशल स्किल्स होना। तो दोस्तों, ये थी बेस्ट पेरेंटिंग के कुछ असर अपने बच्चों पर। होप दिस इन्फॉर्मेशन वॉज वेरी यूजफुल टू ऑल दोस पेरेंट्स। विद दिस वी कंक्लूड टुडेज प्रोग्राम ऑफ लम्हे। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी आरजे चेतन से। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। दिस प्रोग्राम इज प्रोड्यूस्ड एंड स्पॉन्सर्ड बाई एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे। इस समय आप हैं विविध भारती चंडीगढ़ के संग FM 107.2 MHz पर।
1: जिंदगी के सफर में आपका सच्चा हम सफर FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़।
0: मैदानों से लेकर पहाड़ों की हरी भरी वादियों तक,
1: घर घर जन जन तक चंडीगढ़ के साथ साथ देश के 5 राज्यों तक पहुंचने वाला चंडीगढ़ का एकमात्र रेडियो चैनल,
0: आपका अपना FM 107.2 आकाशवाणी चंडीगढ़,
1: जो चंडीगढ़ के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यूपी और उत्तराखंड में बनाए आपके प्रोडक्ट्स की खास पहचान।
0: मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और प्रसार भारती की लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए आपके बिजनेस को दे ग्लोबल उड़ान।
2: ना वो अखियां रूहानी कहीं, ना वो चेहरा नूरानी कहीं,
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ दुनिया के हर कोने में पहुंचाए आपका ब्रांड।
2: जग घूमे आधार जैसा ना कोई।
0: तो देर क्यों जनाब, अपने कारोबार की एडवर्टाइजमेंट बुक करवाएं।
1: चले आएं आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें। हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846, चंडीगढ़ का STD कोड है 0172,
0: और हमारा ईमेल आईडी है akashwanichandigarh@gmail.com। शुभवाणी, लाभवाणी, आकाशवाणी चंडीगढ़।
3: हम आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से बोल रहे हैं FM 107.2 MHz पर। दोस्तों, आज है रविवार और इस समय हम हाजिर हुए हैं लेकर फिल्म संगीत डिस्को डांसर। आइए सुनते हैं इस फिल्म से ये गीत, जिसे आवाजें दी हैं उषा उत्थुप, बप्पी लहरी और साथियों ने। फारूक कैसर का लिखा ये गीत है और इस गीत को संगीतबद्ध किया है बप्पी लहरी ने।

याराना। आइए अब सुनते हैं इस फिल्म से किशोर कुमार और साथियों की आवाजों में ये गीत। इस गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत दिया है राजेश रोशन ने।

श्रोताओ, आकाशवाणी चंडीगढ़ से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत, और फिल्म संगीत का अगला गीत हमने लिया है फिल्म नमक हलाल से। गीत को लिखा है अनजान ने और संगीत है बप्पी लहरी का।

अपना देश फिल्म से अब आप सुनेंगे आनंद बख्शी का लिखा गीत, जिसे गाया है आशा भोसले और आर डी बर्मन ने, और संगीत भी दिया है आर डी बर्मन ने।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का अंतिम गीत। आनंद लीजिए इस गीत का और बने रहिए आकाशवाणी चंडीगढ़ के संग FM 107.2 MHz पर। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। इस समय आप हैं विविध भारती चंडीगढ़ के संग एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में शाम के 6 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी समाचार। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस

0: समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने की भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास में के युग में प्रवेश कर रहा है। नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने में सहयोग देगी। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर आज गुंटूर जिले में एक परियोजना का शुभारंभ किया। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश के लिए 3 लाख मकान स्वीकृत किए हैं और चल रहे निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले 3 लाख और मकान स्वीकृत करेगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता के अनुसार आगे के आवंटन पर विचार किया जाएगा। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्री जितेंद्र सिंह कल नई दिल्ली में 17वीं पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे। इस दौरान 80 वर्ष से अधिक उम्र के यानी सुपर सीनियर पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों की 897 दीर्घकालिक शिकायतों का समाधान किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि अब तक आयोजित पेंशन अदालतों में कुल 28,797 शिकायतों में से 20,676 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया है। समाधान की सफलता दर 71.79% है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थट्टनचावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से निर्देश दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों की मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते ए आकाशवाणी ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र।

0: राणा पाइल्स हॉस्पिटल। कॉल करें 9814128667 पर और पाइल्स से मुक्ति पाएं।
1: श्रोतिया हुण सुनदिया इजाजत फिल्म तो ये गीत आशा भोसले की आवाज, गुलजार ते बोल ते संगीत आर डी बर्मन दा।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ FM 107.2 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਤੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਕ ਸਮਾਚਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ 6:10 ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6:20 ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप पंकज धीमान से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार की मजबूती पर बल दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सिंगापुर की सनटेक सिटी की तर्ज पर गुरुग्राम में विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र विकसित किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना की। पीएम सेतु योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। योजना से कौशल विकास और रोजगार की भावना मजबूत हुई। एशियाई खेलों का जापान के नगोया में समापन। नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में 85 पदकों के साथ 4th स्थान हासिल करने पर भारतीय टीम को बधाई दी। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के संस्थानों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार की मजबूती से ही विकसित भारत का निर्माण होगा। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 58वें स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि निवेशकों का विश्वास हासिल करके ही देश प्रगति कर सकता है। उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और तेजी से हो रहे तकनीकी बदलावों के दौर में भी प्रवेश कर रहा है। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि संस्थान ने टिकाऊ विकास के क्षेत्र में वैश्विक मानक स्थापित किए हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संस्थान के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने सिंगापुर दौरे के दौरान सिंगापुर स्थित प्रसिद्ध सनटेक सिटी में उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने वहां संचालित सम्मेलन केंद्र की सुविधाओं, निर्माण की तकनीक तथा संचालन व्यवस्था की विस्तृत जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने सिंगापुर से मीडिया के नाम जारी एक बयान में कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा सिंगापुर की सनटेक सिटी की तर्ज पर गुरुग्राम में लगभग 25 एकड़ क्षेत्र में विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र विकसित किया जाएगा। सिंगापुर की सनटेक सिटी में विकसित सम्मेलन केंद्र में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण इस परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को समझने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुग्राम में प्रस्तावित सम्मेलन केंद्र अत्याधुनिक तकनीक से युक्त होगा ताकि यहां बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, व्यापारिक बैठकें, प्रदर्शनियां और वैश्विक स्तर के अन्य आयोजन आयोजित किए जा सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र के निर्माण से गुरुग्राम की अंतर्राष्ट्रीय पहचान और मजबूत होगी तथा राज्य में निवेश और व्यावसायिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि हरियाणा सरकार मानेसर में अत्याधुनिक से विकसित करने के साथ साथ एक बड़े और सुंदर पार्क का भी निर्माण करेगी। इससे क्षेत्र के समग्र विकास को गति मिलेगी और लोगों को बेहतर नागरिक सुविधाओं के साथ हरित एवं खुला वातावरण उपलब्ध होगा। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी अपनी राजनीतिक नाकामी छिपाने के लिए चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। आज भिवानी के बहल में वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री जयप्रकाश दलाल द्वारा आयोजित स्वागत एवं अभिनंदन समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस कभी वोट चोरी तो कभी ईवीएम का बहाना लेकर जनता के बीच आती है। डॉ. गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस वायनाड, केरल या कर्नाटक में चुनाव जीतती है तो ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया ठीक होती है, लेकिन हारते ही वोट चोरी और ईवीएम पर सवाल शुरू हो जाते हैं। लोकतंत्र में जनादेश को स्वीकार कर हार के वास्तविक कारणों का आत्ममंथन करना चाहिए। प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में भाजपा सरकार किसान, युवा, महिला, गरीब और मजदूर के सशक्तिकरण के लिए लगातार काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना और मृदा स्वास्थ्य जैसी योजनाओं से किसानों को सुरक्षा मिली है। पीएम कुसुम योजना के माध्यम से अन्नदाता किसान को ऊर्जादाता किसान बनाने की दिशा में काम हो रहा है। उन्होंने किसानों से एफपीओ के माध्यम से संगठित होकर आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने का भी आह्वान किया। डॉ. गुप्ता ने उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, मुद्रा योजना, पीएम आवास योजना, हर घर नल से जल और घर घर शौचालय जैसी योजनाओं को महिला सशक्तिकरण और सामाजिक बदलाव का आधार बताया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल के क्षेत्र में विकास में योगदान की भी सराहना की। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। यह समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना के अंतर्गत उन्नत ITI के माध्यम से कौशल विकास और रोजगार की संभावना मजबूत हुई है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह योजना पिछले वर्ष आज ही के दिन शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य शासन में उद्योग की भागीदारी मजबूत करना, प्रशिक्षण व्यवस्था बेहतर बनाना और रोजगार की बदलती जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना है। एशियाई खेलों का जापान के नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2030 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने खेलों में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक सहित 85 पदक के साथ तालिका में चौथा स्थान हासिल किया। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में 85 पदकों के साथ चौथा स्थान

हासिल करने पर भारतीय टीम को बधाई दी है। भारत ने प्रतियोगिता में 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य पदक जीते। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने पदक विजेताओं, खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, सहयोगी स्टाफ, अधिकारियों और पूरे भारतीय दल के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने कहा कि खिलाड़ियों का यह प्रदर्शन खेल जगत में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और निरंतर उत्कृष्टता को दर्शाता है। श्री राधाकृष्णन ने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी आगे भी जीत का सिलसिला जारी रखेंगे और तिरंगे का गौरव बढ़ाएंगे। विश्व शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में आज भिवानी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस बार केवल उत्कृष्ट शिक्षकों को ही नहीं बल्कि समाज के प्रति निस्वार्थ भाव से समर्पित 133 प्रमुख समाज सेवियों को भी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भिवानी महेंद्रगढ़ से लोकसभा सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एक शिक्षक न केवल राष्ट्र का निर्माता होता है बल्कि वह आने वाली पीढ़ियों के चरित्र का निर्माण भी करता है। ऐसे मंचों के माध्यम से जब शिक्षकों और समर्पित समाज सेवियों को सम्मानित किया जाता है तो इससे समाज में सकारात्मकता और जनसेवा की भावना को बल मिलता है। इस मौके पर हरियाणा महिला आयोग की उपाध्यक्ष मीना परमार ने कहा कि भिवानी की धरती हमेशा से ही धर्म, शिक्षा और सामाजिक समरसता की प्रतीक रही है। इस प्रकार के भव्य राष्ट्रीय आयोजनों से क्षेत्र का नाम रोशन होता है और युवाओं को समाज हित में कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आज पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडोर स्टेडियम में हरियाणा हरित ऊर्जा रोड शो का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने किया और हरियाणा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी सहित विभिन्न कंपनियों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। खेल राज्य मंत्री गौरव गौतम ने कहा कि हरियाणा का सबसे बड़ा हरित ऊर्जा अभियान है जिसे राज्य में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ ऊर्जा और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प तथा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा को हरित और सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा से जहां बिजली की बचत होगी वहीं युवाओं को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। उन्होंने कहा कि सौर ऊर्जा के प्रति युवाओं को रुझान लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने आमजन से सौर ऊर्जा अपनाने और ऊर्जा की बचत करने की अपील की। मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के संसाधनों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा नवाचार की मजबूती पर बल दिया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, सिंगापुर की सनटेक सिटी की तर्ज पर गुरुग्राम में विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्र विकसित किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी की आलोचना की। पीएम सेतु योजना का आज एक वर्ष पूरा हुआ। योजना से कौशल विकास और रोजगार की भावना मजबूत हुई। एशियाई खेलों में जापान के नोगोया में आज समापन हुआ। नीरू ढांडा ने ध्वजवाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

नमस्कार, ए आकाशवाणी है। हुण तुसी सरबजीत कौर तो खबरां सुनो। पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। उपराष्ट्रपति सी पी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत तेजी नाल तब्दीली दे युग विच दाखल हो रहा है। राजपुरा स्थित चितकारा यूनिवर्सिटी विखे हाल ही विच होई गड़बड़ी की घटना के संबंध में पटियाला पुलिस वालों फतेहाबाद तो एक होर मुलजम गिरफ्तार। अमृतसर देहाती पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके एक गैर कानूनी हथियारों से धमाका खेज सप्लाई नैटवर्क को तबाह कर दिता है। हवाई फौज ने आज चंडीगढ़ समेत देश के कई शहरों में सिख इंडियन एयरफोर्स मैराथन कराई। 2026 एशियाई खेडा जापान के नागोआ में अधिकारित तौर पर समाप्त हो गया। उपराष्ट्रपति सी पी राधा कृष्णन ने कहा है कि एक विकसित भारत का निर्माण देश दियां संस्थावां सूखम छोटे ते दरमियाने उद्यमां ते स्टार्टअप्स की ताकत नाल ही होएगा। नवी दिल्ली विच इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सैक्रेटरीज ऑफ इंडिया के 58वें स्थापना दिवस समारोह विच बोलते

0: थॉमस एयर अफसर कमांडिंग इन चीफ पश्चिमी हवाई कमान ने मुख्य मेहमान वजो इस समागम में शिरकत की थी। मैराथन ने फौजी नागरिक तालमेल मजबूत किया और फिट इंडिया मुहिम में योगदान पाया। जिक्र योग्य है कि फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखो भारतीय हवाई फौज के इको एक परमवीर चक्र जेतू ने। पंजाब सरकार वालों श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पुरब न समर्पित सूबे के वख-वख हिस्सों में विशेष रोड शो कराए जा रहे हैं। इस लड़ी तहत जिला अमृतसर के वख-वख विधानसभा हलके में रोड शो होंगे ते पहला रोड शो बल्कि 5 अक्टूबर को बाबा बकाला साहब विखे कराया जाएगा। 2026 एशियाई खेडा जापान के नगोआ में अधिकारित तौर पर समाप्त हो गई ने। खेडा की मशाल और झंडा 2030 एशियाई खेडा के मेजबान कतर को सौंपे गए। दो सोने के और एक चांदी का तमगा जितने वाले भारत के औरत निशानेबाज नीरू टांडा ने समाप्ति समारोह में भारतीय दल के झंडा बरदार वजों अगवाई की थी। भारत 21 सोने के 27 चांदी के और 37 कांसी के तमगा समेत कुल 85 तमगों नाल सूची में चौथे स्थान पर रहा। आखिर च खास खबर। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने किया है कि भारत तेजी नाल तकनीकी तब्दीली दे युग विच दाखल हो रहा है। राजपुरा स्थित चतकारा यूनिवर्सिटी विखे हाल ही विच हुई गड़बड़ी की घटना के संबंध में पटियाला पुलिस वालों फतेहाबाद तो एक होर मुलजिम गिरफ्तार। अमृतसर देहाती पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके गैर कानूनी हथियार से धमाका के सप्लाई नैटवर्क को तबाह कर दिता है। हवाई फौज ने अच्छ चंडीगढ़ समेत देश के कई शहरों में सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन कराई। इस दौरान ही साडा यह बुलेटिन खत्म होंगे। नमस्कार।
1: ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RBLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
2: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
3: पापा दी उम्र पर दी कमाई उना दी सिख्या
4: अते हमेशा साडी फिकर करना। वैसे उना दी एक जमा पूंजी बैंक विच भी है
3: पर क्लेम करना मुश्किल होवेगा।
4: हुण होर भी आसान हो गया है। बैंक दी वेबसाइट जा शाखा ते जाओ, क्लेम फॉर्म भरो, दस्तावेज जमा करो, 15 दिना च रकम प्राप्त करो अते नॉमिनी नाल क्लेम दा निपटारा होवे होर भी आसान।
5: RBI कहिंदा है
4: जानकार बनो सचेत रहो।
6: टिंकू जी 100 ग्राम पेड़े दियो।
7: 250 ग्राम तो कट नहीं मिलेगा।
6: ओए क्यों,
7: मिनिमम तो लेना पड़ेगा ना।
6: ओ भाई आजकल तो बैंक अकाउंट भी मिनिमम बैलेंस नहीं मांगता।
8: बैंक अकाउंट बिना मिनिमम?
6: हाँ, बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट। इस विच नो मिनिमम बैलेंस पर फायदे काफी सारे। ATM कम डेबिट कार्ड, मोबाइल ते इंटरनेट बैंकिंग, पासबुक चेकबुक सब मिलेगा, वो भी बिना किसी चार्ज तो।
7: दे भाई RBI कहता है BSBD अकाउंट मिनिमम बैलेंस नहीं मैक्सिमम फायदे सही।
9: FM 107.2 MHz से विविध भारती का चंडीगढ़ केंद्र है। स्रोते आओ हुण सरवण करदे आं प्रोग्राम अमृत बाणी दे तहत कुछ शब्द। भाई अवतार सिंह रागी दी आवाज़ विच सब तो पहला असी सरवण करांगे ये शब्द।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
3: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश, या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
4: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
5: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
4: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
5: HIV
4: नहीं पता ना, समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
6: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
7: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
8: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
7: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
8: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें, और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें, ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
7: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
9: आओ हुण सुनदे हां विविध भारती दे मुंबई केंद्र तों प्रोग्राम विशेष जयमाला।

भारतीय सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से अलंकृत एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर, जिनका जन्म महाराष्ट्र के मुंबई शहर में हुआ 14 अगस्त सन 1920 को, और साथियों 30 नवंबर सन 1940 को आप रॉयल इंडियन एयरफोर्स में एक्टिंग पायलट ऑफिसर की रैंक पर कमीशन्ड हुए और भारतीय वायुसेना में 38 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी, जिसमें 1941 में दुश्मन सेना से बड़ी ही चतुराई और कुशलता से साहस के साथ जंग में लड़ते रहे एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर।

हमारे भारत देश के वीर जांबाज सपूतों की अनगिनत शौर्य गाथाएं हैं जो रोंगटे खड़े कर देती हैं, आंखें नम कर देती हैं और हम सबके दिलों में देशभक्ति की लौ जला देती हैं। एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर ने पहले स्वतंत्रता दिवस और पहले गणतंत्र दिवस के मौके पर वायुसेना की परेड का नेतृत्व किया था। ऋषिकेश मूलगांवकर उत्सुक पायलटों में से एक थे। बर्मा के मोर्चे पर कार्रवाई के दौरान उन्होंने कुल 280 घंटे, जी हां साथियों, 280 घंटे की परिचालन उड़ान की, जिसमें बमबारी, रॉकेटिंग और बंदूकधारियां शामिल थीं। जांबाज, साहसी, कुशल नेतृत्व वाले ऋषिकेश मूलगांवकर अद्भुत प्रतिभा के धनी थे।

सितंबर 1948 के अंत में कश्मीर ऑपरेशन के दौरान एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मुलगांवकर ने नंबर वन ऑपरेशन विंग के कमांडिंग ऑफिसर के रूप में पदभार ग्रहण किया और ज़ोज़िला युद्ध के दौरान उनके अदम्य साहस, परम योगदान, असाधारण वीरता और कुशलतम नेतृत्व के लिए भारतीय सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से उन्हें विभूषित किया गया।

श्रोताओ, विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आज आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद।

अंतराल के बाद आप सभी का फिर से स्वागत। विशेष जयमाला कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर की शौर्य गाथा।

1951 में एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मुलगांवकर ग्रुप कैप्टन के रैंक में ऑपरेशंस के निदेशक थे। वो अरागन विमान के मूल्यांकन के लिए फ्रांस में थे और उन्होंने फ्रांस से सभी तरह के रास्ते में भारत के 4 अवार्ड सेनानियों की पहली उड़ान का नेतृत्व किया। भारतीय वायुसेना की दूसरी पीढ़ी के लड़ाकू विमान उड़ाने के प्रशिक्षण के लिए आप फ्रांस और ब्रिटेन गए। आप 1954 में मिग विमान उड़ाने वाले पहले पायलट बने। सन 1957 में उन्हें पालम के लिए स्टेशन कमांडर के रूप में मिला, जिसके बाद उनके पास नंबर 7 के नक्षत्र और नंबर 10 स्क्वाड्रन थे। बाद में सन 1965 के युद्ध के दौरान वो नागपुर के लिए बेस कमांडर थे। आपने हमेशा अपनी उड़ान की स्थिति बनाए रखी। यकीनन देश के इन जांबाज वीर सपूतों को देश कोटि कोटि नमन करता है।

0: श्रोताओ, विशेष जयमाला कार्यक्रम की इस कड़ी में आज आप सुन रहे हैं भारतीय सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर की शौर्य गाथा। कार्यक्रम का शेष भाग इस अंतराल के बाद।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने।
2: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
3: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जा नहीं कीता।
2: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
3: HIV
2: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
5: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
6: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
5: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
6: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
5: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
7: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।

0: 1 फरवरी सन 1976 को उन्होंने भारतीय वायुसेना के वायुसेनाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। उनकी प्रमुख उपलब्धियों में थी उड़ान सुरक्षा, जहां एक ओर उन्होंने उपायों को लागू किया तो साथ ही दुर्घटना दरों को नीचे भी लाए। ये अप्रतिम शौर्य, देशभक्ति, हौसला और जज्बा हमारे देश के वीर जवानों की रग रग में है।
1: अरे हम पंछी एक डाल के

0: संग संग डोले जे संग संग डोले, हम पंछी एक डाल के एक डाल के।
1: 31 अगस्त सन 1978 को सेवानिवृत्त होकर महाराष्ट्र के पुणे शहर में बस गए एयर चीफ मार्शल

ऋषिकेश मूलगांवकर। 95 वर्ष की आयु में एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर ने अंतिम सांस ली। भारत के इन जांबाज अप्रतिम प्रतिभा के धनी वीरों को ये देश सैल्यूट करता है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों।
1: FM 107.2 MHz से ए आकाशवाणी दा चंडीगढ़ केंद्र है।
2: क्या आप बेचना चाहते हैं अपना प्लॉट, मकान, पुरानी गाड़ी या घरेलू सामान?
3: क्या आप ढूंढ रहे हैं जीवन साथी, या फिर आप देना चाहते हैं जन्मदिन, मैरिज एनिवर्सरी, गृह प्रवेश या किसी विशेष अवसर की शुभकामनाएं?
2: अब आपकी हर छोटी बड़ी सूचना पहुंचेगी लाखों लोगों तक आकाशवाणी चंडीगढ़ के क्लासिफाइड विज्ञापनों से।
3: दुकान, बिजनेस, स्कूल या हॉस्पिटल के उद्घाटन की घोषणा हो, प्रवेश सूचना, टेंडर नोटिस, स्कूल एडमिशन्स या सांस्कृतिक, साहित्यिक और खेल आयोजनों की जानकारी, सब कुछ आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित करवाएं आसान और किफायती दरों पर।
2: 15 शब्दों में दें अपना क्लासिफाइड विज्ञापन, अतिरिक्त शब्दों की भी सुविधा उपलब्ध।
3: अधिक जानकारी और बुकिंग के लिए संपर्क करें
2: आकाशवाणी चंडीगढ़ सेक्टर 34D, या हमें फोन करें, हमारा टेलीफोन नंबर है 2601846।
3: कम खर्च, बड़ी पहुंच,
2: आकाशवाणी चंडीगढ़।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो सुनो हुन मुख प्रदेशक खबरां। उप राष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने विकसित भारत के निर्माण लई देश दे संस्थाना सूखम छोटे अते दरमियाने उद्यमां नूं मजबूत करन अते नवीनता दी लोड़ ते जोर दिता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम विच सिंगापुर दे सेंटेक सिटी दे मॉडल ते एक विशेष पदरी कन्वेंशन सेंटर विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार मानेसर नूं अत आधुनिक तकनीक नाल विकसित करेगी अते एक वड्डा अते सुंदर पार्क भी बनाएगी। भाजपा दे सूबा प्रधान डॉक्टर अर्चना गुप्त ने चोन कमीशन ते वोट चोरी दा इल्जाम लाउण लई कांग्रेस दे राहुल गांधी दी आलोचना कीती। प्रधानमंत्री सेतु योजना दा अज एक साल पूरा होया। इस योजना ने हुनर विकसित अते रोज़गार दे मौक्यां नूं मजबूत कीता। एशियाई खेडां जापान दे नोगाया विच समाप्त होईयां। नीरू टांडा ने झंडा तारक वजों भारतीय दल दी अगवाई कीती। उप राष्ट्रपति CP राजा कृष्णन ने भारतीय दी टीम नूं एशियाई खेडां विच 85 तगमियां नाल चौथा स्थान हासिल करन लई वधाई दित्ती। अज भारतीय हॉकी टीम दी खिडारन अते एशियन खेडां दी सोन तगमा जेतू इशिका सबरवाल दा भवानी विच सोन तगमा जेतू कबड्डी टीम दे कप्तान सुनील मलिक दा करनाल विच अते सोन तगमा जेतू मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा दा रोहतक विच शानदार स्वागत कीता गया। साफ अते नवीनयोग ऊर्जा नूं उत्साहित करन लई अज पलवल दे नेता जी सुभाष चंद्र बोस इनडोर स्टेडियम दे विच हरियाणा ग्रीन एनर्जी रोड शो दा आयोजन कीता गया। ए सन मुख प्रदेशक खबरां। आओ स्रोते हुण कुछ सुनदे हां पंजाबी गीत।
4: ए गीत जुड़िया है घरों बाहर रहिंदे एक आम इंसान दे नाल, ओदे बचपन नाल, ओदी मां नाल, भैण नाल, नानी नाल, ते ओदियां बचपन दियां खेडां जिवें आटे दी चिड़ी, ते हुण जदों बाहर आ गया कल्ला आटा गुन्नदा ते याद करदा उस आटे दी चिड़ी नूं जिहड़ी कदे उहदी मां बना के दिंदी सी।
5: मां ने कदे ना खाली मोड़ी जो भी मंग सी।
1: इह गीत तुसीं सुन रहे हो शहरी मान दी आवाज़ दे विच।

श्रोताओं, आज के विशेष जयमाला कार्यक्रम में आपने सुनी भारतीय सेना के द्वितीय सर्वोच्च सैन्य सम्मान महावीर चक्र से विभूषित एयर चीफ मार्शल ऋषिकेश मूलगांवकर की शौर्य गाथा। शोध, आलेख, स्वर शेफाली कपूर, प्रस्तुति सहयोगी आकांक्षा सिंह और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता कल्पना शेट्टी। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।

हुणे तुसी सुन रहे सी कुछ पंजाबी गीत। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 मेगाहर्ट्ज़ से। अगला प्रोग्राम है हवा महल, जो कि विविध भारती दे मुंबई केंद्र तो रिले किया जाएगा।

0: हवा महल कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है कामना चंद्रा की लिखी नाटिका परिवर्तन का पहला भाग। प्रस्तुत करता है अनुराधा शर्मा।
1: शहर के बाहर एक आश्रम है जहां पंडित सर्वदानंद जी का निवास स्थान है। सर्वदानंद शहर के जाने माने पंडित और ज्योतिष विद्या के प्रकांड ज्ञानी के रूप में मशहूर हैं। उनके पास रात दिन लोगों का तांता लगा रहता है। एक से बढ़कर एक रईस अपना भविष्य पूछने उनके पास आते हैं, इसीलिए धन बटोरना उनका स्वभाव बन गया है और उसे अपने मजबूत सेफ में बंद करके रखना एक जबरदस्त शौक। सुबह का वक्त है, भक्तों की भीड़ लगी है।
2: भर्गो देवस्य धीमहि धियो प्रचोदयात्।
3: देखिए पंडित जी अभी देवी पूजा में हैं, आप लोग शांति से बैठिए। आप लोग इतना शोर करेंगे तो पूजा में विघ्न। आप लोगों का भविष्य बताना है कोई हंसी मजाक की बात नहीं है, जबरदस्त ध्यान योग की आवश्यकता होती है। थोड़ी देर सब्र रखिए, लीजिए।
4: आयुष्मान भाव, आयुष्मान भाव, प्रसन्न रहो। मुझे दुख है कुछ देर हो गई है, परंतु देवी पूजन बड़ा कठिन कार्य है, मन को

0: पूरी तरह एकाग्र करके सहस्त्र जाप करना पड़ता है। तब कहीं जाकर देवी माँ प्रसन्न होती हैं। और जब तक देवी माँ का आशीर्वाद नहीं मिलता, मैं भला भविष्य कैसे बता सकता हूं।
1: धन्य हो महाराज, आप हमारे लिए कितना कष्ट उठाते हैं। जो है सो महाराज, आज हमारे टेंडर खुलने वाले हैं, अगर ये कंट्रैक्ट मिल गया तो वारे लारे हो जाएंगे। आप अभी देवी पूजा से निकले हैं, पहले मेरा भविष्य बता दीजिए ना प्रभु।
2: अरे भाई कमाल करते हैं आप, हैं? आए हैं सबसे पीछे और भविष्य सबसे पहले जानना चाहते हैं। अरे इस देश में क्यू या डिसिप्लिन नाम की कोई चीज है या नहीं?
3: लेकिन आप लोगों के राज में इसकी उम्मीद करना महज बेवकूफी है।
0: राम राम राम राम, शांत रहिए आप लोग। देखिए ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए।
3: वाह वाह वाह वाह
1: वाह
3: वाह पंडित जी,
1: वाह
3: वाह
1: वाह।
0: भविष्य जानने आए हैं ना, मैं बताऊंगा। देवी पूजन के पश्चात माँ सरस्वती मेरी जिह्वा में प्रवेश कर जाती हैं।
4: सत्य वचन गुरुदेव, सत्य वचन। इस वक्त आपके मुख पर जो कांति है, चमक है, उसे मैं लाख कोशिश करने के बावजूद भी अपने चेहरे पर नहीं ला पाता। पंडित जी, कितना भी इमोशनल सीन हो, बस यही मार खा जाता हूं।
0: धैर्य रखो, धैर्य रखो, चमक जरूर आएगी, परंतु पहले देवी का मन जीतना होगा।
5: पंडित जी, आप इन अमीर लोगों का भविष्य ही बताते रहेंगे या हमारा भी नंबर लगेगा?
0: देखिए इस दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता देवी, आराम से बैठी रहिए, आपका भविष्य मैं बताऊंगा।
2: इनका भविष्य तो इस वक्त मैं भी बता सकता हूं पंडित जी, बेटा होगा या बेटी, लेकिन समस्या तो हमारी नौकरी की है, हर जगह ना का बोर्ड।
0: भाग्य और प्रभु में विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। कृपा करके अपने अपने स्थान पर शांति से बैठे रहें। रामेश्वर,
6: हाँ महाराज।
0: सबको नंबर दे दिए हैं?
6: जी महाराज।
0: ठीक है, अब सबको बारी बारी से अंदर भेजते चलो।
6: अच्छा महाराज।
7: स्वामी सर्वानंद की जय।
0: क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हैं अभिनेता जी। कारण मन की अशांति, अकुलाहट।
4: आपने बिल्कुल ठीक कहा पंडित जी, मन में जैसे तूफान उठता रहता है। आज सुबह 4 बजे नींद खुल गई तो गाड़ी लेकर सीधा इधर चल पड़ा।
0: नई पिक्चरों में तुम्हारे रोल और वैशाली से प्रेम प्रसंग की चिंता तुम्हें खाई जाती है।
4: पंडित जी आप तो अंतर्यामी हैं, चोरों का चोर अगर हिट ना हुई तो तेरा गाल मेरा चांटा भी पिट जाएगी, मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फिर जाएगा, वैशाली मुझे छोड़कर चट्टन के कैंप में घुस जाएगी।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो हमने रात कई घंटे तुम्हारी कुंडली को ध्यान से देखा, तुम्हारी फिल्में सुपरहिट होंगी, वैशाली के साथ जोड़ी बनी रहेगी।
4: पंडित जी
0: परंतु कुछ उपाय करने होंगे।
4: उपाय? उपाय आज से ही, बल्कि अभी से शुरू कर दीजिए पंडित जी, खर्चे की परवाह मत कीजिए आप।
0: नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तुम रोकड़ा जमा कर दो, प्रभु सब मंगल करेंगे।
4: महामंगलमय महामंगलमय पंडित जी, महामंगलमय। तो आज्ञा दीजिए, आपके पास आकर मन को बड़ी शांति मिलती है। अच्छा पंडित जी नमस्कार।
0: प्रसन्न रहो प्रसन्न रहो। आओ नरेश चंद्र, सब कुशल मंगल है ना?
8: नौकरी नहीं है तो कुशल मंगल कहाँ से होगी? पंडित जी कोई रास्ता निकालिए वरना मैं पागल हो जाऊंगा।
0: मन यदि विचलित हो तो गीता का पाठ किया करो।
8: भूखे पेट गीता पाठ कैसे करूं? मेरा वर्षफल देखा पंडित जी?
0: देखा भाई, बड़े ध्यान से देखा, तुम्हारा मंगल अच्छा है, परंतु बार बार ये शनि ले डूबता है। कोशिश करते रहो, काम मिल जाएगा।
8: पर कब पंडित जी? खाली बैठे जीना दूभर हो गया है।
0: हो, तुम्हारा नाम नरेश है परंतु धैर्य की बड़ी कमी है। हम शनि की दिशा मोड़ने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं।
8: बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।
0: देखो रामेश्वर के पास पूजा अर्चन के लिए कुछ पैसे जमा करा देना।
8: मुझ गरीब के पास क्या रखा है पंडित जी?
3: अरे जो भी बन

0: पूजा का खर्च तो उठाना ही पड़ेगा, वरना फल कैसे मिलेगा। चलो अगले व्यक्ति को भेजो।
1: पगा लागू महाराज।
0: आयुष्मान भाव, कहो सेठ, धंधा कैसा चल रहा है?
2: अरे आपके होते बड़ा हमें क्या की चिंता महाराज, हमारा धंधा दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है।
0: सुंदर, अति सुंदर। देखिए, पिछले वर्ष आपसे जो गुप्त दान कराया था उसी का फल है, वरना शनि की क्रूर दृष्टि।
2: बस बस, आप हमें ऐसी दृष्टि से बचाए रखिए महाराज।
0: अगर कहिए सेठ जी, तो अगले वर्ष के लिए महाजाप करवा दूं। रात आपकी कुंडली देख रहा था। लाभ ही लाभ है।
2: अच्छा।
0: परंतु शुक्र और शनि में कुछ अनबन है।
2: तो आप उसे काट डालिए प्रभु। ये 10 लाख का काम मारे कभी मिलना चाहिए।
0: मिल जाएगा करोड़ी मल जी, मिल जाएगा। परंतु दान पुण्य काफी करना पड़ेगा।
2: तो हम कहां पीछे अटले वाले हैं महाराज, आप बोलो तो सही। मुनीम जी रोकड़ा जमा कर जाएंगे, रोकड़ा। इस वक्त तो ये गड्डी स्वीकार कर लो महाराज। पगा लागू महाराज।
0: आयुष्मान भव।
2: अच्छा,
0: आओ ज्ञानवती, आओ। कैसी हो
3: पंडित जी? आपका आश्रम न हुआ, राशन की दुकान हो गई। जरा भीड़ तो देखो।
0: अरे वहाँ पेट की भूख का सामान मिलता है, यहाँ मन की भूख का।
3: यहाँ तो रात दिन यही चिंता खा रही है कि इस बार लड़का होगा या लड़की। 5 लड़कियों की माँ जो ठहरी।
0: अरे भाग्य पर भरोसा रखो, तुम्हारे भाग्य में पुत्र है जरूर। अब हम भगवान तो है नहीं कि ठीक से तारीख भी बता दें।
3: सो तो ठीक है, पर हम भी आखिर कब तक जोखिम उठाते रहें?
0: अरे जोखिम का है कि पैसे रुपयों की कमी तो है नहीं।
3: सो तो प्रभु की दया है, पर पालने में मेहनत नहीं लगती। इस बार तो बेटा ही होना चाहिए पंडित जी।
0: हो जाएगा, हो जाएगा। अरे पिछली बार ही होना चाहिए था, पता नहीं कैसे कसर रह गई। खैर खैर, चिंता मत करो, हम महामाया का पाठ करवाते हैं, देवी माँ अवश्य प्रसन्न होंगी।
3: बस फिर कुछ नहीं मांगूंगी, एक बेटा हो गया तो सब साथ पूरी हो जाएंगी।
0: अवश्य होगा, अवश्य होगा। पूजा के लिए धनराशि
3: इतने से रखिए, बाकी ये आकर दे जाएंगे। बस आज से ही देवी पूजन शुरू करा दीजिए।
0: अच्छा।
3: जय माँ, जय भवानी,
0: जय।
3: नमस्कार पंडित जी।
0: पुत्रवती भव, पुत्रवती भव। आइए आइए नेताजी, पधारिए।
4: अरे पंडित जी महाराज, आप इन ऐरे गैरों को इतना वक्त दे देते हैं।
0: हायरी गैरी, जनता जनार्दन है ये, आपको बनाने और मिटाने वाली।
4: हमें तो सदा मिटाया ही है भाई, 20 साल से चुनाव लड़ रहा हूँ, सरकार बनाना तो दूर की बात है भाई, तगड़ी अपोजिशन भी नहीं बना पाया।
0: सब भाग्य सितारों के खेल हैं नेताजी, वरना आपकी योग्यता में भला किसे संदेह हो सकता है।
4: आप तो भाग्य बदलने का दावा करते हैं ना।
0: पूजा पाठ के योगदान से क्या नहीं हो सकता नेताजी। प्रभु की इच्छा यदि हो तो जनता पल भर में पलटा खा सकती है।
4: तो पलट क्यों नहीं देते जनता का रुख? जिंदगी में एक ही तमन्ना, इस देश का कर्णधार बन सकूं, प्रधानमंत्री बनकर देश की जनता की सेवा में जीवन अर्पण कर दूं। पर यहां, अरे भाई पंडित जी, यहां तो MLA भी बनने के लाले पड़ गए।
0: सब्र का फल सदा मीठा होता है नेताजी, कल की चिंता छोड़कर कर्म कीजिए, एक दिन विजय अवश्य हाथ लगेगी।
4: पर कब? जब हाथ पैर जवाब देने लगेंगे।
0: नहीं नहीं, बहुत शीघ्र। हम कल रात आपकी कुंडली देखते रहे।
4: अच्छा
0: जी, चक्रवर्ती राजाओं के संपूर्ण लक्षण मौजूद हैं आप में। अच्छा। सोम बड़ा शक्तिशाली है, परंतु शनि रास्ते में अड़ंगा लगा रहा है।
4: ऐसा?
0: हाँ।
4: तो फिर क्या किया जाए?
0: उपाय नेताजी, उपाय, अति उत्तम उपाय है हमारे पास।
4: लेकिन पंडित जी, इलेक्शन में सिर्फ 1 महीना बाकी रह गया है।
0: कोई परवाह नहीं, हम एक

0: महीने जप करेंगे, पाठ करेंगे, देखें जनता इस बार कैसे आपका साथ नहीं देती।
1: हाँ, वाह वाह।
0: परंतु एक बात स्पष्ट किए देता हूँ।
1: कहिए कहिए।
0: खर्चा बहुत आएगा।
1: ए पंडित जी, आने दीजिए। जहाँ एक बार पद संभाला, सब जनता से निकाल लेंगे।
0: वो आपकी इच्छा, हमें तो अपना कार्य भी शुरू करना है।
1: पंडित जी, ये शुरू के लिए इतना सा रख लीजिए, बाकी दो चार दिन में भिजवा देता हूँ। नमस्कार।
0: नमस्कार। यशस्वी भाव, यशस्वी भाव।
2: परिवर्तन, कामना चंद्रा की लिखी नाटिका का पहला भाग अभी आप सुन रहे थे। इसमें भाग लेने वाले कलाकार थे अरुण माथुर, राम सिंह, प्रकाश मिश्र, किशन भूटानी, सी एस ख्योरा, किशोर कपूर, अरुण बख्शी, अमरकांत दुबे, श्रीमती हेमलता दीपक और ज्योति शर्मा। तकनीकी सहायक अनंत पेबेकर। प्रस्तुति सहायक कब्बन मिर्जा। प्रस्तुतकर्ता अनुराधा शर्मा। इसी नाटिका का दूसरा भाग आप कल के हवा महल कार्यक्रम में सुन सकेंगे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, हर दिल से जुड़ी देश की सुरीली धड़कन, हर लम्हा हर पल आपके साथ। कार्यक्रम चित्रलोक बस थोड़ी ही देर में।

प्रस्तुत है नए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रलोक। सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मिराया वर्मा, फतेह, कनिका कपूर और रविंद्र उपाध्याय की आवाज़ों में। इस गीत को लिखा है कुमार ने, संगीत है विशाल शेखर का और फिल्म का नाम है हैप्पी न्यू ईयर।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है सुखविंदर सिंह की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने, संगीत है विशाल शेखर का, फिल्म का नाम है ओम शांति ओम।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अब हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, the banker to every Indian। नियम और शर्तें लागू।

अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चित्रलोक कार्यक्रम में आइए सुने अगला गीत। कमाल खान, सुजैन और सुनिधि चौहान की आवाज़ों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है साजिद वाजिद का, फिल्म का नाम है वांटेड।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध भारती पर।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार ये तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतनी

0: बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
1: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवाते हैं हिमेश रेशमिया और सुनिधि चौहान की आवाजों में। गीतकार हैं समीर, संगीत है हिमेश रेशमिया का, फिल्म का नाम है कजरारी।

0: निकालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
1: इसके साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक अब समाप्त होता है। सुनिए सुनाइए और सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
0: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में

विविध भारती मुंबई तो हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम चित्रलोक। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं FM 107.2 MHz ते। हुण तो कुछ ही पलां च तुसी सुनोगे आकाशवाणी दे दिल्ली केंद्र तो हिंदी समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3 लाख मकान सौंपे। उन्होंने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग कर देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला रखी। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। ईरान ने कहा, अमेरिका जब तक उसकी 7 शर्तें पूरी नहीं करेगा, हुर्मुज जलरमरो मध्य बंद रहेगा। ईरान की मिसाइलों की रेंज बढ़ाने की भी योजना। और जापान में एशियाई खेल भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, 21 स्वर्ण पदक सहित 85 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा है। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: There are countries who are emerging.
2: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
1: Really is a point of convergence.
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्य स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से 3 लाख घरों के लिए पहली किस्त जारी की। ये कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। श्री चौहान ने 3D कंक्रीट प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके देश की पहली पायलट आवास परियोजना की आधारशिला भी रखी। इसके अंतर्गत 14 करोड़ रुपए की लागत से 177

0: 75 घरों का निर्माण किया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र और आंध्र प्रदेश सरकार राज्य भर में विकास को गति देने और इसे देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए मिलकर काम कर रही है।
1: केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 3,00,000 मकान बनाने की पहली किस्त आंध्र प्रदेश के गरीबों को समर्पित की है। 100% मकान गरीबों को बनाने में आपके साथ भारत सरकार खड़ी है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। 3D कंक्रीट प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, एक नई टेक्नोलॉजी से ये मकान हम बनाने वाले हैं कि ये मकान 6 महीने के अंदर कम्प्लीट हो, उसमें लागत भी कम आए।
0: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव सौरभ गर्ग ने कहा कि भारत की निरंतर आर्थिक मजबूती, मजबूत कॉरपोरेट प्रदर्शन और निरंतर निवेश गतिविधियों का असर अब विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा देश के विकास अनुमानों में की गई बढ़ोतरी में परिलक्षित हो रहा है। नई दिल्ली में कौटिल्य आर्थिक कॉन्क्लेव के दौरान श्री गर्ग ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर्ज करने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था ने अपनी गति बरकरार रखी है। इसी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव वित्तीय शक्तिकांत दास ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत की आर्थिक मजबूती का मुख्य कारण वित्तीय क्षेत्र में सुधार रहा है। उन्होंने कहा कि दिवालियापन और दिवालिया संहिता, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण और रचनात्मक नियामक निगरानी जैसे सुधारों से भारत का वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कॉरपोरेट गवर्नेंस को आधुनिक अर्थव्यवस्था का अदृश्य आधार बताया है। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ स्थापना दिवस समारोह में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में मजबूत संस्थान और सुशासन उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि भौतिक और डिजिटल बुनियादी ढांचे हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि सतत आर्थिक प्रगति के लिए निवेशकों का विश्वास आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और तीव्र गति से तकनीकी विकास के युग में प्रवेश कर रहा है।
2: Our country stands as one of the fastest growing economies of the world while simultaneously entering an era of rapid technological advancement. From fragile 5 economy, we become the 4th largest economy and I'm sure soon we are going to be the 3rd largest economy of the world.
0: नई दिल्ली में एक अन्य कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति ने कहा कि सच्चे विकसित भारत को अपने नागरिकों, पारिवारिक मूल्यों, चरित्रवान युवाओं और समाज में अनुकंपा पर विश्वास होना चाहिए। महापर्व क्षमापना समारोह में उन्होंने कहा कि ये क्षमा, मैत्री, अहिंसा और आंतरिक शुद्धि के सार्वभौम जीवन मूल्यों के उत्सव का अवसर है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि जैन परंपरा में क्षमा को आध्यात्मिक अनुशासन में परिवर्तित किया जाता है जो आज समूची मानवता के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्स पर @AIRNews हिंदी और इंस्टाग्राम पर AIRNews अलर्ट्स को फॉलो करें।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। इनमें तमिलनाडु की मदुरांतकम और धारापुरम, पुदुचेरी की थन्नट चावड़ी तथा पश्चिम बंगाल की रेजीनगर और नंदीग्राम विधानसभा सीटें शामिल हैं। असम की नौगांव लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड से दिनेश आर्य को और पश्चिम बंगाल से रुक्मणी मल्लिक को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने इसकी घोषणा की। उत्तर प्रदेश की 10 और उत्तराखंड की 1 राज्यसभा सीट के लिए मतदान 16 अक्टूबर को होगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की 1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन भी ला रहा है। आज विशेष श्रृंखला में जानेंगे कि कैसे 3 नए

0: आपराधिक कानूनों के जरिए न्याय को आसान और सुलभ बनाया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शामिल हैं।
1: नए आपराधिक कानूनों के अंतर्गत जीरो FIR, त्वरित जांच, सीमित स्थगन, फॉरेंसिक साक्ष्य के संग्रह और वीडियोग्राफी तथा लैंगिक रूप से तटस्थ अपराध जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं। नए आपराधिक कानूनों के लागू होने के बाद एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
2: भारतीय न्याय संहिता का मूल मंत्र है सिटीजन फर्स्ट। ये कानून नागरिक अधिकारों के प्रोटेक्टर बन रहे हैं, ईज ऑफ जस्टिस का आधार बन रहे हैं। पहले FIR करवाना भी कितना मुश्किल होता था, लेकिन अब जीरो FIR को भी कानूनी रूप दे दिया गया है।
1: संगठित अपराध से निपटने और महिलाओं तथा बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली बार भीड़ द्वारा हत्या को धारा 103 की उपधारा 2 के तहत एक अलग अपराध के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यदि 5 या उससे अधिक लोगों का समूह नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा या व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या करता है तो समूह के प्रत्येक सदस्य को आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के साथ साथ जुर्माने की सजा हो सकती है। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में दिल्ली उच्च न्यायालय के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा,
3: 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने पुराने IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट की जगह ली है। इनका उद्देश्य न्याय व्यवस्था को आधुनिक, तेज और तकनीक अनुकूल बनाना है। इनमें महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा, आतंकवाद, संगठित अपराध और मॉब लिंचिंग जैसे अपराधों पर विशेष प्रावधान है। साथ ही EFIR, डिजिटल साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक कार्यवाही और फोरेंसिक जांच को बढ़ावा दिया गया है।
1: पहले 16 वर्ष और 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान था। अब इस प्रावधान में संशोधन किया गया है। वहीं अब 18 वर्ष से कम उम्र की महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म के अपराध के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हुर्मुज जलडमरुमध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आईची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। इस दौरान खेलों की मशाल और ध्वज 2023 एशियाई खेलों के मेजबान कतर को सौंपे गए। समापन समारोह में निशानेबाजी में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाली नीरू ढांडा ने ध्वज वाहक के रूप में भारतीय दल का नेतृत्व किया। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में 2रा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदक के साथ तालिका में 4थे स्थान पर रहा। खेलों के दौरान कई भारतीय खिलाड़ियों ने नया इतिहास रचा।
4: एथलेटिक्स भारतीय अभियान का सबसे शानदार पहलू रहा। यहाँ भारतीय खिलाड़ियों ने सबसे अधिक 24 पदक जीते। मुक्केबाजी में भी भारत ने 3 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुक्केबाज लवलीना बोरगोहिन ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। वो 2014 में मैरीकॉम के बाद एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला मुक्केबाज बनी। भारतीय पुरुष और महिला क्रिकेट टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। भारतीय पुरुष और महिला कबड्डी में भी स्वर्ण पदक हासिल किए। भारतीय महिला हॉकी टीम ने 44 साल का इंतजार खत्म करते हुए एशियन गेम्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं भारतीय पुरुष टीम ने पहली बार लगातार 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। कुमकुम महोद एशियन गेम्स में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। नीरू ढांडा ने महिला ट्रैप स्पर्धा में प्रतियोगिता का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता। एथलेटिक्स में विद्या रामराज ने महिलाओं की 400 मीटर बाधा दौड़ में 42 साल पुराना राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए कांस्य पदक हासिल किया। सावन बरवाल ने मैराथन में 1982 के बाद भारत को पहला पदक दिलाया। सुचिका तरियाल ने मिक्स मार्शल आर्ट्स और जयमीना ने सॉफ्ट टेनिस

0: एथलेटिक्स में देश को पहली बार पदक दिलाया। मीराबाई चानू ने महिलाओं के 49 किलो भार वर्ग में रजत पदक जीता। समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: भारत और कनाडा कल से ओटावा में प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर बातचीत का पांचवा दौर शुरू करेंगे। दोनों देश व्यापार समझौते को इस वर्ष के आखिर तक अंतिम रूप देना चाहते हैं। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकारों के नेतृत्व में 5 दिन की वार्ता 9 अक्टूबर तक चलेगी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के लिए कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी के तटीय और दक्षिणी आंतरिक क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, बदलते वैश्विक परिदृश्य से उभरते और मध्यम स्तरीय देश के बीच सहयोग के नए रास्ते खुले। उन्होंने शांति, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती और संपर्क को इन देशों की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में रेखांकित किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत से बने 3,00,000 मकान सौंपे। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों और असम की 1 लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव का प्रचार समाप्त हुआ, मतदान मंगलवार को। और जापान में एशियाई खेलों का भव्य समापन समारोह के साथ संपन्न, भारत ने खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। श्रोतियों आओ सुनदे हां विविध भारती मुंबई तो अगला प्रोग्राम आपके लिए।
3: विक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए मोहम्मद रफी और सायरा बानू की आवाजों में। इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने, तर्ज है शंकर जयकिशन की और फिल्म का नाम है अमन।

आइए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में वो गीत जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने। संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है जब जब फूल खिले।

0: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
1: कि वो इवेंट जो मेरे साथ में हुआ कि मेरी कार वहाँ पे अचानक से रुक जाती है और मुझे पता भी नहीं होता कि वो जगह कौन सी है, दरवाजा खोलता हूँ तो कैंची धाम के गेट के नीचे खुलता है, वो एक इवेंट मेरे दिमाग में रह जाता है।
0: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
1: और वो इवेंट आज मुझे 20 साल के बाद में, एग्जैक्टली आफ्टर 20 इयर्स आई एम मेकिंग द फिल्म, एंड द सक्सेस ऑफ द फिल्म इज प्रॉब्ली आई थिंक वाज डेस्टिन्ड और डिसाइडेड बाय हिम, तो इसको लीला बोलते हैं।
0: आज के मेहमान 7 अक्टूबर शाम 4 बजे विविध

0: भारती पर।
1: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
2: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार हैं मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार हैं कल्याण जी, आनंद जी। फिल्म का नाम है इशारा।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत को लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीत है सलील चौधरी का और फिल्म का नाम है माया।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: मैं सबसे, जो लोग सुन रहे हैं मुझे, उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि अपने औकात से बाहर का सोचो। कभी ये मत सोचना कि अरे यार तो चादर छोटी है तो इतना ही में रहेंगे। जहां तक पैर ले जाना है ले जाओ, चादर भी उतने बड़े हैं मार्केट में ब्रो।
0: 6 अक्टूबर सेल्यूलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मुकेश की आवाज़ में। गीतकार है इंदिवर, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है उपासना।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीत है शंकर जय किशन का, फिल्म का नाम है प्रोफेसर।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है मुकेश की आवाज़ में, नगमा निगार है आनंद बख्शी, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का और फिल्म का नाम है फूल बने अंगारे।

0: साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।
1: वही मोनो, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां, स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
2: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
1: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
2: HIV
1: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउण नाल संक्रमित खून जां खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
3: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।
4: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
5: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
4: पहला, असुरक्षित यौन संबंध, यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
5: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
4: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
6: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
7: गोली, ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

30 अगस्त सन 1921 को विभाजन पूर्व के रावलपिंडी में जन्मे शंकरदास केसरीलाल कालांतर में बने भारतीय सिनेमा के एक बेहद सफल और लोकप्रिय गीतकार शैले

0: बेटे।
1: शैलेंद्र का जन्म बेशक रावलपिंडी में हुआ, लेकिन वो पले बढ़े मथुरा में। हालांकि उनके पुरखों का घर आरा जिले के अख्तियारपुर में था। स्कूल के दिनों में शैलेंद्र की घनिष्ठता हो गई इंद्र बहादुर खरी से। मथुरा के उन दिनों में शैलेंद्र और इंद्र बहादुर रेलवे कॉलोनी के नजदीक मौजूद एक तालाब के किनारे की शिला पर बैठकर कविता रचना सीख रहे थे। बहरहाल समय ने करवट ली और सन 1947 के आसपास मुंबई के माटुंगा स्थित रेलवे वर्कशॉप में रोजी रोटी के लिए अप्रेंटिस के रूप में शैलेंद्र की नौकरी की शुरुआत हुई।

शैलेंद्र वामपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और इप्टा के एक सक्रिय सदस्य थे। उनकी कविताओं में जोश और जुनून था, मजदूरों, कामगारों, किसानों के लिए गहरा सरोकार। उन्हीं दिनों मुंबई में आयोजित एक कवि सम्मेलन में शैलेंद्र ने अपनी एक मार्मिक कविता पढ़ी। राज कपूर भी मौजूद थे। शैलेंद्र की कविता ने राज कपूर पर गहरा असर डाला और उन्होंने शैलेंद्र से उनकी उस कविता को अपनी फिल्म आग में इस्तेमाल करने के लिए बात की। लेकिन शैलेंद्र उन दिनों सिनेमा के बहुत करीब नहीं थे। उन्होंने राज कपूर को कविता देने से मना कर दिया। आग के रूप में अपनी रचनात्मक प्रतिभा की अग्नि प्रज्वलित कर राज कपूर अब सिने प्रेमियों को भिगोना चाहते थे अपने निर्देशन की बरसात से। वो शायद 1949 का बरस था और शैलेंद्र पैसे की तंगी से गुजर रहे थे। हालात कुछ ऐसे थे कि शैलेंद्र को विवश होकर राज कपूर के पास जाना पड़ा। राज कपूर प्रतिभा के कद्रदान थे और गीतकार के रूप में जो हीरा शैलेंद्र के भीतर मौजूद था उसे उन्होंने परख लिया था। राज कपूर ने शैलेंद्र को फिल्म बरसात के दो गीत लिखने के लिए 500 रुपए दिए। उन गीतों में से एक था फिल्म बरसात का ये शीर्षक।

शैलेंद्र भाषा के धनी थे, शब्द और भाव संपदा के सम्राट थे। शब्दों का उनका संधान ऐसा था कि बहुत सरल और साधारण शब्दों में भी वो असाधारण बात कहना जानते थे।

शैलेंद्र के गीतों में कभी प्रेम और विरह के कोमल भाव खिल उठते हैं, तो कभी उनकी गूंज एक नारे की तरह सुनाई पड़ती है जिसमें इस देश के आम आदमी की पीड़ा बोलती है। शैलेंद्र का अपने आसपास की दुनिया से, दुनिया के बदलते घटनाक्रम से, बदलते राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक हालात से और उन हालात के असर से गहरा सरोकार था। शैलेंद्र के गीत हमारे स्नेही संगी साथी बन जाते हैं, हमसे हमारी पीड़ा और हमारे उल्लास को बांटते हैं, हमसे संवाद करते हैं।

आज हिंदी सिने गीतों का संसार बदल चुका है। कविता और गीत का धर्म शिल्प सब बदल चुका है और इसीलिए इस दौर के ज्यादातर गीतों की ध्वनियां स्मृति पटल से मिट जाती हैं। शैलेंद्र और उनके समकालीन गीतकार यदि आज भी लोकप्रिय हैं, तो उसके पीछे एक गीतकार के रूप में न केवल उनकी कविता का सौंदर्य है बल्कि उनका सरोकार भी है। शैलेंद्र के फिल्मी गीत साहित्यिक गीतों से किसी भी अर्थ में कम नहीं है। आमो खास सबको पसंद हैं शैलेंद्र के सहज सुरीले सजीले गीत।

हालांकि गीतकार के रूप में शैलेंद्र का नाम राज कपूर, मुकेश, शंकर जयकिशन के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन शैलेंद्र की रचनात्मक प्रतिभा का वैविध्य और सौंदर्य अन्य संगीतकारों के सानिध्य में भी बेमिसाल बन पड़ा है। गीतकार शैलेंद्र और संगीतकार सचिन।

शैलेंद्र को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये फिल्में और गीत हैं सन 1958 फिल्म यहूदी।

शैलेंद्र ने पाया सर्वश्रेष्ठ गीतकार का और मुकेश ने पाया सर्वश्रेष्ठ गायक का फिल्म फेयर पुरस्कार फिल्म अनाड़ी। सब कुछ

सन 1958 में लता जी को जिस गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था वो भी शैलेंद्र जी ने ही लिखा था। वो था फिल्म मधुमती का ये।

0: नहीं जाना।
1: इस फिल्म के निर्माण के दौरान शैलेंद्र को आर्थिक रूप से बहुत क्षति हुई। इसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ा। शैलेंद्र सदमे से उबर नहीं पाए और 14 दिसंबर सन 1966 को 45 बरस की आयु में हमें अपने अनमोल गीतों की संपदा सौंप कर चले गए महायात्रा पर। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र शैली शैलेंद्र ने उनके इस अधूरे गीत को पूरा किया।

शैलेंद्र के जाने के बाद उनकी फिल्म तीसरी कसम को 14वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ कथाचित्र के लिए राष्ट्रपति के स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु भट्टाचार्य। गीतकार शैलेंद्र ने हमें वो गीत दिए जिन पर समय की धूल कभी नहीं जम पाएगी। उनके गीत जन गीत हैं, जन जन के होठों पर थिरकने वाले गीत, जन जन के हृदय में गूंजने वाले गीत, जिनमें हम खोजते हैं प्रेम, शांति, आनंद, खोजते हैं हाथ से छूटा हुआ बचपन, जवानी और बिछड़े हुए लोग।

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, शोध स्वर और आलेख कमल शर्मा का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती पर हर रोज दिन में एक बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ।
1: जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा।
0: इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी।
1: हम और तुम,
0: तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ।
2: हम साथ साथ हैं।
0: जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में एक बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। छाया गीत आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।
3: इस प्रोग्राम के प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती।
1: वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वही मोनू, तू आजकल सोशल मीडिया ते बहुत स्टोरियां स्टेटस ते ज्ञान वंडदा।
3: ओ मैं ता समझदारी बहुत आ, बस कदे मान जानी कीता।
2: अच्छा, फिर एक गल दा जवाब दे, HIV किवें फैलदा है?
3: HIV
2: नहीं पता ना समझदार वीरे, ता सुन, HIV किवें संक्रमित सुई सिरिंज सांझा करन नाल संक्रमित व्यक्ति दे नाल असुरक्षित यौन संबंध बनाउन नाल संक्रमित खून जा खून दे उत्पादां दी वरतों नाल संक्रमित गर्भवती मां तों उस दे होण वाले बच्चे नूं HIV दी बीमारी हो सकदी है।
4: वधेरे जानकारी लई टोल फ्री एड्स हेल्पलाइन नंबर 1097 ते कॉल करो। पंजाब स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित विच जारी।

छाया गीत में आज ऐसी नगमे जिनके दो संस्करण हैं। हमने इन दोनों संस्करणों को किसी मोड़ पर जोड़ दिया है ताकि सुनने में हैरत का अनुभव हो और ये एक विलक्षण अनुभव बन जाए। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। दुनिया के दो अलग अलग कोने, दो अलग अलग शख्स, वक्त के स्केल पर जाने कैसे घूमती है धरती कि दोनों आते हैं एक दूसरे के करीब, इतने करीब जैसे बरसों से जानते हों एक दूसरे को, जैसे वो बने हों एक दूसरे के लिए।

दुनिया, जुल्मतों और बेदर्दी वाली ये दुनिया, यहां लगती हैं ठोकरें, यहां टूटता है भरोसा, यहां रोशनी के सागर में मिलता है अंधेरा, और कभी कभी लगता है कि सचमुच इस दुनिया में है कोई कोना जो हमारा अपना हो, जहां हम सुकून से जी सकें।

उदास है दिल, उदास दिल गा रहा है उदासी भरा नगमा। उदासी भरे नगमे हमारे दिल को सुकून देते हैं, हमारी उदासी को सहलाते हैं, हमारी जिंदगी को अनमोल बनाते हैं और हमें हौसला देते हैं आगे बढ़ने का।

0: आज के छायागीत में थे ऐसे नगमे जिनके दो संस्करण हैं। हमने इन दोनों गानों को किसी दिलचस्प मोड़ पर जोड़ दिया था। फिल्मों के नाम आपको बता दें।
1: न तुम हमें जानो,
2: न तुम हमें जानो।
0: फिल्म बात एक रात की, मजरू सुल्तानपुरी, सचिन देव बर्मन।
1: ओ मेरे दिल कहीं और चल,
2: गम की दुनिया से दिल भर गया।
0: फिल्म दाग, शैलेंद्र, शंकर जयकिशन।
1: गिर सावन,
2: सुलग सुलग जाए मन।
0: फिल्म मंजिल, योगेश राहुल देव बर्मन।

0: फिल्म ठोकर, मजाज लखनवी, सरदार मलिक। आज का छाया गीत इतना ही। इजाजत दीजिए यूनुस खान को। नमस्कार।
1: इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: अपनी त्वचा के लिए मैं चुनती हूँ वही जो है सबसे सही। वीको टर्मरिक क्रीम मेरी त्वचा का पोषण करे, उसे कोमल, सौम्य और उज्जवल बनाए। वीको टर्मरिक क्रीम, मैंने चुनी खूबसूरती।
1: विविध भारती मुंबई तो हुणे तुसी सुन रहे सी प्रोग्राम छाया गीत। असी आकाशवाणी दे चंडीगढ़ केंद्र तो बोल रहे हैं एफएम 107.2 मेगाहर्ट्ज़ ते।
2: हाँ, ये हेलमेट अच्छा है, सेफ है क्या?
3: चिंता मत कीजिए, इस हेलमेट पर ISI मार्क है।
2: और मुझे कैसे पता चलेगा कि ये असली है?
3: BIS केयर ऐप से, जहाँ आपको ये इम्पोर्टेंट डिटेल एक ही क्लिक में मिल जाएगी।
4: बनिए जागरूक ग्राहक और कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसकी प्रामाणिकता चेक करने के लिए आज ही डाउनलोड करें BIS केयर ऐप।
5: एड्स, HIV, ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा। बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे।
6: HIV एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं, इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी। ये क्या है, कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो आइए आपको बताएं HIV एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण।
5: पहला, असुरक्षित यौन संबंध यानी संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम यौन संबंध बनाना। दूसरा, संक्रमित रक्तदान या ब्लड प्रोडक्ट्स के कॉन्टैक्ट में आना। तीसरा, संक्रमित सुई या इंजेक्शन शेयर करना। और चौथा है, HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
6: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से, मैं बताता हूँ। HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जांच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
5: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
1: आकाशवाणी चंडीगढ़ तो हुन पेश ने मुख प्रदेशक खबरां। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने विकसित भारत दे निर्माण ले देश दे संस्थाना सूक्ष्म छोटे अते दरमियाने उद्यमां नूं मजबूत करन अते नवीनता दी लोड़ ते जोर दित्ता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि गुरुग्राम विच सिंगापुर दे सनटेक सिटी दे मॉडल ते एक विश्व पद्धरी कन्वेंशन सेंटर विकसित कीता जावेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार मानेसर नूं अति आधुनिक तकनीक नाल विकसित करेगी अते एक वड्डा अते सुंदर पार्क भी बनाएगी। भाजपा दी सूबा प्रधान डॉ अर्चना गुप्ता ने चोन कमीशन ते वोट चोरी दा दोष लगाउण लई कांग्रेस अते राहुल गांधी दी आलोचना कीती। प्रधानमंत्री सेतु योजना दा अज इक साल पूरा होया। इस योजना ने हुनर विकास अते रोजगार दे मौकियां नूं मजबूत कीता। एशियाई खेडां जापान दे नोगाइया विच समाप्त होईयां। नीरू टांडा ने झंडा तारक वजों भारती दल दी अगवाई कीती। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने भारती टीम नूं एशियाई खेडां विच 85 तमगियां नाल चौथा स्थान हासिल करन लई वधाई दित्ती। अज भारतीय हॉकी टीम दी खिडारन अते एशियन खेडां दी सोन तगमा जेतू इशिका सब्बरवाल दा पिवाने विच, सोन तगमा जेतू कबड्डी टीम दे कप्तान सुनील मलिक दा करनाल विच अते सोन तगमा जेतू मुक्केबाज प्रवीण हुड्डा दा रोहतक विच शानदार स्वागत कीता गया। साफ अते

0: ਦੋਸਤੋ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਇਸ ਗੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੀਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਲਾਰਾ ਲੱਪਾ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ
1: एड्स एच आई वी ये सुनते ही भागने या मुंह घुमाने से कुछ नहीं बदलेगा बदलेगा तब जब आप इसकी बात खुल के करोगे
2: एच आई वी एड्स जैसी बीमारियां गंभीर हैं इसलिए इसके बारे में सब कुछ पता होना है जरूरी ये क्या है कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है तो आइए आपको बताएं एच आई वी एड्स संक्रमण के कुछ मुख्य कारण

0: करना, और चौथा है HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को जन्म के दौरान या स्तनपान के वक्त होना।
1: तो कैसे बच सकते हैं इस बीमारी से? मैं बताता हूँ, HIV एड्स से बचना है तो यौन संबंध बनाते वक्त हमेशा कॉन्डम का इस्तेमाल करें, सुइयां और इंजेक्शन शेयर न करें, नई सुई का ही प्रयोग करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाँच परख करें और ब्लड हमेशा लाइसेंस्ड ब्लड बैंक से ही लें। साथ ही प्रेग्नेंट महिलाएं HIV टेस्ट करवाएं और पॉजिटिव आने पर डॉक्टर से सलाह लें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे।
0: आप भी सावधानी अपनाएं और चंडीगढ़ को HIV एड्स फ्री बनाएं। HIV एड्स की अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल लगाएं। चंडीगढ़ एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी।
2: घर का सपना हो, नई गाड़ी की ख्वाहिश या किसी जरूरत के लिए पैसे, SBI देता है बेहतरीन लोन ऑप्शंस आकर्षक ब्याज दरों के साथ। होम, ऑटो, पर्सनल, पेंशन और गोल्ड लोन के लिए संपर्क करें अपनी नजदीकी शाखा से। SBI, द बैंकर टू एवरी इंडियन। नियम और शर्तें लागू।
3: बबीता जी, ब्रेक तो बाद हुन इस गीतानी लड़ी दे विच असी केड़ा गीत सुना रहे हैं अपने श्रोतियां नूं?
4: अंश, पंजाबी गीत कदे गल करदे ने इजहार दी, कदे इनकार दी ते कदे प्यार दी। हुन सुनदे आ नछत्तर गिल दी आवाज़ च गीत, जो कह रहा है कि हसदी ने दिल मंगिया ते मुंडा जान वारन तो जावे।

0: दोस्तों इस गीत दे नाल ही आज दा प्रोग्राम सुरसांझ हुण खत्म हुंदा है। अपनी रेडियो साथन बबीता कपूर नू
1: अंश सागर नू
0: दो इजाजत रब रखा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला का लचीलापन और संपर्क सुविधा उभरती और मध्यम स्तर की शक्तियों के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा हैं। नई दिल्ली में म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में डॉ. जयशंकर ने कहा कि विश्व बदल रहा है, इसका एजेंडा और परिदृश्य भी बदल रहा है तथा उभरते और मध्यम स्तरीय देशों के बीच सहयोग के लिए महत्वपूर्ण एजेंडा सामने आ रहा है।
1: दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो उपनिवेशवाद से बाहर निकलकर अपनी अर्थव्यवस्थाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं कुछ विकसित देश भी पुराने गठबंधनों और व्यवस्थाओं से आगे बढ़कर अपनी स्वतंत्र भूमिका तलाश रहे हैं। इसलिए उभरते देशों में एक तरफ ग्लोबल साउथ है और दूसरी तरफ ग्लोबल नॉर्थ। दोनों के उभरने के तरीके अलग हैं, लेकिन दोनों की एक समान इच्छा है, दुनिया में अपनी अहमियत और प्रभाव बढ़ाना। यही वो बात है जो दोनों देशों को एक दूसरे से जोड़ती है।
2: Really is a point of convergence.
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों से संचालित बदलता परिदृश्य, अमेरिका की बदलती स्थिति, चीन के उभार और परस्पर बढ़ती अत्यधिक निर्भरता की बहस को जन्म दे रहा है। उन्होंने कहा कि उभरती और मध्यम स्तरीय शक्तियों का दृष्टिकोण जोखिम कम करना और विविधता लाना है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से बहुत अच्छे रहे हैं। उन्होंने बताया कि सोवियत संघ कई मौकों पर भारत के साथ खड़ा रहा, खासकर तब जब भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता खतरे में थी। नई दिल्ली में आयोजित 62वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में विदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया के अधिकांश देश पड़ोसी देश की सैन्य तानाशाही के समर्थन में थे, तब रूस एक ऐसा देश था जिसके साथ भारत के संबंध बहुत अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भारत रूस संबंध कई मायनों में इसी विरासत से प्रभावित हैं। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि आज दोनों देशों के रिश्ते पहले से ज्यादा व्यापक हो गए हैं। इसमें सैन्य, परमाणु और अंतरिक्ष से जुड़े पहलुओं के साथ साथ व्यापार और निवेश भी शामिल हैं। डॉक्टर जयशंकर ने रूस यूक्रेन संघर्ष को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि भारत का रुख स्पष्ट है कि वह इस संघर्ष का अंत देखना चाहता है। श्री जयशंकर ने कहा कि भारत ने काला सागर में जहाजों और वाणिज्यिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के मुद्दे से इस मदद की शुरुआत की है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के दूसरे चरण के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को 3,600 करोड़ रुपए की लागत के 3,00,000 घरों के लिए पहली किस्त जारी की। यह कार्यक्रम गुंटूर जिले में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की उपस्थिति में आयोजित किया गया। तमिलनाडु, पुदुचेरी और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों तथा असम की 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। मतदान मंगलवार को और मतगणना शुक्रवार को होगी। संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा है कि पायलट स्मित मछार के अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थनाएं जारी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में राजदूत मित्तल ने बताया कि स्मित तेजी से ठीक हो रहे हैं और उनका मनोबल काफी ऊंचा है। उन्होंने कहा कि दूतावास स्थानीय अधिकारियों और परिवार के साथ संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान की जा रही है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ जून के अंतरिम समझौते में निर्धारित 7 शर्तें पूरी होने तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला जाएगा। दोनों देश संघर्ष समाप्त करने के प्रयासों पर अड़ियल रवैया अपना रहे हैं। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिका के साथ हाल के युद्ध के बाद वह अपनी मिसाइलों की रेंज बढ़ाएगा। एशियाई खेल 2026 का जापान के आइची नागोया में आधिकारिक समापन हो गया है। भारत ने एशियाई खेलों के इतिहास में दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और 21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य सहित 85 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान

0: पर रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियाई खेलों के समापन के अवसर पर भारतीय दल के प्रत्येक सदस्य को देश का दृढ़ संकल्प, जुनून और शानदार खेल भावना के साथ प्रतिनिधित्व करने के लिए बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 107.2 MHz ते ए आकाशवाणी है ते तुसी सुन रहे हो विविध भारती दा चंडीगढ़ केंद्र। इस वेले रात दे 11:05 ते 17 सैकेंड होए ने। साडी अज दी सभा हुण खत्म हुंदी है। कल सवेरे 5:55 ते तुहाडे नाल फेर मुलाकात होवेगी। तद तक लई सानू दवो इजाजत। जय हिंद।